नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 28 जून सन 2026, सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा है।

0: वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। ये देश हमारी स्मृतियों, संस्कारों और सपनों का घर है। यह वही धरती है जहां हर पीढ़ी ने कुछ नया रचा है। हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान इस मिट्टी से जुड़ा है। आइए गर्व और सम्मान के साथ अपने वतन को नमन करें और सुने ये भक्ति गीत।

0: भगवान श्री गणेश बुद्धि, शुभारंभ और मंगल के देवता हैं। हर शुभ कार्य के पहले उनका स्मरण किया जाता है। गणपति का नाम लेते ही मन में विश्वास और सरलता आती है। आइए विघ्नहर्ता का ध्यान करें।
1: करीवर बदन कृपा विघ्न हरण

माँ दुर्गा शक्ति, संरक्षण और करुणा का स्वरूप हैं। उनकी आराधना मन में साहस और विश्वास जगाती है। जब मन कमजोर पड़े, माँ का स्मरण नई ऊर्जा देता है।

यह भजन समर्पण, विश्वास और आंतरिक शांति का संदेश देता है। जब मन थक जाए तब ईश्वर का नाम नई शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सहारा श्रद्धा और धैर्य में है। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं ये गीत।

इसी भक्ति और सकारात्मक भाव के साथ आज की वंदना को यहीं विराम देते हैं। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय और सफल हो। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए करें चिंतन।
1: मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की परतीत। संत कबीरदास जी की ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती है जिसे आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। दुनिया में दो तरह के युद्ध होते हैं, एक बाहरी मैदान में और दूसरा हमारे भीतर। बाहरी युद्ध तो बाद में जीता जाता है, उसकी पटकथा पहले मनुष्य के मस्तिष्क और मन में लिखी जाती है। मन के हारे हार मन के जीते जीत केवल एक कहावत नहीं बल्कि सफलता का एक संपूर्ण दर्शन है। मनुष्य का मन एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है। हमारी शारीरिक क्षमताएं सीमित हो सकती है लेकिन मानसिक क्षमताएं अनंत है। जब हम किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर को आवश्यक ऊर्जा, उत्साह और मार्ग दिखाने लगता है। इसके विपरीत यदि हम कार्य शुरू करने से पहले ही मन में यह मान ले कि मुझसे यह कार्य नहीं होगा तो हमारी मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र शिथिल पड़ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, यानी जैसा हम स्वयं के बारे में सोचते हैं हम धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि दुनिया में जितनी भी महान उपलब्धियां हासिल हुई हैं वे केवल संसाधनों के बल पर नहीं बल्कि प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर हुई है। दशरथ मांझी बिहार के एक साधारण व्यक्ति जिनके पास न आधुनिक मशीनें थी न धन, लेकिन मन में एक संकल्प था पहाड़ का गुरूर तोड़ना। उन्होंने 22 वर्षों तक अकेली ही छेनी हथौड़ा चलाकर पहाड़ का सीना चीर दिया और रास्ता बना दिया। यह उनकी शारीरिक शक्ति से ज्यादा उनके अजय मन की जीत थी। अरुणिमा सिन्हा ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवा देने के बाद अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने का संकल्प लिया। दुनिया उन्हें अपाहिज समझ रही थी लेकिन उनका मन एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था। उन्होंने साबित कर दिया कि विकलांगता शरीर में नहीं मन में होती है। नेपोलियन बोनापार्ट के शब्द थे, असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। उनके लिए हार तब तक वास्तविक नहीं थी जब तक कि वे उसे मन से स्वीकार न कर ले। अक्सर हम बाहरी दुनिया में असफल होने को हार मान लेते हैं लेकिन वास्तविक हार तब होती है जब हम धैर्य और प्रयास करना छोड़ देते हैं। विफलता एक घटना है, व्यक्तित्व नहीं। परीक्षा में कम अंक लाना या व्यापार में नुकसान होना एक घटना है। यदि व्यक्ति इसे अंतिम परिणाम मानकर बैठ जाए तो वह मन से हार गया। जो मन से जीते होते हैं वे विफलता को हार नहीं बल्कि एक सबक मानते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के दौरान हजारों असफल प्रयोग किए लेकिन उन्होंने कभी खुद को हारा हुआ नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं हारा नहीं हूं बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। मन को जीतने और सकारात्मक बनाए रखने के लिए कुछ अभ्यास मनुष्यों ने बताए हैं। आत्मसंवाद यानी खुद से सकारात्मक बातें करें, मैं यह कर सकता हूं का भाव जागृत करें, अपनी सफलता को मानसिक रूप से महसूस करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है।

0: सकारात्मक और उत्साहित लोगों के साथ रहें, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। हर छोटी जीत मन को और मजबूत बनाती है। जीवन हमेशा सुखद नहीं होता, संकट के समय ही मनुष्य के मन की परीक्षा होती है। जब स्थितियां अनुकूल होती है तब तो हर कोई सकारात्मक रह सकता है, लेकिन जब हर तरफ से असफलता और आलोचना के बादल छाए हों, तब अपने मन को टूटने से बचाना ही असली जीत है। एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह सामने वाली टीम की ताकत देखकर डर जाए, या अपनी रणनीति और अभ्यास पर भरोसा रखें। खेल के मैदान में अक्सर वह टीम जीत जाती है जो अंतिम क्षण तक हार नहीं मानती, भले ही स्कोरबोर्ड उसके खिलाफ हो। यह फाइटिंग स्पिरिट मन की ही उपज है। मन एक दोधारी तलवार है। यदि वह आपके नियंत्रण में है तो वह आपको शिखर तक ले जा सकता है, यदि नहीं है तो यह आपको गर्त में गिरा सकता है। अतः यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतें, अपने डर, संशय और आलस्य पर विजय प्राप्त करें। याद रखें, बाहर की दुनिया की दीवारें उतनी ऊंची नहीं है जितनी हमारे मन के भीतर की शंकाएं। जिस दिन आपने अपने मन से कह दिया है कि मैं जीतूंगा, उसी दिन आपकी आधी जीत सुनिश्चित हो जाती है।
1: अभी आपने सुना आज का चिंतन। आलेख आदित्य कुमार सोनी का था, वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम में सोयाबीन की बुआई से पहले किस तरह करें तैयारी, इस विषय पर आप सुन रहे हैं जानकारी।
2: किसान भाई उनके राम राम। खेती की बात में आज किसान भाई उन अपन बात करांगा कि सोयाबीन की फसल का पहला, मतलब जब अपना के बुआई करनी है ओका पहला अगर खेत की तैयारी अच्छी तरह से करी लेवा तो अपनी जो पैदावार है वह अपन अच्छी तरह से ले सकांगा। एका सारू जरूरी है कि अपना किसान भाई उनके थोड़ी घनी बात उनको ध्यान रखनो पड़ेगो। देखो अब अपनो जो है बरसात को मौसम आई गयो है तो किसान भाई उनकी नज़र में सबसे पहला तो यही रहे कि अपनी जो सोयाबीन की खेती है वह अच्छी रहे और कम समय में वे अच्छी कमाई ले सके। पर कई हुए कि अपना किसान भाई उन मेहनत तो पूरी करे फिर भी खेत में जो पौधा ना रहे वे या तो कमज़ोर पड़ी जावे या उनकी फलियां कम लागे और उत्पादन जो रेवेन्यू उम्मीद से नीचे चले जावे। एका सारू किसान भाई उन हमेशा यही सोचे कि कैसे अच्छी पैदावार मिली सके है, कैसे अच्छी अपन फसल ली सका। हाँ तो ऐसा नहीं है कि बरसात पे ही अपना किसान भाई उनके निर्भर रहनो है, बल्कि बुवाई का पहला अगर उन्होंने तैयारी अच्छी तरह से करी है और शुरुआत को कुछ समय जरूरी बात उनको ध्यान में राखी लियो है तो वे फसल जो अपनी है वह ज़्यादा स्वस्थ भी रहेगी और जो अपनी पैदावार है वह भी अच्छी मिली जाएगी। एका सारू जरूरी होवे है कि अपना किसान भाई हो जब भी बुवाई करे ओका पहला मिट्टी की जांच जरूर करवाई ले। बहुत सब भाई उन कई करे कि मिट्टी की जांच नहीं करवाए तो जो फसल में जो पोषण है ओकी कमी अपना खेत में देखेगी, जिका से ही अपना जो पत्ता ना है वे कमजोर लागे और अच्छे से अपनी उपज नहीं हो पाए। एका सारू जरूरी है कि बुवाई का पहला मिट्टी परीक्षण जरूर अपना किसान भाइयों कराई ले ताकि अपने के पतो लगी जावे कि कौन सा पोषक तत्व की कमी है, उसी का हिसाब से खाद और उर्वरक भी डाला और खर्चो भी कम आवेगो और उत्पादन भी अच्छे से अच्छो मिल जावेगो। खेत तैयार करते समय यो जरूरी काम करे कि गहरी जुताई करी लेवे, खेत के समतल करीने रखे, पुराना खतपतवार हुई गया है तो उनके साफ करी लेवे, पानी की निकासी को सही इंतजाम रखे, ऐसा नहीं कि पानी की निकासी को इंतजाम नहीं रखे और पानी भरियो रहे, अच्छी तरह खेत में बीज तेजी से अंकुरित होवे ओका सारू जरूरी है कि अपना अच्छा बीज को अपन उपयोग करा, जैसे कि सस्ता बीज का चक्कर में नहीं पड़ा। बार बार किसान भाइयों बिना प्रमाणित बीज उन खरीद लेवे है तो ओका में अंकुरण कम आवे ने कमजोर हो जावे और रोग भी ज़्यादा बढ़े। अच्छा कंपनी का बीज और अच्छी किस्म का बीज ही अपना किसान भाइयों के लेनो चाहिए। बीज मतलब लेते समय इन्हीं बात को ध्यान रखा कि बीज अच्छा होना चाहिए, साफ और चमकदार होना चाहिए, रोग होने से मुक्त होना चाहिए, अच्छी अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए और स्थानीय मौसम का अनुसार अच्छा बीज अपना किसान भाइयों के चुमनो।

0: चाहिए। और खास बात अपना किसान भाइयों के यह ध्यान रखनी है कि बीजो उपचार करनो अपना किसान भाइयों नहीं भूले, मतलब बीजो उपचार करनो घणो जरूरी हो गए। छोटा खर्च से अगर बची सका, हाँ बड़ा नुकसान बीज से बचनो है तो बीजो उपचार सोयाबीन की खेती का सबसे पहला जरूरी कदम है। इसमें बीजों की शुरुआती जो है फंगस और बीमारियों से सुरक्षा मिले है। अगर बीजो उपचार नहीं कियो तो पौधा में शुरुआत से ही रोग लगने को खतरो रहे है। एका सारू अपना किसान भयोन बीज को उपचार जरूर करें। बुआई का एक दिन पहला बीज उनके जैविक या रासायनिक उपचार से तैयार करी लेवे। साथे कहीं होएगो कि अगर अच्छे जैविक या रासायनिक उपचार से अगर बीज के तैयार करी लेवेगा तो पौधा की जड़ मजबूत होवेगी और अंकुरण भी तेजी से होवेगो। साथेज सही समय पर बुवाई करनो घणो जरूरी होवे। जल्दबाजी में अगर अपना किसान भाई जल्दबाजी करेगा तो उनके नुकसान पहुँचेगो। इका सारो जरूरी है कि सही जो बखत बुवाई की है उन्हीं बखत पे ही अपना किसान भाई उनके बीज बुवाई करनी है और इन्हीं बात को ध्यान रखना है। तो आज अपना किसान भाई से इतना ही कहना थो भाइयों, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, सोयाबीन में बुवाई से पहले किस तरह करें तैयारी, इस विषय पर आपने अभी जानकारी सुनी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

शिव जी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिग्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिव जी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिव जी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में अब आपको जानकारी दें हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।

रहते हैं 7:20 पर। आज वसुंधरा कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको सुनवाएंगे धर्मेंद्र बम का कविता पाठ और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल आप सुनेंगे 7:35 से। कल के सितारे बच्चे हमारे, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होते हैं प्रत्येक रविवार सुबह 8:30 से। आज भी इस कार्यक्रम में हम बच्चों के लिए लेकर आएंगे कई महत्वपूर्ण रोचक जानकारियाँ। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विद्यार्थी जीवन में योग और ध्यान का महत्व। कार्यक्रम में सहभागी बच्चे जो हैं वे होंगे कृष्णा जोशी, गाव्या बावस्कर और लक्षिता जोशी। लोक संगीत कार्यक्रम में छाया पगारे और साथियों के गाए लोकगीत सुनिएगा प्रातः 9:00 से। और शास्त्रीय संगीत में पंडित डीवी पलुस्कर का गाया राग तोड़ी आप सुनेंगे आज। समय रहेगा प्रातः 9:30। प्रातः 9:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपकी सेवा में अनुप्रसारित करेंगे। रोजाना की तरह जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा प्रातः 10:00 और 10:05 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। श्रोताओं प्रातः 11:00 आज आप सुनेंगे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा दिन में 12:02 पर और 12:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:00 हम लेकर हाजिर होंगे महिला कार्यक्रम और दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत और सुगम संगीत का प्रसारण होगा 1:45 से। दिन में 2:30 पर सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान

0: जानकारी दे रहे थे हमारी आज शाम और कल की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रीय सभां सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमंत्री रोष कैमन इत्यत्र राष्ट्रीय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः सीईटीए इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट

0: कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हेलमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदाई ओकीमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
4: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
5: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
7: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
6: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
7: अरे काहे का मजा,
6: क्यों, क्या हुआ?
7: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
6: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
7: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
6: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
9: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
10: क्या?
9: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
10: वो कैसे?
9: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
10: पर सुनेंगे कैसे?
9: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दे कि आज प्रातः 11 बजे से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। साथ ही साथ आज शाम 6:30 से हम आपको सुनवाएंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण।

0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, माफ कीजिए, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आगामी वर्षों में प्रदेश शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जताया विश्वास। आज से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान, 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य। और राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप ने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे।
1: नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमाइनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कल प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया।
2: 16 क्लस्टर का निर्माण करते हुए हमने इंदौर का तेजस इंडस्ट्रियल पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, धार का अमजेरा क्लस्टर, 14 नए क्लस्टर भी बनाने जा रहे हैं ODOP के माध्यम से भी। जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में के GI टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 GI टैग मिले। हमारे लिए आने वाली GIS भी भोपाल में ही होने वाली है, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है।
0: इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़, विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृहत उद्योगों के लिए 1274 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में सुश्री पटेल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में अब लगभग 1,84,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो रोगियों के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य कर रहे हैं।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत आज से 30 जून तक 5 वर्ष तक की आयु के प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियोरोधी वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कल 29 एवं 30 जून को घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। झाबुआ जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जिला चिकित्सालय में अभियान का शुभारंभ करेंगी। जिले में 2,13,504 बच्चों को पोलियोरोधी दवा की 2 बूंद पिलाने का लक्ष्य है। रायसेन जिले में लगभग 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जीआई टैग वाले रीवा सुंदरजा आमों की पहली वाणिज्यिक निर्यात खेप संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गई है। इसमें 1 मीट्रिक टन आम शामिल थे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से वैश्विक बाजारों में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले कई महीनों से एपिडा ने मध्य प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग निर्यातकों किसान उत्पादकों संगठनों पैकिंग हाउस संचालकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ मिलकर इस उत्कृष्ट किस्म के आम के निर्यात के लिए संपर्क स्थापित करने का काम किया है। राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप सिंह ने भुवनेश्वर में 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कल पुरुष शॉट पुट स्पर्धा में 20.40 मीटर की प्रभावशाली थ्रो करते हुए रजत पदक अर्जित किया। समरदीप सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर एशियाई खेल 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन मानक भी प्राप्त कर लिया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने समरदीप सिंह को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल इंदौर उज्जैन और नर्मदापुरम जबलपुर रीवा ग्वालियर शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। मां शारदा की नगरी की धरोहर और विश्वविख्यात मैहर वाद्य वृंद को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। मैहर बैंड की इस अनूठी संगीत परंपरा को जीवंत रखने और आगामी पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा शासकीय संगीत महाविद्यालय मैहर के माध्यम से एक गुरूकुल की स्थापना भी की जा रही है। इस गुरूकुल के पद्धति से प्रशिक्षित होकर युवा कलाकार मैहर बैंड के अनूठे संगीत रागों और इसकी गौरवशाली गुरु शिष्य परंपरा को और अधिक समृद्ध कर सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात बैतूल जिले के प्रवास के दौरान प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू में ग्रामीण शानु मंगल भुसुमकर के निवास पर रात्रि भोजन किया। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कल सतना जिले के चित्रकूट में सदगुरू नेत्र चिकित्सालय में आयोजित समारोह में सदगुरू आई केयर एजुकेशन अकादमी का शुभारंभ किया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने कल दमोह जिले के नोहटा स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय में विशेष जनसुनवाई आयोजित कर क्षेत्र के नागरिकों की समस्याएं सुनी। प्रदेश पुलिस का 15 दिवसीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 झाबुआ में चल रहा है, जिसके सभी थाना क्षेत्रों में साइबर जागरूकता रथ और रक्षा सखी टीम लोगों को जागरूक कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आगामी 20 वर्षों में प्रदेश शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जताया विश्वास। आज से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान 1 करोड़ बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य। और राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप सिंह ने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम वसुंधरा।

0: कार्यक्रम वसुंधरा के श्रोताओं को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र बम नागदा जंक्शन से आपके समक्ष पर्यावरण संरक्षण पर काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी काव्य यात्रा को प्रारंभ करना चाहता हूँ। जल के निमित्त से मिट्टी सुगंधित होती है। जल के निमित्त से मिट्टी सुगंधित होती है। मिट्टी के निमित्त से हरियाली सुगंधित होती है। जल के निमित्त से मिट्टी सुगंधित होती है। मिट्टी के निमित्त से हरियाली सुगंधित होती है। हरियाली के निमित्त से वायु सुगंधित होती है। हरियाली के निमित्त से वायु सुगंधित होती है। और वायु के निमित्त से ही जलवायु सुगंधित होती है। वायु के निमित्त से ही जलवायु सुगंधित होती है। पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है जल। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं हो सकता है। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जल। जल है तो कल है। जल है तो कल है। जल ही तो कल है। जल है तो कल है। जल ही तो कल है। जल का हम करे संयम। जल का हम करे संयम। वरना मुश्किल हर पल है। वरना मुश्किल हर पल है। जल है तो कल है। जल में हाइड्रोजन है। जल में हाइड्रोजन है। प्राणवायु ऑक्सीजन है। जल में हाइड्रोजन है। प्राणवायु ऑक्सीजन है। जीने के लिए संबल है। जीने के लिए संबल है। जल है तो कल है। जल ही तो कल है। तीन हिस्से में है पानी। तीन हिस्से में है पानी। फिर भी करता है मनमानी। तीन हिस्से में है पानी। फिर भी करता है मनमानी। उपयोग में यह चंचल है। उपयोग में यह चंचल है। जल है तो कल है। जल ही तो कल है। पानी है तो इज्जत है। पानी है तो इज्जत है। बिन पानी बहुत फजीयत है। पानी है तो इज्जत है। बिन पानी बहुत फजीयत है। जीवन होता इससे सफल है। जीवन होता इससे सफल है। जल है तो कल है। जल ही तो कल है। और अंतिम चार पंक्तियों में एक संदेश देना चाहता हूँ कि जल को न बहने दे व्यर्थ। जल को न बहने दे व्यर्थ। वरना हो जाएगा अनर्थ। जल को न बहने दे व्यर्थ। वरना हो जाएगा अनर्थ। यह है तो गंगा शिप्रा चंबल है। जल है तो कल है। जल ही तो कल है। जल का हम करें संयम। वरना मुश्किल हर पल है। जल है तो कल है। जल है तो कल है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पर्यावरण। मौसम आते हैं और चले जाते हैं। मौसम आते हैं और चले जाते हैं। हर पल खुशियां लेकर आते हैं। मौसम आते हैं और चले जाते हैं। हर पल खुशियां लेकर आते हैं। स्वस्थ पर्यावरण जरूरी है शरीर के लिए। स्वस्थ पर्यावरण जरूरी है शरीर के लिए। पर्यावरण से ही सुखद जीवन बिताते हैं। पर्यावरण से ही सुखद जीवन बिताते हैं। मौसम आते हैं और चले जाते हैं। हर पल खुशियां लेकर आते हैं। स्वस्थ पर्यावरण जरूरी है शरीर के लिए। पर्यावरण से ही सुखद जीवन बिताते हैं। पर्यावरण ने सुंदर उपहार दिया है। पर्यावरण ने सुंदर उपहार दिया है। सुरक्षित आवरण देकर उपकार किया है। पर्यावरण ने सुंदर उपहार दिया है। सुरक्षित आवरण देकर उपकार किया है। जब जब हमने जो सपना देखा। जब जब हमने जो सपना देखा। हर सपने को सफल साकार किया है। हर सपने को सफल साकार किया है। ये नदियाँ पर्वत पौधे और शुद्ध हवा। ये नदियाँ पर्वत पौधे और शुद्ध हवा। इन सबसे बढ़कर स्वर्ग और कहाँ। ये नदियाँ पर्वत पौधे और शुद्ध हवा। इन सबसे बढ़कर स्वर्ग और कहाँ। लालच और नासमझी ने किया। लालच और नासमझी ने किया। पर्यावरण को अब ध्वस्त यहाँ। आगजनी से विषैला धुआं उठता। आगजनी से विषैला धुआं उठता। धुएं से वातावरण दूषित होता। आगजनी से विषैला धुआं उठता। धुएं से वातावरण दूषित होता। अपना नन्हा शिक्षा से वंचित रहता। अपना नन्हा शिक्षा से वंचित रहता। फिर क्यों मानव आगजनी करता। वृक्ष काटे नदियां रोकी वायु में रसायन मिलाया है। वृक्ष काटे नदियां रोकी वायु में रसायन मिलाया है। तब इस पर्यावरण ने भी अपना कहर ढाया है। वृक्ष काटे नदियां रोकी वायु में रसायन मिलाया है। तब इस पर्यावरण ने भी अपना कहर ढाया है। जहां पर जरूरत है वहां तो अकाल दिया। जहां पर जरूरत है वहां तो अकाल दिया। नहीं तो शीत में भी सावन बरसाया है। इस कृति का कर ले मान। अंतिम चार पंक्तियां एक संदेश के साथ। इस कृति का कर ले मान। जलवायु का करे सम्मान। इस कृति का कर ले मान। जलवायु का करे सम्मान। प्रकृति को अपना मित बनाकर। प्रकृति को अपना मित बनाकर। पर्यावरण का हम रखे ध्यान, पर्यावरण का हम रखे ध्यान, पर्यावरण का हम रखे ध्यान।
1: एक बरस के 12 महीने हर महीना त्योहार है, एक बरस में 12 महीने हर महीना त्योहार है, सब त्योहारों की देखो महिमा अपरंपार है, महिमा अपरंपार है। अषाढ़ का ये मीठा महीना, अषाढ़ का ये मीठा महीना, ठंडी ठंडी बयार है, अषाढ़ का ये मीठा महीना, ठंडी ठंडी बयार है, घुमड़ घुमड़ कर बादल लाते बारिश की फुहार है। कहीं कम तो कहीं है ज़्यादा, कहीं कम तो कहीं है ज़्यादा, पानी का इकरार है, चारों तरफ हरियाली देखो बरखा का श्रृंगार है, बरखा का श्रृंगार है। सावन आया दिल बहलाया, सावन आया दिल बहलाया, शहरों की बौछार है, सावन आया दिल बहलाया, शेरों की बौछार है, झूम झूम कर पशु नाचे भरते ये हुंकार है। पक्षियों का कलरव मीठा, पक्षियों का कलरव मीठा, आंखें होती चार है, मन भी सुंदर तन भी सुंदर, सुंदर ये संसार है। भादों में है जाती बारिश, भादों में है जाती बारिश, बारिश को नमस्कार है, कृष्ण विनायक जन्म मास 11 का त्योहार है। ईद पर्यूषण गजब संयोग, ईद पर्यूषण गजब संयोग, ना कोई तकरार है, धर्म आराधना पर्व यहाँ भारत का संस्कार है, भारत का संस्कार है। एक बरस के 12 महीने हर महीना त्योहार है, सब त्योहारों की देखो महिमा अपरंपार है, महिमा अपरंपार है, महिमा अपरंपार है, महिमा अपरंपार है।
0: और अंतिम रचना के रूप में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक गीत आपके सामने निवेदित करने की कोशिश करता हूँ। शीर्षक है पर्यावरण बचाना है।
1: जीवन स्वस्थ बनाना है, पर्यावरण बचाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है, पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है, पर्यावरण बचाना है। महिमा जल की अपरंपार, जल बिन चले न ये संसार, महिमा जल की अपरंपार, जल बिन चले न ये संसार, जल को ना व्यर्थ बहाना है, पर्यावरण बचाना है, जल को ना व्यर्थ बहाना है, पर्यावरण बचाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है, पर्यावरण बचाना है। वृक्ष देते ऑक्सीजन, बारिश का है आकर्षण, वृक्ष देते ऑक्सीजन, बारिश का है आकर्षण, वृक्षों की रक्षा करना है, पर्यावरण बचाना है, वृक्षों की रक्षा करना है, पर्यावरण बचाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है, पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है। जीवन यापन में सहयोग, विकसित होते ये उद्योग, जीवन यापन में सहयोग, विकसित होते ये उद्योग, लेकिन धुएं को दूर भगाना है, पर्यावरण बचाना है, धुएं को दूर भगाना है, पर्यावरण बचाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है, पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है। गंदगी हो पास हमारे, पनपने लगते रोग सारे, गंदगी हो पास हमारे, पनपने लगते रोग सारे, स्वच्छता अपनाना है, पर्यावरण बचाना है, स्वच्छता अपनाना है, पर्यावरण बचाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है, पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है।
0: स्वस्थ तन मन और चिंतन पर्यावरण का करे मनन, स्वस्थ तन मन और चिंतन पर्यावरण का करे मनन। जागरूक सभी को होना है पर्यावरण बचाना है, जागरूक सभी को होना है पर्यावरण बचाना है। जीवन स्वस्थ बनाना है पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है जीवन स्वस्थ बनाना है, जीवन स्वस्थ बनाना है पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुंधरा। आज आपने सुना धर्मेंद्र बम का कविता पाठ। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल सुनने वाले सभी श्रोताओं को राहुल तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुनहरे पल में। और आज की इस खूबसूरत सुबह में आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म के गीत के साथ। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की है, संगीत रचना रविंद्र जैन की।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कश्मीर की कली इस फिल्म का गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, SH बिहारी के बोल OP नैयर का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। थोड़ी देर में समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाबराव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जांच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
7: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
8: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
9: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बर।
10: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा जुपोन सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेंजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रही है। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने कल के सितारे बच्चे हमारे।
1: कल के सितारे बच्चे हमारे, कल के सितारे बच्चे हमारे,
2: कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम में स्वागत है बच्चों आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदनी दीदी। बच्चों, विद्यार्थी जीवन में योग और ध्यान का बड़ा महत्व है। जी हाँ बच्चों, योग की शुरुआत हजारों साल पहले भारत में हुई थी। इसे सबसे पहले भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों सप्त ऋषियों को सिखाया था। इसीलिए बच्चों उन्हें पहला योगी यानी आदि योगी और पहला गुरु आदि गुरु कहा जाता है। बाद में बच्चों इसे महर्षि पतंजलि ने क्रमबद्ध तरीके से दुनिया के सामने रखा। बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। जी हाँ बच्चों, योग शरीर मन और सांस को आपस में जोड़ता है। बच्चों, योग करने से हम हमेशा स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान रहते हैं। इसलिए बच्चों योग और ध्यान को अपने जीवन में आप सभी जरूर शामिल करें। जी हाँ बच्चों, आज के कार्यक्रम में हमने कुछ ऐसे ही बच्चों को शामिल किया है जो नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं और जीवन में सदैव आगे रहते हैं। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू।
3: हेलो दोस्तों, कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्षिता जोशी, क्लास 9 से। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है हमारे नन्हे कलाकार कृषिता जोशी और गाव्या बावस्कर। दोस्तों, हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो आइए आज हम इस कार्यक्रम का शुभारम्भ भी भगवान के श्लोकों से करते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता के सुंदर श्लोकों को सुना रही है कृषिता जोशी।
4: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृषिता जोशी, क्लास 1st ए से। आज मैं आप सभी को कुछ सुंदर सुंदर से गीता की कुछ श्लोक सुनाने जा रही हूँ। चलिए सुनते हैं। अथ पञ्चदशोऽध्याय श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूल

0: राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
1: वाह कृष्णा, बहुत सुंदर। अब कृष्णा आपको एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाने जा रही है, सुनिएगा।
0: मेरे छोटे से भगवान जिनके घुंघर वाले बाल, जाओ जाओ ना कहीं मुख मोड़ के। मैंने आंगन से

0: प्यार से, मैंने भोजन बनाया बड़े प्यार से, जीमो जीमो रे भगवान, जिनके घूंगर वाले बस जाओ जाओ ना कहीं मुख मोड़ के, मैंने बिस्तर सजाया बड़े प्यार से, मैंने बिस्तर सजाया बड़े प्यार से, सो सो रे भगवान, जिनके घूंगर वाले बस जाओ जाओ ना कहीं मुख मोड़ के। धन्यवाद, मैंने भजन सुनाया, आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं आपको रामायण के कुछ चौपाई सुनाने जा रही हूँ, जो मैं रोज स्कूल जाते वक्त बोलती हूँ। गुरु ग्रह गए पढ़न लगुराई, अल्प काल विद्या से बुझाई, गही पर कृपा करी जनु जानी, कबीर जी रचा वही बानी, सरस्वती माया दृष्टा, दीना पुस्तक धारिणी, हंस वाहिनी समायुक्ता, विद्या दान करो ममा, विद्या दान करो ममा, विद्या दान करो ममा। इन चपाइयों से अच्छी विद्या बुद्धि आती है। धन्यवाद।
1: कृषिता, क्या तुम्हें वो तीन मैजिक वर्ड्स पता है?
0: हाँ दीदी।
1: तो वो अपने दोस्तों को बताओ।
0: थैंक यू, सॉरी, प्लीज।
1: अरे वाह, तुम्हें तो पता है, बहुत अच्छी बात है। कृषिता, हमें ब्रश कितनी बार करना चाहिए?
0: दो बार।
1: कब करना चाहिए?
0: सुबह और रात को।
1: दोस्तों, टू टाइम ब्रश करने से हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं।
0: थैंक यू।
1: दोस्तों, अब हम फिल्म लोरी का प्यारा सा चिड़िया गुड़िया चांद चकोरी सुनते हैं।

0: गीत तो सुन लिया है, अब आइए अब सुनते हैं गाव्या से मधुर कविताएं और उनकी रोचक बातें।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम गाव्या बावस्कर है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। अब मैं आपको कविताएं सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, केला ये आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। दोस्तों कैसी लगी मेरी कविता? अच्छी ना? चलिए एक और सुनाती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, नदी बनूं। कभी कभी होती है इच्छा, नदी बनूं मैं बहती जाऊं। खड़े किनारों के पेड़ों से गले लगूं, फिर हाथ मिलाऊं। कभी रात में चंदा देखूं, अपने जल में उसे छिपाऊं। सब तारों को पकड़ पकड़ कर अपने ऊपर मैं तैराऊं। कभी कभी लहरें बन उछलूं और किनारों से टकराऊं। कभी सीढ़ियों पर मैं बैठूं, कभी उछलकर वापस आऊं। भाटी पत्थर चट्टानों को हर हर के मैं गीत सुनाऊं। बनू सहायक खेतों की मैं और फसल भरपूर उगाऊं। कभी कभी होती है इच्छा, नदी बनू मैं बहती जाऊं। दोस्तों आपको नदी वाली कविता बहुत पसंद आई होगी। चलिए एक और सुनाती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, नन्नी बूंदे। काले काले बादल की, हम नन्नी नन्नी बूंदे हैं। जल जल के मीठे जल की, नन्नी नन्नी बूंदे हैं। बादल के पंखों पर बैठ, आसमान से उतर कर आती। रिमझिम छमछम मीठा गाकर, झूम झूम कर जल बरसाती। मुंह धोती थी फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती। जीवन उसको मिल जाता है, जिस प्राणी को हम छू देती। छोटी है पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर भरती। बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। काले काले बादल की, हम नन्नी नन्नी बूंदे हैं। दोस्तों आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। चलिए आपके साथ करते हैं बहुत सारी बातें, मजा आएगा सुनकर। दोस्तों 21 जून को हमने विश्व योग दिवस मनाया। मैं योगा करती हूँ रोज। मेरे स्कूल में हफ्ते में 2 दिन योग होता है। आपको बताना चाहूंगी, मुझे ताड़ासन बहुत पसंद है। वृक्षासन करती हूँ, तितलियासन भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ। आपको बताना चाहूंगी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और पढ़ाई में ध्यान भी लगता है। मन एकाग्र होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, फिटनेस बढ़ती है। और हाँ, मैं बड़े होकर योगा एक्सपर्ट बनूंगी, सबको फ्री में सिखाऊंगी ताकि सब लोग स्वस्थ रहें।
2: अरे वाह गाव्या, आपके तो बहुत अच्छे विचार हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप योगा एक्सपर्ट बने।
1: और दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है, एक बात बताऊं, मुझे तो अम्ब्रेला बहुत पसंद है। दोस्तों मेरे पास 3-3 अम्ब्रेला है, रेड पर्पल एंड पिंक। जब भी हल्की हल्की बारिश होती है, मैं मम्मी पापा घूमने जाते हैं अम्ब्रेला लेकर। अगर पानी ज्यादा गिरता है तो मैं पेपर की नाव बनाकर पानी में तैराती हूँ। दोस्तों बारिश के मौसम में मम्मी बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हैं, आलू के, भुट्टे के, प्याज के, और साथ में अदरक वाली चाय। और फिर हम सब पीते हैं और मजा करते हैं और गाने भी सुनते हैं रेडियो पर। अरे हाँ चलो।

0: एक प्यारा सा गीत। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले।
1: देखो देखो क्या वो पेड़ है

0: दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है लालसी राजा और सोने का स्पर्श। बहुत समय पहले एक राज्य में मिडास नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। उससे सोने से बहुत प्यार था। उसने अपना अधिकांश समय अपने खजाने की गिनती करने और अधिक सोना इकट्ठा करने में बिताया। एक दिन राजा मिडास के महल में एक जादुई परी आई। परी ने राजा की मदद से खुश होकर उसे एक वरदान मांगने को कहा। राजा ने बिना सोचे समझे कहा, मैं जो भी चीज छूं वह सोने में बदल जाए। परी ने उसे यह वरदान दे दिया। राजा मिडास अपनी जादू शक्ति पाकर बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी महल की चीजों को छूना शुरू किया। उसे एक कुर्सी, एक मेज और एक किताब को छुआ और वे तुरंत शुद्ध सोने में बदल गई। राजा खुशी से उछलने लगा। थोड़ी देर बाद राजा को भूख लगी। वह जैसे ही खाना खाने बैठा और उसने रोटी का टुकड़ा छुआ, वह सोने में बदल गया। उसने पानी का ग्लास उठाया तो वह भी सोने का ठोस टुकड़ा बन गया। अब राजा बहुत घबरा गया। तभी उसकी बेटी रोते हुए उसके पास आई। राजा ने उसे सांत्वना देने के लिए जैसे ही अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा, उसकी बेटी भी सोने की मूर्ति में बदल गई। यह देखकर राजा मिडास फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका लालच खत्म हो गया। वह जादुई परी वापस आई और राजा की हालत देखकर उसे पछतावे में पाया। राजा ने परी से गिड़गिड़ाकर अपना वरदान वापस लेने की प्रार्थना कर, परी ने दया दिखाते हुए उसे एक पवित्र नदी में डुबकी लगाने को कहा, जिससे सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो सके। राजा ने नदी में डुबकी लगाई और उसका स्पर्श सामान्य हो गया। इसके बाद वह कभी लालची नहीं बना और अपनी बेटी व परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। जो हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। अधिक लालच हमेशा विनाश और दुख का कारण बनता है।
1: अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत सुंदर कहानी सुनाई। चले दोस्तों, मिलकर बजाते हैं तालियां।
0: दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जो कि अभी अभी हमने मनाया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि योग करने से क्या क्या फायदे होते हैं। योग करने से हम हमेशा स्वस्थ, खुश और एनर्जेटिक रहते हैं। इससे हमारा दिमाग शांत रहता है और पढ़ाई में ध्यान भी अच्छे से लगता है। दोस्तों, योग के बारे में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हम जब भी योग करें तब किसी योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में करें। विद्यार्थी जीवन में योग और मेडिटेशन का बड़ा ही महत्व है। आपको बताना चाहूंगी, पौराणिक कथाओं के अनुसार योग का जन्म हमारे देश भारत में हिमालय की गोद में हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को योग का जन्मदाता और सबसे पहला गुरु माना जाता है। क्या आपको पता है कि भारत में योग की प्रथम महिला कौन थी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। योग की प्रथम महिला के रूप में इंदिरा देवी का नाम लिया जाता है। इंदिरा देवी ने कई बाधाओं को तोड़ते हुए महिलाओं को योग जगत में मार्ग दिखाया है। 1899 में लातनिया में जन्मी और भारत में महान कृष्णामाचार्य की समर्पित शिष्य बनी। दोस्तों, योग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन मेडिटेशन के भी एक अलग ही लाभ होते हैं। मुझे भी मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। मेडिटेशन मन और शरीर को शांत करने का एक शक्तिशाली अभ्यास है। यह मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है, तनाव और चिंता को कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करके भावनात्मक संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। और दोस्तों, मेडिटेशन जरूर करें सोने से पहले कुछ मिनट। दोस्तों, मुझे त्राटक करना भी बहुत पसंद है। दोस्तों, मैं त्राटक का अभ्यास नियमित करती हूँ। त्राटक के भी बहुत फायदे होते हैं। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और आंखों की रोशनी अच्छी रहती है और साथ ही साथ मन भी एकाग्र होता है। त्राटक करने से नजर दोष भी दूर होता है, इसलिए दोस्तों आप भी त्राटक का जरूर अभ्यास करें। दोस्तों, त्राटक के बारे में एक और विशेष बात बताना चाहूंगी कि त्राटक आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रभावशाली होता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ महासागरों के विषय में रोचक जानकारी देती हूँ। विश्व में प्रमुख 5 महासागर हैं। पहला, प्रशांत महासागर। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच है। दूसरा, अंटार्कटिक महासागर। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और व्यापार की दृष्टि से दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। तीसरा, हिंद महासागर। यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश भारत के नाम पर रखा गया है। दक्षिण महासागर, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर, यह आकार में सबसे छोटा और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित सबसे ठंडा महासागर है। दोस्तों, महासागरों से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।

0: आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे
1: बच्चों एक और रोचक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ आपसे होगी मुलाकात। इस वादे के साथ दुर्गेश नंदनी दीदी को दे अनुमति, टाटा बाय बाय।
2: टाटा बाय बाय।
1: बच्चों जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: कल के सितारे बच्चे हमारे, कल के सितारे बच्चे हमारे।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं छाया पगारे और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गणेश वंदना के साथ।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?

0: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये दिशा आया?
1: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पर ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है, और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेन्यूल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया, दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया, या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक के एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक SLRM सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है, जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड की उस साइड हमारा SLRM सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देते हैं, उस टोकन को लेकर आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहां जमा करिए, और यहां पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
0: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
1: यस।
0: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी? हाँ, आप
1: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक IC एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे, और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद थी क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको यह समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहां बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर एक किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता
0: है। ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो उसके लिए भी एक रेट है,
1: उसके लिए यहाँ पर रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इन साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा, तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
0: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
1: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ, अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना चाहता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
0: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
1: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं, तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
0: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
1: जी
0: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
1: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी मतलब ये ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
0: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए?
1: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 या 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं, तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहां पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहां तक कि जो हमारे सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो सीएजी ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तो सीएजी ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
0: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
1: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है, 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें, मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, 1 किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
0: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
1: नहीं,
0: क्या है,
1: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन

0: रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए। जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी, अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं।
1: जैविक है
0: वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं। और वो क्या होती है कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है, तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण, वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: कैफे असर पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं, ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर इस पर अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको। ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं, बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो, तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है, ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब?
0: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि से मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है, तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था। ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था। उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे, तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22, तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं,
0: हाँ,
1: उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी
1: अंबिकापुर में। तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से

0: 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पर सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है। तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, न केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी
0: इनिशिएटिव में जाकर फिल्म देख सकें,
1: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाए फिर प्रेस करते जाए डालते जाए वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है, सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पे भी कुछ।
0: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
1: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
0: उसके रैपर
1: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
0: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: # गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
0: जापान कोरिया यहां से भी
1: सभी जगह
0: प्रशंसा आई थी।
1: अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
0: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आइए श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित DV पलुस्कर का गायन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित DV पलुस्कर का गाया राग तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पंडित डीवी पलुस्कर का गाया राग तोड़ी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी का प्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से करेंगे। कृपया प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: एक ही चिट्ठी, आलेख अजीत मिश्रा का, वाचन स्वर शेख महजबी अलमास के।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी, आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर शेख महजबी अलमास।

प्राचीन ज्ञान दुर्लभ अभिलेखों और ऐतिहासिक ताड़पत्रों के संरक्षण और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने के उद्देश्य से अनूपपुर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की विशेष टीम ने अब तक जिले में 10,544 प्राचीन पांडुलिपियों को खोजकर उनकी जानकारी आधिकारिक ऐप पर अपलोड कर दी है। सर्वेक्षण टीम द्वारा अमरकंटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभियान चला कर इन बहुमूल्य धरोहरों को संकलित किया जा रहा है। अडानी थर्मल पावर प्लांट में जिला चिकित्सालय

अनूपपुर एवं श्रीराम अस्पताल शहडोल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 293 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। कलेक्टर हर्षल पंचोली एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी के मार्गदर्शन में जिले में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल ग्रहण संरचनाओं, तालाबों, नदियों एवं बावड़ियों के संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य 26 के विरुद्ध 41 कार्य पूर्ण किए गए। वहीं नालों नालियों की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण के 32 लक्ष्यों के मुकाबले 122 कार्य किए गए हैं। जिले में अमृत हरित अभियान के अंतर्गत पौधरोपण की तैयारियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 50 के लक्ष्य के विरुद्ध 169 गतिविधियां पूर्ण की गईं। चित्रकला, रंगोली, निबंध, स्लोगन, वॉल पेंटिंग, संगीत कार्यक्रम, कलश यात्रा एवं जागरूकता रैली जैसी गतिविधियों के 25 लक्ष्यों के विरुद्ध 63 कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को नशा न करने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई। छात्र छात्राओं ने नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार सक्सेना ने कहा कि युवा वर्ग राष्ट्र की शक्ति है और उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर अपने व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य संरक्षण एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। महिला एवं बालिका हितैषी पंचायत पहल के अंतर्गत राज्य सलाहकार निशा बारी परनामी ने जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत कोहका का भ्रमण कर पंचायत की विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पंचायत द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यों का अवलोकन किया तथा महिला आमसभा में ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं एवं सुझाव सुने। इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की शहादत की याद में शुक्रवार 26 जून को मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम सादगी के साथ मनाया गया। लोगों ने आशुरा जुमे की नमाज अदा करते हुए अमन और शांति की दुआएं मांगी। जिले के 6 स्थानों में 21 ताजिए निकाले गए और उन्हें करबला में ठंडा किया गया। 37 दिनों बाद 4 जंगली हाथियों का समूह लौट कर जिले में आ गया है। इससे जंगली क्षेत्रों और उससे लगे हुए ग्रामीण इलाकों में चिंता है। दिन भर ये हाथी जंगल में विश्राम करते हैं और रात के समय रिहायशी इलाकों में जाकर घरों में तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि वन अमला हाथियों पर नजर रखे हुए है और विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उनको रात के समय कच्चे मकानों में ना रहने, सुरक्षित स्थानों में जाने और घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। ऐसी किसी भी गतिविधियों को करने से मना किया है जिससे हाथी भड़क कर हानि पहुंचा सकता है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल ने जनजातीय बहुल अनूपपुर जिले के विकास से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर पत्र सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से अनूपपुर जिले में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना का अनुरोध करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति बहुल एवं कृषि प्रधान जिले के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 300 किलोमीटर दूर जबलपुर जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं जनजातीय विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्री रौतेल ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नवीन आवास स्वीकृत किए जाने की मांग उठाई है। जिले में इस समय बारिश ना के बराबर हो रही है, जिससे कृषि कार्य शुरू करने में देरी हो रही है। बारिश नहीं होने से मौसम में अभी भी गर्मी बनी हुई है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में पुष्पराजगढ़, अमरकंटक से लगे क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिससे पर्यटन और पवित्र नगरी अमरकंटक का मौसम सुहाना हो गया है और वहां के तापमान में कमी आई है, जिससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अनूपपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था अजीत मिश्रा का और वाचन स्वर थे शेख महजबी अलमास के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: हेलो
1: स्वागत है आप सभी कार्यक्रम MH हॉटलाइन में और आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सभी के फोन कॉल्स का। इस कार्यक्रम के लिए हमेशा हमें इंतजार रहता है, तो आप सब जहां से हमें सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट के माध्यम से या फिर न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए आपको एक बार हमारे नंबर बता देते हैं 2710223 और 2710224 2710223 और 2710224। इंदौर से बाहर के श्रोता अगर लैंडलाइन से कॉल करते हैं तो इंदौर का एसटीडी कोड, या मोबाइल फोन से कॉल करते हैं तो भी इंदौर का एसटीडी कोड जरूर डायल करें 0731-0731। इस नंबर पे आप हमें फोन कर सकते हैं और आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला फोन हमारे किन श्रोता का आया है उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार MH हॉटलाइन।
2: नमस्कार, अनिल भंडारी बोल रहा हूँ सुजाम नगर से।
1: बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी कार्यक्रम MH हॉटलाइन में, और इंदौर से हमारे पहले श्रोता हैं आप। तो सबसे पहले संडे का दिन है, रविवार का दिन है, कैसे हैं आप? बिल्कुल, और आप तो
2: कार्यक्रम तो बहुत अच्छे लगते हैं हमको।
1: जी जी जी जी,
2: आप आकाशवाणी पे मन भावन करते हैं, कभी कभी चॉइस काम भी करते हैं, अच्छा लगता है।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया। और
2: आपकी आवाज भी हमें काफी पसंद आती है।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
2: आपका साथ मिलता है तो अच्छा मन लगता है हमको।
1: नहीं नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं का साथ हमें मिलता रहे, और खासकर जो नियमित श्रोता है उनका तो बखूबी मिलता ही रहे। आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको अनिल जी?
2: आज हम पुराने फिल्म बड़ा आदमी का गिनना सुनना चाहेंगे।
1: जी, बड़ा आदमी
2: का गीत है, चित्रगुप्त का संगीत और प्रेम धवन का गीत लगा है।
1: क्या बात है, सारी जानकारी आपने दे ही दी है। मुझे लगता है सिर्फ गाना अब हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहिए, आप तक पहुंचाना चाहिए।
2: वो पिक्चर का गाना बहुत जोरदार है, अखियां संग अखियां।
1: जी
2: अखियां,
1: ठीक है अनिल जी। ठीक है अनिल जी, ये गाना प्ले करते हैं आपकी पसंद पर।
2: और शास्त्रीय गायक का गाना।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: एमएच हॉटलाइन सर, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गुमास्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कौशालिया।
0: बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, आपका हमारे नियमित श्रोता हैं आप, और आज एक बार फिर आपकी बातचीत हो रही है। कैसा लग रहा है कार्यक्रम में?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि थोड़ी सी नाराजगी है आप लोगों से।
0: अच्छा जी, बताएं, आदेश करें।
1: क्या है कि केवल अपन अपनी पसंद का गीत सुन ले, ये कि हम आपके नियमित श्रोता ये सही नहीं है। हम चाहते हैं कि आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम सुने, चाहे महिला जगत, युवाणी, बाल जगत, तो हम वो कार्यक्रम भी सुनते हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी लिखते हैं आपका पत्र में, लेकिन वो शामिल ही नहीं करते हैं। ऐसा जानबूझ के 2-3 हफ्तों से हो रहा है, मतलब आज तक मेरा एक पत्र भी शामिल नहीं हुआ है, और जबकि मैं लगातार पत्र भेज रहा हूँ। केवल गीत सुनना या कोई नियमित श्रोता की पहचान थोड़ी है कोई।
0: मैं इस सूचना को भी जो है पत्रोत्तर विभाग में भेजूंगा अनिल जी, लेकिन क्या होता है ना, आप जानते हैं कि कई बार बहुत सारे पत्रों के बीच हो सकता है कि आपका पत्र शामिल नहीं हो पाया होगा। हमारा प्रयास तो यही रहता है कि जितने भी अच्छे अच्छे खत आते हैं उन्हें हम कार्यक्रमों में शामिल भी करें, और उनमें जो लिखा है आपने उसे आप तक फिर पहुंचाएं, दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाएं। आगे हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। जी, तो आगे आप बात को करते हैं और आपकी नाराजगी जो है उसे गीत के जरिए दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: हमारी नाराजगी थोड़ी तृप्ति मैडम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि 2-3 कार्यक्रम उन्होंने पेश करे थे।
0: जी जी,
1: उन्होंने हमारा पत्र नहीं शामिल करा था।
0: नहीं, मैं बिल्कुल
1: फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, अनुराधा पोरवाल और किशोर कुमार की आवाजों में वो मेरी जान।
0: ठीक है, तो अनिल जी आपकी बात भी हम पहुंचाएंगे, और आप हमारे श्रोता हैं, निश्चित रूप से आपने इस विषय पर हमारा ध्यान जो है वो खींचा है, तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल सुनते हैं आपकी पसंद पर किशोर कुमार और अनुराधा पोडवाल की आवाज में जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। किन से बात हो रही है हमारी?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास से।
0: बहुत बहुत स्वागत है रानू जी आपका कार्यक्रम में। और देवास इंदौर मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है मैम, हम सब लोग। और कैसा मौसम है देवास में? हालांकि इंदौर के बहुत नजदीक है, लेकिन वहाँ कैसा माहौल है?
1: धूप ही खिली हुई है अभी।
0: अच्छा, मतलब बारिश के आसार आज तो नहीं लग रहे हैं वहाँ भी आपको?
1: शाम शाम को होती है थोड़ी थोड़ी।
0: बढ़िया। और रेडियो से किस तरह से जुड़ाव रहता है? रेडियो किस तरह से सुनते रहते हैं आप, जरा बताएं हमें।
1: मैं तो फोन इन प्रोग्राम ही सुनती हूँ मोबाइल ऐप के जरिए।
0: जी जी बिल्कुल। तो सिर्फ आकाशवाणी इंदौर सुनते हैं या बाहर के भी कार्यक्रम आकाशवाणी विविध भारती के नियमित रूप से सुनते रहते हैं मैम?
1: मैं आपको एक बात बोलूं?
0: जी मैम।
1: मेरा फेवरेट तो भोपाल है
0: जी,
1: लेकिन मैं भोपाल में कम कॉल करती हूं क्योंकि वहां रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो गया है तो सुनने में मजा भी नहीं आता। और मुझे ना लाइव फोन इन प्रोग्राम पसंद है। वैसे लाइव फोन इन हर जगह आते, बट मैं हर जगह कॉल नहीं करती हूँ। इंदौर है, आप जो सभी अनाउंसरों से मेरी बात होती है तो आप लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं कॉलर को, तो हमें अच्छा लगता है इसलिए हम कॉल कर लेते हैं।
0: जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: एक गाने के लिए हम इतना परेशान तो नहीं हो सकते ना, तो बात करने के लिए परेशान होते हैं।
0: नहीं नहीं, हम आपको गाना सुनाने के लिए ही बैठे हैं। आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको हम?
1: मूवी का नाम है किसी का भाई किसी की जान, और इसी में एक सॉन्ग है नहीं हो लगता दिल।
0: जी जी, बड़ी अच्छी फरमाइश है आपकी। और नया गीत है कमाल खान और पलक मुछाल की आवाज में, तो जी, मुझे लगता है ये आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।
1: जी बिल्कुल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार। MH हॉटलाइन। हाँ
1: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते, किन से बात हो रही है हमारी?
1: हम श्रीपाद जाखड़े बोल रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र से।
0: जाखड़े साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हमें आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है।
1: हाँ, क्लियर आ रही है
0: जी।
1: आपकी आवाज़, क्लियर आ रही
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। तो क्या करते हैं जाखड़े साहब आप वहाँ पर?
1: हम यहाँ आश्रम में रहते हैं सर, वृद्धाश्रम में रहते हैं।
0: अच्छा
1: जी
0: जी,
1: सर, वैसे इंदौर के ही रहने वाले हैं, तो अभी यहाँ पुणे में रहते हैं सर।
0: जी जी बिल्कुल। और वहाँ पर रहने के दौरान रेडियो के साथ आपका जुड़ाव जो है वो लगातार बना हुआ है, रेडियो सुनते रहते हैं?
1: आज बना रहता है, कारण हम ब्लाइंड होने तो हमको तो रेडियो के सिवाय कोई माध्यम ही नहीं है कोई
0: क्या
1: दूसरा।
0: बात है। और
1: जी
0: ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम आपकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू जो है उसे ऐड कर पा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को लेकर। आज कौन सा गीत सुनवाए जाखड़े जी आपको?
1: हमको अनुभव फिल्म का गाना सुनना है, पुरानी फिल्म है 71 की,
0: जी
1: हमारे साथ में गाया हुआ है।
0: जी
1: फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहे इसको,
0: जी जी बहुत
1: ये
0: खूबसूरत
1: वाला
0: गीत है। आपकी फरमाइश पर आइए, मैं आपको सुनवाता हूँ अनुरोध फिल्म का ये गीत,
1: अनुभव
0: अनुभव फिल्म का, माफ़ कीजिएगा, मन्ना डे की
1: का
0: आवाज़ में ये सुनते हैं गीत आप।
1: जी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते एमएच हॉटलाइन।
1: मोबाइल
0: नमस्कार एमएच हॉटलाइन
1: जी। नमस्ते सर,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही।
0: बहुत स्वागत है जीनत जी आपका, और कार्यक्रम में आज आपका फोन लगा है। कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रही है, बहुत दिनों बाद लगा।
0: जी बताएं। तो सबसे पहले बस यही जानेंगे कि क्या करते हैं आप और किस तरह से सब खैरियत, परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: हाउस वाइफ हूँ, सब ठीक है घर में।
0: ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आप निभाते हैं, इसको तो आपको और दमदारी से कहना चाहिए, इतने हल्के शब्दों में नहीं कहना चाहिए। और रेडियो सुनते रहते हैं इस दौरान, घर के सारे कामकाज के दौरान?
1: हाँ, काम काज चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और
1: जी।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आज कौन सा गीत सुनवाएं कार्यक्रम में आपको?
1: आज मुझे चांदनी पिक्चर का सुनवा दीजिए। पर्वत से काली घटा टकराई पानी।
0: आशा जी और विनोद राठौर जी की आवाज में।
1: आप कौन बोल रहे हैं सर?
0: मैं राहुल तिवारी आपकी सेवा में हूँ आज कार्यक्रम में। आपकी फरमाइश पर हम सुनते हैं ये गीत आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज में।
1: शुक्रिया
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दादा, कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादा रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन जी। नमस्ते, किन श्रोता से बात हो रही है हमारे?
1: जी साहब, मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, मोहम्मद यूनुस खत्री, शिफा कॉलोनी, खंडवा से।
0: बहुत बहुत स्वागत है खत्री जी आपका, और निमाड़ की धरती खंडवा से आप हमसे जुड़ रहे हैं।
1: किशोर कुमार जी
0: की धरती है, दादाजी की नगरी के नाम से फेमस है। बड़ा अच्छा शहर है, बड़ा प्यारा शहर है। कैसा मौसम है वहाँ पर, कैसा माहौल है इन दिनों?
1: मौसम तो अभी परसों दो दिन अच्छी बहुत बारिश हुई थी, कल थोड़ी नहीं हुई, आज हो रही है अभी गर्मी।
0: और गर्मी वहाँ मेरे ख्याल से आम इलाकों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है।
1: ज्यादा होती है
0: तो अभी बारिश के दौरान भी गर्मी ज्यादा ही रहती है, या अब मौसम सामान्य होता है?
1: नहीं, अभी भी मतलब बारिश के बाद भी अभी गर्मी है।
0: जी जी, और आपका क्या व्यवसाय या कामकाज है वहाँ पर?
1: सर मेरा साड़ियों का बिजनेस है।
0: जी जी जी,
1: तो वो पहले सूरत में था, यहाँ पे अभी बीच में 15-16 साल सूरत में था
0: जी,
1: तो वो बराबर मतलब लगा नहीं पाया था, लेकिन वो अब हम पहले आप तिवारी जी?
0: जी, मैं राहुल तिवारी आपकी सेवा में।
1: जी जी जी, पहले हम सीनियर तिवारी जी को सुना करते थे, अब जूनियर तिवारी जी को सुन रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात
1: जी, हमारे तो क्या, हम बहुत पुराने श्रोता है, 46 साल पुराने श्रोता।
0: जी जी, और आपके व्यापार का अनुभव अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि साड़ी का व्यापार हम आमतौर पर जब देखते हैं और बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि उसमें ऐसा रहता है कि बहुत सारी साड़ियों को लोग, एक ग्राहक जो है वो देखता है और फिर उनमें से कोई एक पसंद करता है। आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो जो आप साझा करना चाहेंगे?
1: जी मतलब बहुत ऐसे है, मेरा अनुभव 55 साल का अनुभव है।
0: जी जी जी जी,
1: बहुत अनुभव है, इतने अनुभव आए। मतलब क्या होता है, कभी भी अभी कुछ दिन पहले जब वो भोपाल गैस कांड के समय में हम फेरी घूमते थे साड़ी, तो वो अभी 2-3 साल पहले वो एक मैंने उस समय में 60 रुपए में साड़ी दी थी, तो वो पहन के दिखे थे मेरे को, मुझे 45 साल पुरानी साड़ी तुम्हारे पास है
0: जी।
1: वो ग्राहक कस्टमर से ट्रेन में मुलाकात हो गई,
0: क्या बात है,
1: और वो साड़ी पहन के आए थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि
0: बिल्कुल,
1: क्या बताऊं।
0: बिल्कुल,
1: मतलब पहले की चीजें और पहले की जो मोहब्बत है।
0: हाँ, और पुरानी चीजों की ये खासियत है कि वो चलती बहुत अच्छी थी, उनके खराब होने की गुंजाइश बहुत कम होती थी उस जमाने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी जी, सही बात। तो खत्री साहब, आप कौन सा गीत सुनवाए आज?
1: मुझे वो समझौता फिल्म का गीत सुनना है, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: जी जी, मुकेश जी और मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: जी, और मुझे तो क्या है कि बड़ी बहुत खुशी हुई जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई एमएच हॉटलाइन हो जाता है, मुझे तो मालूम भी नहीं था वैसे।
0: जी, तो ये कार्यक्रम हमने अपने श्रोताओं की फरमाइश पर ही शुरू किया है और नियमित कार्यक्रम है।
1: जी जी, हमारी बहन ने बताया
0: जी,
1: आपके इंदौर की है हसीना बिन
0: मंसूरी। जी हसीना जी मंसूरी,
1: तो जी जी बहुत अच्छी श्रोता है, बहुत अच्छी वो है
0: जी,
1: बहुत बढ़िया है, उनको हमारी तरफ से और आप पूरी आकाशवाणी परिवार को मेरी तरफ से आदाब और सलाम।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं समझौता फिल्म का ये गीत।

0: नमस्कार, एम एच हॉटलाइन।
1: जी सर जी,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सनी शर्मा,
0: सनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हो सनी
1: गन्ने वासुदा राय सर,
0: जी? और गंज वासुदा में क्या करते हैं आप?
1: डेयरी फार्म है सर।
0: आपका खुद का डेयरी फॉर्म है?
1: हाँ सर।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। डेयरी में क्या क्या मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं या केवल मिल्क जो है उसको सप्लाई करते हैं आगे और दूसरे व्यापारियों तक पहुंचाते हैं?
1: मेडिकल सप्लाई होता है।
0: चलिए तो सनी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: राजा हिंदुस्तान,
0: राजा हिंदुस्तानी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: परदेशी गाना नहीं।
0: चलिए, बड़ी खूबसूरत फरमाइश है आपकी। तो आइए बिना देर किए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत।
1: और सर जी, हमारे बच्चे का नाम है पास्कल हाउस।
0: जी जी
1: जी सर।
0: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोताओं ने आपके फार्म हाउस का भी नाम सुना है और अब आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: नमस्कार, एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: जी नमस्ते
1: जी। नमस्ते सर
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: जी। मैं अरविंद अग्रवाल
0: कहाँ से बोल रहे हैं अग्रवाल साहब?
1: जी, श्रीनगर जिला महोबा उत्तर
0: जी,
1: प्रदेश।
0: बहुत बहुत स्वागत है। आपके
1: धन्यवाद।
0: पास से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, हवा
1: बिजली नहीं
0: जैसी।
1: है वैसे,
0: जी जी जी
1: हवा में कर रहा हूँ दबती सी, लाइट नहीं है अभी।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अरविंद जी, महोबा उत्तर प्रदेश से आप हमसे जुड़ रहे हैं, और
1: जी
0: कैसे लगते हैं आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम? आपको वहाँ सुनते हैं नियमित रूप से आप?
1: जी जी तो सुनता हूँ 1 घंटे MH हॉटलाइन,
0: चलिए, और आज
1: मॉर्निंग प्रोग्राम लाइव वाले सभी सुनता
0: जी
1: हूँ।
0: जी और आज आपका कॉल लगा है, और देखिए कार्यक्रम में बस अंतिम कॉल हमें लेना था और वो कॉल आपका रहा, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनवाएं आपको
1: जी, फिल्म का नाम रहेगा ये रास्ते हैं प्यार के।
0: जी, और कौन सा गीत सुनेंगे इस फिल्म का?
1: ये मेरा दिल था एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा।
0: चलिए, बड़ा खूबसूरत गीत है, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है इस गीत में, तो मुझे लगता है बिना देर किए हमें सीधा गीत की ओर बढ़ना चाहिए। आइए, आपकी पसंद पर
1: जी,
0: सुनते हैं ये
1: हमारी
0: गीत।
1: उनको पसंद है
0: जी बिल्कुल
1: जी।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और इसी गीत के साथ आज का एमए शॉर्टलाइन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: महात्मा गांधी का कहना है,
4: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: ध्यान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया गिड बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज

लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में
विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपए का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी
जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है,

वही हरगिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के

नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज

कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है, कौन उसे साफ करता है? ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर

0: एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: जी, आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा

ये समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, और आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। लिखने वाले हैं अनिल कवचाले, नेहा फणसे, सीमा, कमल, पूजा, सुषमा, स्मिता। इन्होंने ये चिट्ठी हमें लिख भेजी है गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये ख़त हमें लिख भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला नगमा ये रहा। गीत और बाकी की जानकारी इस नगमे के बाद।

अनजान की बोलों को अभी आपने सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार की। राजेश रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी और फिल्म का नाम था याराना। और आपकी फरमाइश में अब हम शामिल करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। अगली चिट्ठी आई है मनमोहन राजावत, जिन्होंने ये खत लिख भेजा है, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। साथ में है मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और इनका पूरा परिवार। ये गीत सुनना चाह रहे हैं बेटी फिल्म का। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। शकील बदायूनी ने इस गीत को शब्द दिए हैं और धुन है सोनिक ओमी की।

और अब अगला नगमा आ रहा है हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, इन्होंने ये ख़त लिख भेजा है भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, इन दोस्तों ने सुनना चाहा है रफ़ी साहब को। शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन बनाई है, हसरत जयपुरी ने शब्द दिए हैं, आवाज़ है रफ़ी साहब की, जो हमने आपको बता ही दिया है। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

और अब अगला गीत आ रहा है हमारे इन सभी दोस्तों की पसंद का, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा और प्रभाकर जोंगले, आरती जोंगले, इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है गौतम नगर जिला नांदेड़ से। इन दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया हुआ वो गीत जिसे शब्द दिए हैं आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार एवं पूरा माखीजा कुटुंब इस गीत को सुनना चाहता है, चाहते हैं, जो गीत हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। दौलतबाग मुरादाबाद से ज़फ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। और औरंगाबाद से ये चिट्ठी आई है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और साक्षी राजेश की। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं रफ़ी साहब का गाया हुआ वो गीत जिसकी धुन बनाई है मदन मोहन ने। राजा मेहंदी अली ख़ान ने इस गीत को शब्द दिए हैं दुल्हन एक रात की। इस फिल्म का ये गीत है और हम आपको ये बता ही चुके हैं कि इस गीत को आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। आइए सुनते हैं।

0: और इस गीत को सुनवाने के लिए कुछ और चिट्ठियाँ आई थी जिनमें शामिल हैं बत्ता परिवार, लिखने वाले हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू और निहारिका, साथ में है वंश बत्ता, प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने ये चिट्ठी लिख भेजी थी कंवर कॉलोनी बड़वाह से। और इन्हीं दोस्तों की इस फरमाइश के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न हुआ। आप सभी को शिवम का नमस्कार। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 12:25 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: मालवा की शान
3: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अब तक धारावाहिक भुवन मोहिनी में आपने सुना निर्वासित नर्तकी भुवन मोहिनी को खोजते हुए राजकुमार विजय श्रवा इंद्रप्रस्थ पहुंचा, जहां राजा आदित्य सेन के यहां भुवन मोहिनी ने आश्रय लिया था। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से करना चाहते थे, परंतु चंद्रहासिनी के प्रति आकर्षण के बावजूद विजय श्रवा के मन में भुवन मोहिनी ही बसी थी। ये सब जानकर भी चंद्रहासिनी विवाह करने को तैयार थी। इसी बीच संपूर्ण खंड राज्यों के सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा के दरबार में विजय श्रवा ने हूण सेनापति के अपमानजनक पत्र को पढ़ा और आमात्य ऋषभ देव ने युद्ध के स्थान पर अपमानजनक संधि करने की वकालत की। भुवन मोहिनी ये न सुन सकी और उसने आमात्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। भुवन मोहिनी सुंदरता की देवी तो थी ही, अब वो राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक भी बन गई। हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। इन दोनों को सुखमय जीवन की शुभकामनाएं देकर भुवन मोहिनी दूर चली गई। 5 वर्ष बाद जब वो आई तो चंद्रहासिनी ने अपने कटु शब्दों से उसका अपमान किया। दंड स्वरूप विजय श्रवा ने उसे महल छोड़ने का आदेश दे दिया। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 10वीं कड़ी में।
1: मैं इस अंतापुर की संरक्षिका को आदेश देता हूँ कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतापुर का परित्याग कर दे।

0: बेटी, मेरा एकमात्र पुत्र ही आज भारत का सम्राट है। जब उसके पिता ने भुवन मोहिनी को निर्वासित किया था और मैंने भी पुत्र को अपमानित किया था, तब उसने राज सिंहासन और राजैश्वर्य का मोह छोड़कर भुवन मोहिनी के लिए सबसे नाता तोड़ लिया था। दूसरे भुवन मोहिनी ने स्वयं तुम्हारे लिए जो किया वो अन्य किसी स्त्री से आशा नहीं की जा सकती थी। अंत में स्वयं सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया था। आगे चलकर उसी भुवन मोहिनी ने अपने को नर्तकी के स्थान पर वीरांगना सिद्ध कर दिखाया। वो सहस्त्रों लक्षों भारतीय महिलाओं के सतीत्व को अक्षुण्य रखने के यश की भागिनी बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने स्वयं तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का मार्ग खोल दिया था। बेटी, तुमसे अपराध हुआ है, किंतु चलो, मैं सम्राट से तुम्हारे अपराधों की क्षमा याचना करूंगी। चलो। भारत के सम्राट,
1: राजमाता,
0: आज तुम्हारी माता भी तुम्हारे सम्राट पद की महत्ता के समक्ष नतमस्तक। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी वृद्धा माता पुत्रवधू के होते हुए कष्ट झेले?
1: नहीं माँ, क्या मैंने कोई कष्ट दिया आपको?
0: नहीं मेरे पुत्र।
1: तो फिर
0: क्या कहूं, तुमने पुत्र वधु को निर्वासित किया है, मेरी गोद से मेरा पौत्र छीनना चाहा है, जो इस राज सिंहासन का श्रृंगार है। जानते हो, चंद्रहासिनी सर्वथा मेरी सेवा में तत्पर रही है। अपने पौत्र का मुख चुंबन करके मैंने वृद्धावस्था के कष्टों को भुलाने की चेष्टा की है। आज सम्राट का आदेश मेरी गोद से मेरा पौत्र और मेरी दृष्टि से प्रेम की मूर्ति पुत्रवधु को छीन रहा है। विडंबना है कि वो आदेश देने वाला सम्राट मेरा ही हृदय पिंड है। मैं अब जीना नहीं चाहती। तुम्हारे पिता को भी इस प्रकार पौत्र और पुत्रवधु के वियोग के कारण अपार कष्ट झेलना पड़ेगा। मेरे लाल, मेरी आज्ञा है कि हम दोनों बूढ़ों के जीवन काल तक ना तो हमारी पुत्रवधु हमारी दृष्टि से बाहर होगी और ना ही मेरा फूल सा कोमल पौत्र ही हमारी गोद से छीना जाएगा।
1: अच्छा, ऐसा ही होगा माँ, किंतु मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।
0: क्या?
1: राजकुमारी चंद्रहासिनी मेरी दृष्टि के सम्मुख नहीं आएंगी।
0: क्या?
1: अब वो मेरे स्थान पर सत्ता और शक्ति की पुजारिणी बन चुकी हैं।
0: मेरी लाल, तुम मेरी दृष्टि के बाहर भारत के सम्राट हो, किंतु मेरे अपने घर में मेरे एकमात्र पुत्र, मेरे जीवन के एकमात्र सहारे हो। मैं तुम्हीं से पूछती हूं कि चंद्रहासिनी क्या मुख लेकर महाराजा आदित्य सेन के पास जाएगी? उसकी वहां पर आवश्यकता ही क्या है? उसके सर्वस्व तो तुम ही बन चुके हो मेरे पुत्र। लाख अपराध करने पर भी वो भारत सम्राट की साम्राज्ञी घोषित हो चुकी है। वो मृत्यु के पश्चात ही साम्राज्ञी पद से अपदस्थ होगी। पुत्र, तुमने एक दिन अग्नि, सूर्य, चंद्र और माता पिता तुल्य गुरुजनों के समक्ष अपनी प्रियतमा जीवन संगनी के रूप में चंद्रहासिनी को स्वीकार किया था, उसके बड़े बड़े अपराध क्षमा करने का वचन दान भी दिया था। आज उसके अधिकारों के संरक्षण की मैं दुहाई देती हूं, मैं दुहाई देती हूं मेरे पुत्र। मेरे हृदय के टुकड़े इस कोमल फूल सी नारी को अपनी क्रोधाग्नि में झुलसने से बचा लो, बचा लो पुत्र, बचा लो।
2: मेरे अपराध क्षमा हो। मैंने भुवन मोहिनी के द्वेष के कारण आपको भी अपमानित किया है। मुझे क्षमा करिए स्वामी, मुझे क्षमा करिए।
1: राजकुमारी, मेरे पांव में गिरना तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरा परित्याग करो और जाओ सत्ता और शक्ति की पूजा करो। तुम पर स्वयं राजमाता प्रसन्न है, ऐसी अवस्था में मेरे आदेशों का क्या मूल्य है? माता की आज्ञा और आग्रह पर मैं अपने आदेशों को वापस लेता हूं, किंतु ध्यान रहे, अब हमारा तुम्हारा पार्थिव संबंध छिन्न भिन्न हो चुका है। मां, मैं एकांत चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने सूने राजमहल में एक रात और विश्राम कर लूं। यदि चंद्रहासिनी का रहना यहां अनिवार्य है तो मैं ही चला जाऊंगा। ये राज सिंहासन भी मेरा नहीं रहा अब, इस पर चंद्रहासिनी के पुत्र का अधिकार है। मैं सर्वस्व उस उत्तराधिकारी के लिए चंद्रहासिनी के संरक्षण में छोड़कर जाऊंगा। आज से मैं सम्राट नहीं, केवल चंद्रहासिनी साम्राज्ञी हैं। मैं राज सिंहासन के प्रति अपना कर्तव्य केवल उदासीन भाव से तब तक करता रहूंगा जब तक कि चंद्रहासिनी का पुत्र योग्य नहीं बन जाता। इसके पश्चात मेरा जीवन उचित नहीं कि भारत की साम्राज्ञी मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य के चरणों में निरीह अबला की भांति पड़ी रहे। शक्ति और सत्ता की उपासिका अपना साम्राज्य संभालें।
2: ये तो और भी बुरा हुआ। हे प्रभु, मेरे पुत्र के ऐसे संकल्पों को शिथिल कर दो नाथ। मैं अपनी वृद्धावस्था दुखिया पुत्र वधु को देखते हुए नहीं बिताना चाहती। उठो पुत्री, ना चाहते हुए भी अब मुझे भुवन मोहिनी की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जो कार्य मैं नहीं कर सकी वो अवश्य कर लेगी।
3: एक राजकन्या और अपूर्व सुंदरी होकर भी मैं अपने पति पर उतना प्रभाव क्यों नहीं डाल सकी जितना इस भुवन मोहिनी ने डाल रखा है।

0: हे प्रभु, मुझसे ऐसा कोई काम मत कराना जिससे साम्राज्य का भविष्य धूमिल होता दिखाई पड़े। मैं क्या करूं कि सम्राट विजयश्रवा का हृदय भी शांत रहे और चंद्रहासिनी भी संतुष्ट रहे। देखती हूं कि राजमाता ने मुझे क्यों बुलाया है। कहीं सम्राट ने कोई अनिच्छित घटना तो नहीं घटा दी।
1: अब तुम ही बोलो भुवन मोहिनी, मैं बड़े असमंजस में पड़ गई हूं। यदि राजकुमार को मैं सम्राट के रूप में न मानूं तो भी समस्या का समाधान

0: नहीं होता। वो सम्राट पद पर आसीन नहीं रहना चाहता। उसने समस्त शक्ति और सत्ता स्वेच्छा से त्याग कर राजप्रासाद से बाहर रहने की प्रतिज्ञा कर ली है। किंतु मैं सोचती हूं कि चंद्रहासिनी सत्ता और शक्ति को लेकर करेगी क्या? जिसकी प्रियता प्राप्त किए रहने पर सत्ता और शक्ति चंद्रहासिनी का चरण चुंबन करती, वो तो उससे पूर्णतः रुष्ट है। उसका आदेश है कि चंद्रहासिनी उसकी दृष्टि के सामने ना आए। पति के रूठे रहने पर सत्ता और शक्ति चंद्रहासिनी के जीवन को सुखी नहीं बना सकेंगी। ये तो वास्तव में चंद्रहासिनी का सौभाग्य था कि तुम्हारी कृपा के द्वारा वो राजकुमार की जीवन संगिनी बनने का अधिकार प्राप्त कर सकी। किंतु चंद्रहासिनी यह अनुमान नहीं लगा सकी थी कि मेरे इकलौते राजकुमार के जीवन पर तुम्हारा कैसा प्रभाव है।
1: मैं निवेदन करती हूँ कि राजमाता अपने पवित्र मुख से मुझ नर्तकी के प्रभाव का यशोगान न करें। मैं सेवा में प्रस्तुत हूँ। मुझे आदेश प्राप्त होना चाहिए कि मुझे करना क्या होगा।
0: करना क्या होगा, यही तो विकट पहेली है जिसे मुझे नहीं तुम्हें सुलझाना होगा। जन्म जन्मांतरों के न जाने किन संचित पुण्यों ने सम्राट के हृदय सिंहासन पर तुम्हें प्रतिष्ठित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस कठिन समस्या को तुम्हें सुलझा सकती हो। देखो देखो इस बेचारी को, क्या यही दिन दिखाने के लिए महाराज आदित्य सेन ने मेरे बेटे के साथ इसका विवाह किया था?
2: मैं अपनी दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी को क्या कहूं। वास्तव में मैंने तुम्हारे प्रति जिस अकृतज्ञता पूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन किया है, उसी ने सम्राट को रुष्ट कर दिया है। मैं क्या कर सकती हूँ? यदि एक बार मुझ पर और दया करो तो मैं आज जन्म ऐसी भूल नहीं करूंगी।
1: साम्राज्ञी, सम्राट के निर्णयों को पलटने या परिवर्तन कराने की क्षमता मुझ में नहीं है। फिर भी आपकी ये दशा मैं नहीं देख सकती। राजमाता, मैं उनकी सेवा में उपस्थित होने जा रही हूँ। नहीं जानती कि मेरी उपस्थिति से रुष्ट होंगे या प्रसन्न, किंतु एकाध घड़ी पश्चात साम्राज्ञी वहां अवश्य पधारें।
2: मैं
1: हाँ,
2: नहीं, मुझे उनकी दृष्टि के सम्मुख आने का आदेश नहीं है। वो संभवतः आज एकांत वास करेंगे और राजप्रासाद से कहीं दूर रहेंगे मेरे ही कारण।
1: कुछ भी हो साम्राज्ञी, वहां पर आप अवश्य आएं।
2: लेकिन
0: ठीक ही तो है, भुवन मोहिनी मेरे रूठे राजकुमार को मना लेने की क्षमता रखती है पुत्री।
2: जो आज्ञा राजमाता।
1: देव, अपराध क्षमा हो। मैं ये जानते हुए भी कि अभिदेव इस स्थल में एकाकी रहना चाहते थे, दुस्साहस पूर्वक चली आई हूं।
3: आओ भुवन मोहिनी, तुम्हें मेरे समीप आने में किसी क्षण कोई विचार नहीं लाना चाहिए। विजय श्रवा का एकांत जीवन तुम्हारी एकांत चिंतना का ही मंदिर है। तुम्हें मेरे समीप आने में किसी बाधा का अनुभव नहीं करना चाहिए।
1: नाथ, मैं एक तुच्छ नारी हूं। भारत सम्राट की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। फिर भी आज की बातें मुझे अधिक पीड़ित कर रही हैं।
3: क्यों?
1: इसलिए कि मैं ही वास्तव में चंद्रहासिनी के नारीत्व के अधिकार का अपहरण करते पाई गई हूं। यदि साम्राज्ञी को मुझ पर असाधारण क्रोध उत्पन्न भी हुआ था, तब भी देव को मेरा पक्ष लेकर उन्हें दंडित करना उचित नहीं था। संपूर्ण अपराधों की पृष्ठभूमि तो मैं ही हूं।
3: नहीं, विजय श्रवा तुम्हें अपमानित होते नहीं देख सकता।

0: जब मेरे जीवन में चंद्रहासिनी का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी तुम्हारी प्रतिमा मेरे अंतःस्थल में प्रतिष्ठित थी। मैंने चंद्रहासिनी को छुपाकर तुमसे प्रेम नहीं किया। मैंने वैवाहिक संबंधों पर होने वाली चर्चा के समय ही सारी परिस्थिति स्पष्ट कर दी थी। चंद्रहासिनी स्वयं जब अपने पितृगृह में थी, तभी उन्हें सभी बातें ज्ञात हो चुकी थीं। फिर भी आज साम्राज्ञी ने जो व्यवहार किया, उसका किसी न किसी रूप में दंड तो भोगना ही पड़ेगा।
1: यदि एक बार पुनः सम्राट मेरी स्थिति पर विचार कर साम्राज्ञी को क्षमा कर दे तो मैं कलंक भाजन बनने से बच जाऊंगी। अन्यथा मुझे विचार करना पड़ेगा कि मेरी जीवित रहने की आवश्यकता है भी या नहीं।
0: ये क्या बात हुई? चंद्रहासिनी को पश्चाताप होना चाहिए, न कि तुम्हें। आओ प्रिय, ये बातें यहीं छोड़ें। अब अपने और मेरे बीच चंद्रहासिनी का प्रश्न ना खड़ा करो। मैं एक बार तुम्हारे प्रेम मंदिर में आत्मविस्मृत होकर जीवन को पुरस्कृत करना चाहता हूं। जीवन के प्रत्येक बहुमूल्य क्षण केवल आत्मदाह की नारकीय यंत्रणा में छटपटाने के लिए नहीं व्यतीत हो रहे हैं।
1: स्वामी, सचमुच मैं आपके जीवन में एक छलना मात्र सिद्ध हो रही हूं। आज कितने वर्षों से मेरे प्रियतम आह्वान करते आए हैं कि वो मिलन की एक पुलक भरी घड़ी बिता लें, किंतु न जाने मैं आज तक क्यों प्रियतम के मिलन से भय खाती रही। जिनके चरणों में कभी समर्पित हो चुकी थी।
0: क्या सोचने लगी?
1: मेरे प्रियतम सम्राट, न जाने विधि विधान के किन कुअंकों में जन्म जन्मांतर का अभिशाप छिपा था कि मैं आग के दहकते हुए गोले की भांति अपना हृदय पिंड भस्म करती रही। फिर भी संभवतः अभी वो दिन कुछ दूर है जब जलन का अंतिम क्षण समाप्त होकर चिर शांति प्रदान करेगा।
0: ये चिर शांति तुम्हारे लिए व्यंग सिद्ध होगी भुवन मोहिनी। मैं कटुभाषी भले हूं, किंतु असत्य नहीं कह रहा।
1: जानती हूं सम्राट, किंतु चंद्रहासिनी की आकांक्षाओं के नंदन कानन में आग की लपटें क्यों जलाऊं?
0: जैसे चंद्रहासिनी ने तुम्हारा संसार नष्ट किया, चाहो तो तुम भी वही कर सकती हो।
1: तब मुझ जैसी तुच्छ नारी और चंद्रहासिनी के बीच अंतर ही क्या रह जाएगा?
0: आवश्यकता ही क्या है ऐसे अंतर को स्थापित रखने की?
1: चंद्रहासिनी के स्वत्वों की सुरक्षा ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझ जैसी नारकीय यंत्रणा भोगने वाली नारियां लक्ष लक्ष मिलकर भी चंद्रहासिनी जैसी निर्मल और निष्कलंक रमणी की तुलना नहीं कर सकती। एक बार सम्राट मेरे निवेदन पर पुनः विचार करें, चंद्रहासिनी को क्षमा द्वारा अभय प्रदान करें और उनकी सेवाओं को ग्रहण कर उनके नारित्व को सफल और धन्य हो लेने दें।
0: यही तो कांटा है भुवन मोहिनी। क्या मेरी बातों को साधारण मनुष्यों की भांति नहीं समझ सकती? क्या मुझे यह अधिकार नहीं कि जो मेरा तिरस्कार करे, उसका तिरस्कार मैं भी कर सकूं?
1: नहीं सम्राट, जैसे को तैसा व्यवहार करना महान पुरुषों के लक्षण नहीं। जो बड़े हैं, पूज्य हैं, वे सर्वदा क्षमादान द्वारा अपनी आत्मा का महान उपकार करते हैं, किंतु जो छोटे हैं वो अपराध करने की प्रवृत्ति से बाध्य रहते हैं। मेरे सम्राट, मैं आपके चरणों में गिरकर निवेदन करती हूं कि एक बार मेरे निवेदन के प्रति सदैव बनकर साम्राज्ञी को अवश्य क्षमा करें।
0: उठो भुवन मोहिनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम निरपराध हो, मेरे चरणों में गिरकर मुझे ही अपराधी बना रही हो। तुम्हें अब चंद्रहासिनी से क्या प्रयोजन है? अभी आज के व्यवहार को क्या तुम भूल गई?
1: नहीं मेरे सम्राट, भूली नहीं हूं, किंतु अप्रसन्न भी नहीं हूं।

0: मैं उसी व्यवहार की योग्य थी। आज तो मैं कभी भी चंद्रहासिनी पर रुष्ट ना होऊंगी।
1: सम्राट।
2: ओ, आइए साम्राज्ञी, देखिए इसे देखिए, जिसे पग पग पर आप ठुकराती रही हैं, वही आपके पक्ष में मुझसे निवेदन किए जा रही है। भुवन मोहिनी उठो, विजय श्रवा तुम्हारे आंसुओं को देखने का अभ्यस्त नहीं है। जाओ, मैंने सारी बातें मान ली, किंतु ध्यान रहे, साम्राज्ञी अब अधिक कष्ट न उठाएं, आनंद पूर्वक अपने राजप्रासाद में ही रहें।
1: और सम्राट?
2: अब मैं सम्राट नहीं हूं साम्राज्ञी, मुझे उस महान पद को अपमानित न करें।
1: क्या मुझसे इतना भयानक अपराध बन पड़ा है जो क्षमा नहीं किया जा सकता? क्या मैं उन दिनों की स्नेह को भूल सकती हूँ जब मुझे सम्राट के नेत्रों की पुतली होने का गर्व हुआ करता था? क्या मुझे दर्शन देना भी पाप होगा? सम्राट, मेरे लिए सारे सुख त्याग कर मुझे क्यों नरक गामनी बना रहे हैं? मैं आपके युगल चरणों की सेवा पर त्याग करने के पश्चात सत्ता और शक्ति द्वारा अपने को सजाकर क्या पाऊंगी मेरे सर्वस्व?
2: अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, परंतु याद रहे, तुम्हारे कारण नहीं अपितु इन देवी के आंसुओं के कारण।
1: तुम भी मुझे क्षमा कर दो बहन, अब मुझसे ऐसा अपराध नहीं होगा।
0: साम्राज्ञी, आप सर्वदा मेरे अपराधों को क्षमा करती रहीं, मुझसे क्षमा याचना करना ही अपराध है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं सम्राट। बहन चंद्रहासिनी के इन कोमल हाथों को थामिए, इनका कभी परित्याग मत करिएगा। देव, अब मैं शांतिपूर्वक अपने काम में पुनः लग सकती हूं ना? विदा सम्राट, विदा साम्राज्ञी, विदा। भुवन मोहिनी, तेरा जीवन तो उस कटी पतंग की तरह हो चुका है जो नियति की झोंकों को झेलती हुई इधर उधर लहराती रहती है। सम्राट को क्या मालूम कि मैं मात्र उनके और चंद्रहासिनी के मध्य आने से बचने के लिए भ्रमण तीर्थाटन आदि कार्यों में अनवरत संलग्न रहती हूं। निराधार, निरुद्देश्य, 5 वर्ष बीत गए। इन 5 वर्षों के भीतर सम्राट मुझे अब विस्मृत कर चुके होंगे। चंद्रहासिनी अपने पति को अपने वश में कर चुकी होंगी। यदि ऐसा हो चुका होगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी और स्थिर होकर धारा नगरी में ही अनासक्त भाव से रहने का प्रयास करूंगी। अब मैं थक चुकी हूं इस भटकन से, मुझे विश्राम चाहिए, विश्राम।

0: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया और इस प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंट बनाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़े हैं। इस तरह से सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों ने तेल की बचत करने और कार पूल करने की उनकी अपील को पुरजोर समर्थन दिया है। जो लोग एक ही दिशा में अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ साथ जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाया करती हैं। सेशल्स की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हारमनी के साथ सेशल्स के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का दौरा किया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी SCRB द्वारा IECJS विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया और गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है। वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय दोपहर के 1 बजे हैं। अब प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। पेड़ लगाएंगे हम तभी बचेंगे हम। बहनों, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संदेश है। विशेष रूप से वन महोत्सव सप्ताह जो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। बहनों, पेड़ प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। वे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वायु को शुद्ध बनाते हैं। वे वर्षा लाने में सहायक होते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। बहनों, आज दुनिया सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रही है, वह है पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण और वनों की अंधाधुंध कटाई ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, भीषण गर्मी और अनेक प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। यदि हम समय रहते नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरियाली देखने को भी नहीं मिलेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम केवल पेड़ों के महत्व को समझे ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करें। बहनों, वन महोत्सव सप्ताह का उद्देश्य लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस सप्ताह के दौरान देश भर में लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है। उनकी नियमित देखभाल करना, उन्हें पानी देना, सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें बड़ा होने तक संरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जन्मदिन, राष्ट्रीय पर्वों, पारिवारिक उत्सवों तथा अन्य विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति

प्रतिवर्ष केवल एक भी पेड़ लगाता है और उसकी देखभाल करे तो हमारा देश पुनः हरा भरा बन सकता है। महापुरुषों ने कहा है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। यह कथन वृक्षों के महत्व को स्पष्ट करता है। पेड़ केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाते हैं। वे मानव जीवन के सच्चे मित्र हैं, इसलिए हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। आइए वन महोत्सव सप्ताह के इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे, वनों की कटाई का विरोध करेंगे, पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। हर आंगन में पेड़ लगाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। पेड़ बचेंगे, वन बचेंगे, तभी सुरक्षित हम रहेंगे। पेड़ लगाएंगे हम, तभी बचेंगे हम।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं धरती पर ईश्वर का दूसरा नाम डॉक्टर, इनका सम्मान करें के विषय में। बहनों, यह विषय केवल एक कथन नहीं बल्कि मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टरों के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। बहनों, हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिन उन सभी चिकित्सकों को समर्पित है जो दिन रात मानव जीवन की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। डॉक्टर केवल एक पेशा नहीं है बल्कि सेवा, त्याग, करुणा और समर्पण का दूसरा नाम है। जब कोई व्यक्ति बीमारी, दर्द या संकट से घिर जाता

0: है तब उसके परिवार की सबसे बड़ी आशा एक डॉक्टर ही होता है। जिस प्रकार ईश्वर हमें जीवन देता है, उसी प्रकार डॉक्टर उस जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता है कि धरती पर ईश्वर का दूसरा नाम डॉक्टर है। एक डॉक्टर वर्षों तक कठिन अध्ययन, प्रशिक्षण और अथक परिश्रम करता है। वह अपनी व्यक्तिगत खुशियों और आराम को पीछे छोड़कर मरीजों की सेवा में लगा रहता है। चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, त्योहार हो या अवकाश, डॉक्टर सदैव अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहते हैं। हमने यह समर्पण विशेष रूप से कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा। जब पूरी दुनिया भय और अनिश्चितता से जूझ रही थी, तब डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों लोगों की सेवा की। अनेक डॉक्टर स्वयं संक्रमित हुए, कई ने अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए, लेकिन उन्होंने मानवता की रक्षा का संकल्प नहीं छोड़ा। उनका यह योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। बहनों, डॉक्टर केवल दवाइयां ही नहीं देते, बल्कि मरीज को आशा, आत्मविश्वास और जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। उनकी एक मुस्कान, उनका एक सकारात्मक शब्द और उनका संवेदनशील व्यवहार मरीज के मनोबल को बढ़ा देता है। यही कारण है कि समाज में डॉक्टरों का स्थान अत्यंत सम्माननीय माना जाता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि डॉक्टर भी इंसान हैं। वे भी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें, उनके प्रति विश्वास रखें और उनके कार्यों की सराहना करें। किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें संयम बनाए रखना चाहिए और चिकित्सा कर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बहनों, डॉक्टर्स डे हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम उन सभी डॉक्टरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से अनगिनत जीवनों को बचाया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ समाज के निर्माण में डॉक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो दर्द को समझे, जो जीवन को बचाए, जो हर संकट में उम्मीद बनाए, वही सच्चा मानवता का रखवाला है। धरती पर डॉक्टर ही ईश्वर का दूसरा नाम कहलाता है। बहनों, जब बात डॉक्टर्स की चल ही रही है, तो हम महिलाओं की कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम केवल एक महिला से ही साझा कर सकते हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता, जिसका विषय है महिला की बात महिला डॉक्टर के साथ। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शिखा जैन, जिनसे भेंट कर रही हैं श्रीमती प्रतिज्ञा देवेंद्र स्वामी।
1: बहनों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी देते ही रहते हैं। और देखिए, आज हमारा जो विषय है वो हम बहनों के लिए बहुत ही खास है, और वो है महिला की बात महिला डॉक्टर के साथ। और हम सब महिलाएं हैं, हम सब बहनें हैं, और जो महिला डॉक्टर आज हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे करा दूं। आप हैं डॉक्टर शिखा जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ विभाग अध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर हैं SRVS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी से। तो डॉक्टर शिखा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको।
2: थैंक यू प्रतिज्ञा जी, मुझे इन्वाइट करने के लिए।
1: बहुत सारी बातें हमने सोच रखा है, आज हम बहनों की तरफ से आपसे करेंगे। और सबसे पहला प्रश्न तो यही है, बहनों का सबसे प्रिय विषय होता है अपनी सुंदरता। ऐसा क्या करें हमारी बहनें, खासकर जो उनकी सुंदरता में और निखार आए और वो दिन ब दिन बढ़े बनी रहे।
2: जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली क्या है, हमने ये सुना होगा कि अच्छे सुंदरता के लिए अच्छा दिमाग होना बहुत जरूरी है। जब हम दिमाग से स्ट्रेस फ्री रहेंगे, अपनी टेंशन जो है वो एक तरफ रखेंगे, अच्छी हेल्दी लाइफ रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारे चेहरे पर निखार आएगा। तो उसके लिए हमें हेल्दी माइंड होना बहुत जरूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है, वो होता है वाटर इंटेक। हमें पर डे एटलीस्ट 2 to 3 liters पर डे पानी का इंटेक रखना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर अच्छा हम पानी का क्वांटिटी अच्छा रखते हैं, तो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं वो हमारी किडनी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा पानी इंटेक अच्छा होगा, स्वेटिंग अच्छी होगी, तो उसके थ्रू भी जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर आएंगे। तो पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, माइंड अच्छा होना चाहिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना। अगर हम टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, उससे भी हमारी स्किन पे अच्छा ग्लो आता है। आजकल मोबाइल के टाइम में लोग, फीमेल्स को भी आजकल मोबाइल का बहुत हैबिट हो गया है कि रात में मोबाइल से लेट सो रहे हैं, इससे उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, फिर वो पिंपल्स के लिए स्किन ट्रीटमेंट लेना है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहीं मोबाइल से देख लिया वो यूज करते हैं जिसकी वजह से और हमारे स्किन पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है, पर डे 10 मिनट या 15 मिनट्स हमको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज पे भी देना है, योगा पे देना है।

0: हैं, इन सब चीजों से अगर हम करते हैं तो हमारी स्किन पर काफी चेंजेस आते हैं।
1: बहुत ही आपने इतनी अच्छी तरह बहनों को सभी कुछ बता दिया, हमारी बहनों को जरूर अच्छा लगा होगा ये। अब हम ये जानना चाहेंगे शिखा जी, मैं चाहती हूँ हम जो आज बातचीत कर रहे हैं हमारी हर एज ग्रुप की जो बहनें हैं वो सुन रही हैं, तो सभी को लाभ हो, सभी की जो भी समस्याएं हैं वो उसके बारे में उनका निदान हो जाए। हम बात करेंगे एज ग्रुप के बारे में जो हमारी महिलाएं हैं जो शादी अभी नहीं हुई है और उनकी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो कई बार मन में उनके कई तरह की भ्रांतियां भी होती हैं चीजों को लेके, तो आप इस तरह की सिचुएशन में किस तरह की मानसिकता उन लोगों की होती है?
0: देखिए जब लड़की की शादी होने वाली होती है वो जो स्टेज होती है वो जो फेज आती है वो होती है हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप। इस ग्रुप में क्या होता है, लड़कियों की शादियां होनी है, हार्मोन्स भी काफी चेंजेस हो रखे होते हैं, तो जिस वजह से स्ट्रेस होने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं, इररेगुलर साइकिल्स आने लगती हैं, तो आपके पीरियड्स अगर इररेगुलर हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है उसमें अगर अप टू 7 डेज का वेरिएशन है तो उसको हम बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, वो हम वैसे ही नॉर्मल मेडिटेशन से इन सब चीजों से हम उसको ठीक कर सकते हैं। आपकी शादी जैसे प्लान होने वाली है तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे HIV है, थैलेसीमिया है, ये कुछ ब्लड टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है जिनको आपको अपना शादी करने से पहले कराना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता होगा आपके पार्टनर में भी ये सब चीजें पॉजिटिव हैं, आप अपने पार्टनर का भी करा सकते हैं, तो जिसके करवाने से आपका जो शादी के बाद की जो लाइफ है वो आप और स्मूथली रन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो हमारी ये बहनें समझ गई, अब हम ये बात जरूर समझ गई हैं वो कि उनको क्या कुछ इस समय इस फेज में कर लेना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए शादी के बाद उनको बेबी प्लान करना है, तो बेबी प्लान करने के लिए भी कई तरह की उनको समस्याएं भी आती हैं या कई तरह की प्रॉब्लम्स भी वहाँ एक कपल को फेस करनी पड़ सकती है, तो किस तरह की समस्याएं आप अक्सर देखती हैं कि कपल के बीच आती हैं?
0: जब शादी होती है शादी के बाद कई तरह के न्यूली मैरिड कपल्स को इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम होती है जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो ये सारा ट्रीटमेंट भी हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी से 3 मंथ पहले स्टार्ट करनी होती है, तो जिससे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या आपकी बॉडी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए फिट है, कहीं आपको खून की कमी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाएंगे हो सकता है आपका बीपी बढ़ा हो, आपको कभी पता ही नहीं हो क्योंकि आपने कभी चेकअप ही नहीं कराया, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम प्रेगनेंसी से पहले किसी भी फीमेल का कराते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी आपको ट्रीटमेंट अभी चालू हो जाएगा, एक बार आपने कंसीव कर लिया तो ये सारी मेडिसिन हम कंसीव के बाद नहीं दे सकते,
1: क्योंकि अगर माँ हेल्दी होगी तभी बेबी हेल्दी।
0: जी जी, अगर आपने अच्छे से अपना ट्रीटमेंट पहले ही ले लिया फिर आप प्रेगनेंसी करेंगे तो आपका बच्चा भी होगा वो हेल्दी होगा।
1: जी, तो ये बहुत जरूरी है किसी भी महिला के अपने हेल्थ के लिए प्लस उनके जो उनका जो बेबी होगा।
0: जब हम मोबाइल खरीदते हैं बाजार से तो भी हम सोचते हैं खरीदने से पहले 10 बार सर्च करते हैं, तो ये तो हम एक अपनी फैमिली में एक नए बच्चे को लेके आ रहे हैं, तो बच्चे में कोई समस्या ना हो क्योंकि बच्चा हेल्दी रहेगा तो आपकी पूरी लाइफ स्मूथली निकल सकती है।
1: बात बेबी की और प्रेगनेंसी की चल रही है तो एक आज कल्चर चल गया है कह लो, एक टेंडेंसी हो गई है कई कपल्स में देखते हैं खासकर यंग जनरेशन में कि बेबी नहीं करना है, यानी बच्चे पैदा ना करने की टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में आजकल देखने को मिल रही है, यानी वो अपनी इनकम को तो अच्छा खासा डबल करना चाहते हैं तो उसके साथ वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो बेबी का ये कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो लेना नहीं चाहते हैं, तो इससे हमारी समाज की दशा और दिशा आगे जाके होगी वो तो होगी ही, साथ साथ इससे जो हमारी महिला है उसके स्वास्थ्य पर आगे जाकर क्या असर पड़ सकता है?
0: ये आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया क्योंकि आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि लड़कियों की शादी भी लेट होती है फिर वो प्लान नहीं करते हैं जिसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी जो एक ब्रेस्ट कैंसर होता है जो हमारे इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन फीमेल का कैंसर है, उसका भी मोस्ट कॉमन कारण है वो यही है कि लेट मैरिज और मैरिज के बाद बच्चे प्लान नहीं करना, तो ये तो हमको अगर फीमेल बनाया है तो बच्चे तो फीमेल ने करने तो है ही, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये फीमेल का खुद की बॉडी के लिए भी उसके लिए बहुत एडवांटेजियस होता है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशन है। आप अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं फिर आपने ये प्रेगनेंसी बाद में प्लान की, अगर आपने ये प्रेगनेंसी बाद में प्लान की तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जैसे डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम 35 की एज के बाद होता है, इसकी वजह से आपके बच्चों को सफर होगा तो जिसकी कॉम्प्लिकेशन आपको भी झेलनी पड़ेंगी, एंड्रोमेट्रोसिस, ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो उन फीमेल्स को होती है जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करती है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना
1: है। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है तो उसने जो जो चीजें दी हैं तो वो करना भी जरूरी है, यानी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है हमको, प्रकृति के अगर साथ रहेंगी तो हम महिलाओं का स्वास्थ्य सुंदरता सब कुछ बरकरार रहेगी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे मान लीजिए किसी लेडी का बेबी होता है, अब बेबी होने के बाद में जब हमारा बेबी होता है तो घर परिवार में सभी लोग अच्छा ख्याल रखते हैं और बेबी के

0: ये सब लोग बहुत चिंता करते हैं कि बेबी को ये देना है, वो देना है, वो नहीं देना है, लेकिन महिला के स्वास्थ्य के बारे में अक्सर कोई बहुत ज़्यादा विचार या बातचीत नहीं की जाती है। तो महिला अपना स्वयं का ख्याल अच्छे से रख सके तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा?
1: मैं फीमेल्स को बोलूंगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी डाइट में प्रोटीन इनटेक। यूजुअली हम लोग खाना खाते हैं उसमें अगर हम देखें, स्पेशली जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, तो उनको अपनी डाइट में प्रोटीन का इनटेक अच्छा रखना चाहिए, जिसके लिए पनीर है, टोफू है और बाकी दूध है, चना है, दालें हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लेंगे तो आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा होगा। प्रोटीन की कमी की वजह से चिड़चिड़ापन आना, काम में मन नहीं लगना, आजकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद 30 की फीमेल्स अगर हो गई हैं तो उनको अपनी डाइट में कैल्शियम बढ़ाना है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें का भी हमको ध्यान रखना है
0: जी। और इसके बाद में जैसे जैसे हम महिलाओं की एज बढ़ती जाती है, जीवन की आपाधापी में भाग दौड़ में लगी रहती हैं, और इस बीच क्या होता है, अपना स्वास्थ्य ही कहीं पीछे छूटने लगता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, 40 क्रॉस करते करते तक, मेनोपॉज के पास पहुंचते पहुंचते तक इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसका क्या बचाव, क्या किया जा सकता है उसके लिए?
1: ये जो फेज होती है प्री मेनोपॉज फेज होती है, ये हमारी 45 तक चलती है। 45-46 के बाद हमारी मेनोपॉज की फेज शुरू हो जाती है। तो बहुत सी महिलाएं हैं जिनको इस फेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ महिलाएं हैं जिनको बहुत ज्यादा होती है, जैसे हॉट फ्लशेज होना, एकदम बैठे हुए हैं, बहुत तेज गर्मी लगेगी कि हमें हवा में कहीं निकलना है, खुद की धड़कने सुनाई देना जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं, किसी किसी को बीपी आना शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये सारी प्रॉब्लम जो है हमारी प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज की फेज में आती है। इसके लिए भी हमको क्या करना है, योगा, मेडिटेशन, डाइट में हमारा कैल्शियम का इंटेक हमको इंक्रीज करना है, इन सब चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना है।
0: कभी ये सिम्टम्स जो होते हैं, कभी लोग घर में ये भी समझते हैं कि ये सिम्टम मेनोपॉज की वजह से भी हो सकते हैं, प्री मेनोपॉज की वजह से, और ये सच में भी किसी बीमारी के भी सिम्टम हो सकते हैं, तो इसके लिए कब स्थिति आए कि हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: जब आपको लगे कि आपका ये जो हॉट फ्लशेज है, पाल्पिटेशन है, ये आपको लगता है कि आपका मेनोपॉज के बाद 2-3-4-6 महीने तक इतना है कि आप इसको बियर कर पा रहे हैं, आपने पानी का इंटेक बढ़ाया, आपने डाइट में चेंजेस किया, प्रोटीन बढ़ाया, आपको लगता है कि ठीक है, तो आप इसको अपने घर पर रहकर भी ठीक कर सकते हैं, बट आपको लगता है कि ये प्रोलॉन्ग है जिसकी वजह से आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपकी जो डेली की जो एक्टिविटीज हैं, जो वर्क है, आप उसको नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके लिए इसका जो रीजन है वो है हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो अगर ये हमारे नॉर्मल डाइट से या इन सब चीजों से इंप्रूव नहीं हो रहा है हेल्दी लाइफ स्टाइल से, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, जिसके लिए बाजार में हमारे पास मेडिसिन भी होती हैं, वो स्टार्ट करके इन सब चीजों को कुछ समय के लिए हम इनको कम कर सकते हैं।
0: इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसको?
1: ये अपने आप जैसे जैसे हमारी बॉडी में जैसे ये चेंजेस हैं, ये कुछ साल के लिए रहते हैं, 1 or 2 years के लिए, इसके बाद ये अपने आप सबसाइड हो जाते हैं और हमारी लाइफ वो होती है वो नॉर्मल की तरह आ जाती है।
0: अच्छा, कब मानना चाहिए डॉक्टर की मेनोपॉज हो चुका है?
1: इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे, FSH करके एक ब्लड टेस्ट होता है, उसकी वैल्यू हमारे अगर हमारी वैल्यू उसकी बड़ी हुई है तो हम ये मान के चलते हैं कि अब मेनोपॉज हो गया है।
0: अच्छा, मेनोपॉज के दौरान कई एक समस्या और आती है, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को बहुत ब्लीडिंग होती है महावारी के दौरान, उनको बहुत परेशानी होती है, बहुत पेन भी होता है, और किसी किसी को देखने को आता है कि ये चीज बहुत कम हो जाती है, तो क्या ज्यादा ब्लीडिंग आना भी नॉर्मल है?
1: मैंने आपको बताया जैसे कि अप टू 6 months, 8 months, 1 year तक हम वॉच कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि जो नॉर्मल जो पैटर्न होता है पीरियड्स का वो ये होता है कि 3 months तक मेंसेस नहीं आएंगे, अब चूंकि 3 months तक नहीं आए तो जो आए हैं वो हैवी आएंगे, तो अगर इस तरह का पैटर्न आपका चल रहा है 4-5-6 months तक, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, एनीमिया के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट आपको लगता है बहुत ज्यादा है, बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि प्री मेनोपॉजल जो ये कंडीशन होती है इसमें आपको अगर लगता है तो आपको गायने के पास जाना है, हम अल्ट्रासाउंड करा के ये देख सकते हैं कि हम सोच रहे हैं कि ये हमारे प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स है, पता चला बच्चेदानी में गठान है, बच्चेदानी की झिल्ली बड़ी हुई है, तो ये सब चीजें इग्नोर ना हो तो बेटर तो यही रहेगा कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली जाइए, एक बेसिक अल्ट्रासाउंड होगा जिससे आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हमारा जो सब कुछ चल रहा है बॉडी में ठीक है, वो तो आपको जाना ही चाहिए एक बार।
0: बहनों को हम तो यही सलाह देना चाहेंगे और डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि अपने जो भी सिम्टम्स हो उनको या बॉडी में जो भी चीजें हो रही होती हैं उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि क्या होता है इग्नोर करती ही हैं महिलाएं, अक्सर क्या होता है कि टालने की प्रवृत्ति हो जाती है कि ये चीज हो रही है, अरे होने दो, फिर वो सहन जब तक सहन कर सकती तब तक करती हैं, जब बहुत असहनीय होता तब जाती हैं, और जबकि होना क्या चाहिए कि थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी जाने से क्या होता है, जैसे कोई भी बड़ी बीमारी अगर है समय पे अगर वो पता चल जाती है तो उसका फिर उपचार होना,
1: स्पेशली वो फीमेल्स जिनकी हेल्थ बहुत ज्यादा है, जिनको डायबिटीज

0: है, हाइपरटेंशन है, उनको अगर पीरियड्स के समय पर ये समस्याएं ज्यादा हो रही हैं कि मेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी वाली जो पेशेंट होते हैं इनको बच्चेदानी का कैंसर होने के चांसेस नॉर्मल महिलाओं से ज्यादा होते
1: जी।
0: हैं, तो इनको अपनी जाँच तो अवश्य रूप से करवानी चाहिए।
1: और जांच तो अगर ऐसा इन जांच की अगर बात करें हम महिलाओं को, नॉर्मली एक नॉर्मल महिला को जो स्वस्थ भी है, क्या उनको भी नियमित जांच करानी चाहिए?
0: डेफिनेटली मैं तो यही बोलूंगी कि हमारा ये एक, जैसे हमारा बर्थडे आता है, हम प्लान कर लें कि हम साल में एक बार, हमारी 30 की एज हुई है, साल में एक बार हमारे बर्थडे के दिन, बजाय हम इधर उधर जाने के, अपना पैसा वेस्ट करने के, सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन एक अल्ट्रासाउंड बेसिक करवा लेंगे 30 की एज के बाद, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ हमारी बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है।
1: जी
0: काफी सारी बीमारियां ऐसी जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, वो केवल जांचों से ही पता चल सकता है कि कोई बीमारी है या नहीं।
1: बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं,
0: ना
1: प्रॉब्लम्स
0: नहीं
1: हैं,
0: आ रहे
1: तभी
0: हैं तो
1: जाना
0: कोई
1: है
0: बीमारी नहीं होगी।
1: जी, तभी
0: कुछ
1: भी जाना है जब
0: बीमारियां
1: आप
0: ऐसी है
1: स्वस्थ
0: जो
1: हैं।
0: बहुत लास्ट स्टेज पे पता चलते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर है, वो तभी पता चलता है जब वो स्टेज 4 में आ गया है।
1: जी
0: तो डेफिनेटली अगर हम टाइम से जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो हम उसको टाइम से ट्रीट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना
0: जी
1: चाहिए। डॉक्टर, अब हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमने बात की महावारी की भी की और मेनोपॉज की, मेनोपॉजल में प्री मेनोपॉज की तो अक्सर बात करते हैं, पोस्ट मेनोपॉज खासकर 55 के बाद में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं को, तो उसके लिए आप क्या
0: जैसे
1: बताएंगी?
0: पोस्ट मेनोपॉजल में जो बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती है, वो होती है वजाइनल ड्राइनेस। पेशेंट बोलता है कि उसको वजाइना में इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, तो इसके लिए भी मैं बोलूंगी वाटर इनटेक बढ़ाएं। ज्यादा हो रहा है तो आप गायने को जरूर दिखाएं, जिससे कि हम जाँच करा के ये देख सकते हैं कि अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है।
1: तो हमने आज बहुत सारी विस्तार से बहनों के बारे में बात की, और मुझे लगता है मैंने अपनी बहनों की तरफ से, अपनी तरफ से लगभग सभी बातें पूछी, और हमारी जो सुनने वाली बहनें बहुत लाभ उठाएंगी। और डॉक्टर शिखा जैन, आज आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू प्रतिज्ञा जी, थैंक यू सो मच।
2: बहनों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता जिसका विषय था महिला की बात महिला डॉक्टर के साथ। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर शिखा जैन, जिनसे भेंट कर रही थी श्रीमती प्रतिज्ञा देवेंद्र स्वामी। बहनों, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो चलिए आज खाना खजाना में बनाते हैं बच्चों के टिफिन के लिए कुछ स्वादिष्ट, पौष्टिक और आसानी से बनने वाली रेसिपी। सबसे पहले हम बनाते हैं वेजिटेबल चीला रोल। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, बारीक कटी सब्जियां जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, यहाँ पर हमने शिमला मिर्च और प्याज लिया है, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 चुटकी, अजवाइन 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1/4 चम्मच, काली मिर्च स्वाद अनुसार, बारीक कटा हरा धनिया। बेसन में सभी सब्जियां मिलाएं और पानी डालकर घोल तैयार करें। तवे पर पतला सा चीला बनाएं और इसे धीमी आंच पर उलट पलट कर सेक लें। आप चाहें तो तेल लगाएं या फिर घी। हल्का ठंडा होने पर रोल बनाएं और सॉस के साथ टिफिन में रखकर सर्व करें। बहनों, आजकल बच्चों की फेवरेट है चीज, तो चलिए बनाते हैं चीज कॉर्न सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कटोरी स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च आधी बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, चीज स्लाइस 2, 1/2 चम्मच पिज्जा सीजनिंग, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, बारीक कटा धनिया, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो। एक बर्तन में स्वीट कॉर्न को उबाल कर ले लें, इसमें प्याज, शिमला मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया मिला दें। अब सभी मसाले मिलाएं और 1/2 चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर चीज भी मिला दें। अब इन सभी को हमें ब्रेड के स्लाइस पर फैलाकर ऊपर से एक बर्तन से ढककर धीमी आंच पर इसको, जब तक चीज मेल्ट हो रहा है तो हमें इसको रोस्ट करना है। तैयार है आपका टेस्टी सा सैंडविच। बहनों, जब भी आप बच्चों का लंच पैक करें तो उन्हें कोई भी मौसमी फल जो भी अवेलेबल हो जरूर दें, साथ ही एक छोटा ड्राई फ्रूट।
3: महिला कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:27 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
6: इस समय आप हैं हमारे साथ।
7: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: ये धरती ये नदिया ये रैना
1: और आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: मालवा की शान
3: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

उत्तम तिवारी, इनसे आप सुनेंगे कुछ लोक रचनाएं। कार्यक्रम का आरंभ इस निर्गुण भक्ति रचना से।

पुरुषोत्तम तिवारी के स्वर में अभी आप सुन रहे हैं ये लोक भजन, और इस लोक भजन के बाद आप सुनेंगे देवी गीत। कलाकार एक बार पुनः पुरुषोत्तम तिवारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने पुरुषोत्तम तिवारी के गाए हुए कुछ भजनों और लोकगीतों का आनंद लिया। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से हमें प्राप्त हुआ था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:45 हुए हैं। ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में भी आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति। कलाकार हैं नरेंद्र शर्मा, इनसे सुनिए कार्यक्रम की ये पहली भेंट। ये भजन है डॉक्टर उपेंद्र विश्वास का लिखा हुआ।

0: और इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम हमें आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्राप्त हुआ था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:57 हुए हैं हम अभी हाजिर हुए इस अंतराल के बाद।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दो बज चुके हैं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा। ये रहा

बी पार्क को अभी इस वक्त आपने सुना, इसका फोर्स फिल्म का नाम था। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था, तनिष्क बागची ने संगीत तैयार किया था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: शाबा फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:10 होने जा रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया है और इस प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंट बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाया करती हैं, जिससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा हुआ करती है।
2: गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले अभी से सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है कि आपके घर या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है, इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइने के बीच इस समय द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइने की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बैतूल जिले के कुकरू में स्थानीय ग्रामीणों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा को संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान किया करता है। डॉक्टर यादव ने एक अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बैतूल में बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाकर उनके स्वस्थ, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के संकल्प को सशक्त किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस जल्दी जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम की जाएगी, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। इन संशोधनों से कारोबार सुगमता बढ़ेगी और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरण समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर 3 भोपाल से प्रदेश स्तरीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करेंगे। 28 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में 5 साल तक के लगभग 1,07,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश भर में अब धीरे धीरे बारिश का दौर प्रारंभ हो चुका है। राजधानी भोपाल में कल रात गरज

0: चमक के साथ बारिश हुई। वहीं शिवपुरी में मानसून की पहली तेज बारिश हुई। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरे पाए गए। उधर रतलाम में बारिश के कारण सड़कें और अंडरब्रिज जलमग्न हो गए। झाबुआ में भी जोरदार बारिश दर्ज की गई। विदिशा में दिनभर की उमस और गर्मी के बाद शाम को हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी और खंडवा सहित प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले के ग्राम मेलवार में जल जीवन मिशन के तहत जल अर्पण दिवस का आयोजन किया गया। रायसेन, झाबुआ और छतरपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। और शिवपुरी जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा नस्ल आधारित ब्रीडर एसोसिएशन गठित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
3: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
3: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
2: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
3: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ

0: समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री

0: मंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे T20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। आप सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

मुस्कान सुनने वाले सभी बच्चों को स्टूडियो में उपस्थित बच्चों और प्रीति दीदी की जय हिंद। साथ ही सभी बच्चों को दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, आज 28 जून है और आज जन्मदिन होता है हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री का जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। आपका पूरा नाम पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव था। 28 जून 1921 में जन्मे नरसिम्हा राव का जन्म तत्कालीन हैदराबाद के नरसमपेट मंडल के लखनेपल्ली गांव में हुआ था। आपने कानून से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आप स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। जानते हैं बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव एक दो नहीं बल्कि 17 भाषाएं बोलते थे। आपकी रुचि राजनीति तक ही सीमित नहीं रही, आपको साहित्य और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में भी रुचि थी। प्रधानमंत्री के रूप में आपका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। उससे पहले आप केंद्र सरकार में अलग अलग मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाल चुके थे। और यही नहीं बच्चों, आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 9 फरवरी 2024 को आपको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, ये तो थी आज की बात भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बारे में। अब चलते हैं हमारे आज के क्रम आओ जाने की ओर, जिसमें आज हम जानेंगे हमारे देश के ऐसे प्रसिद्ध कवि के बारे में जिनके दोहे अपनी दिनचर्या के दौरान देश के लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, या यूं कहें हमारी भाषा में रच बस गए हैं, साथ ही पाठ्य पुस्तकों का भी हिस्सा है। आपकी रचनाएं भजन के रूप में भी गाई जाती हैं, पर आपने साकार ब्रह्म को मानने के बजाय निराकार ब्रह्म की उपासना की। बच्चों, हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास की। आपका जन्म 1398 ईस्वी की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को काशी में हुआ था। कुछ इतिहासकार आपका जन्म 1440 ईस्वी मानते हैं। बच्चों, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा कल यानी कि 29 जून को है। इस हिसाब से कल सारे देश भर में उनकी जन्म जयंती मनाई जाएगी। बच्चों, कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली रूढ़िवादिता, ऊंच नीच के भेद पर कुठाराघात किया, यानी उन्होंने कहा कि भगवान ने सबको एक सा बनाया है तो फिर ऊंच नीच क्यों। आपने कहा कि प्रकृति के कण कण में भगवान बसे हुए हैं। प्रकृति

हर जीव में भगवान हैं, उन्हें किसी पूजा स्थल में ढूंढने की बजाय अपने भीतर ढूंढा जाए तो मिल जाएंगे। मोखा कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, खोजी हों तो तुरते ही मिले हों सब सांसन की सांस में। कहने वाले संत कबीर 1518 में परमात्मा में विलीन हो गए। बच्चों, हम बात संत कबीरदास जी की कर रहे हैं, तो आइए जुड़ते हैं बाल भवन के बच्चों के साथ और सुनते हैं कबीरदास जी का लिखा हुआ ये प्यारा सा भजन।

0: बाल भवन के बच्चों, श्रद्धा, अवनी, मानवी और पूर्वांश के इस कबीर भजन के बाद अब जुड़ते हैं कुछ और बच्चे हमारे साथ हैं उनके साथ, और देखते हैं, जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या तैयार करके आए हैं।
1: हाँ भाई, अभी सबसे पहले हमारे साथ कौन है? हाँ, क्या नाम है बेटा आपका?
2: शिवांशी है।
1: शिवांशी। शिवांशी क्या सुना रही है?
2: राइम।
1: राइम। कौन सी राइम है, सुनाओ।
2: मम्मी बोली हमसे बेटा क्या बनोगे, पापा बोले हमसे बेटा क्या बनोगे। सिपाही मैं नन्ना सिपाही हूँ, देश की खातिर लड़ता हूँ, आगे है बंदूक मेरी सीना तान के चलता हूँ, दाएं बाएं दाएं बाएं ठां ठां ठां।
1: बहुत अच्छी कविता हमको शिवांशी ने सुनाई। देश के सैनिकों के ऊपर ये कविता है, और सही बात है, हमारे देश के सैनिक हमारे लिए सीमाओं पर डटे हुए हैं बिना किसी डर के, तभी हम यहाँ पर रहते हैं बिना किसी डर के। अब हमारे साथ अगला कौन जुड़ रहा है?
2: मुझे एक और कविता सुनानी है। बिल्ली
1: अच्छा, शिवांशी को एक और कविता सुनानी है, सुनाओ।
2: मौसी बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने कितने खा के आई हो, क्या बताऊं लोम्बे भाई, आज ना कुछ पेट बड़ा, एक ही चूहा पाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ।
1: बहुत अच्छी कविता भाई, कितनी सारी कविताएं और कितनी सारी कहानियां आज हम सुनेंगे। ठीक है, अब अगला और कौन हमारा बाल साथी हमारे साथ जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
3: दिया जैन।
1: क्या तैयार करके आई है?
3: पोयम।
1: चलो सुनाओ।
3: सूरज जग में करे उजाला, चांद चांदनी देने वाला, टिमटिम करते आते तारे, खड़ा ऊंचे पर्वत सारे, नदियां बहती जर जर करती, सागर में लहरें उठ जाती, झरने नदियों में हो जाती, भांति भांति के पेड़ सजाते।
1: बहुत ही अच्छी पोयम सुनाई है प्रकृति के बारे में हमको रिया ने। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है बेटा? सबसे पहले आप अपना नाम बताओ।
4: मेरा नाम आराध्या जैन है।

0: आराध्या क्या तैयार करके आई है?
1: मैं आज एक कहानी तैयार करके आई हूँ।
0: कहानी? चलिए, कविताओं के बाद कहानी। कौन सी कहानी है?
1: एक कहानी है, उसका नाम है जादुई खेत और दो आलसी भाई।
0: चलो भाई, तो सब तैयार हो जाइए जादुई खेत की कहानी सुनने के लिए।
1: एक गांव में राम और श्याम नाम के दो सगे भाई रहते थे। उनके पिता ने उन्हें मरने से पहले एक बड़ी सी जमीन दी थी और कहा था कि इसके अंदर एक जादुई खजाना छुपा है। खजाने के लालच में दोनों ने रोज उस खेत में जोतना शुरू कर दिया। हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें कोई सोना चांदी नहीं मिला। थक हार कर राम ने उस खाली खेत में मक्के का बीज बो दिया। कुछ ही महीनों में खेत हरा भरा फसलों से भर गया। दोनों ने फसल को बाजार में बेचा और उन्हें भारी मुनाफा हुआ। तब उन्हें समझ आया कि पिताजी का मतलब जादुई खजाने से इसी मेहनत और फसल से था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत का फल हमेशा मीठा और लाभदायक होता है।
0: एक बहुत ही अच्छी कहानी आराध्या ने हमें सुनाई है। कहानी का सार यही था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और सही बात भी है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हमें सफलता नहीं मिल सकती। अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
2: अंशु जैन।
0: अंशु। अंशु क्या तैयार करके आया है?
2: कविता
0: कविता। कौन सी कविता है?
2: फादर्स डे।
0: अच्छा, फादर्स डे अभी जो हमने मनाया है उसके बारे में कविता है। चलो सुनाओ।
2: जिनके कंधों पर बैठकर दुनिया देखी, जिनसे जीने की हर राह सीखी, उन पापा को दिल से सलाम। आई लव यू पापा।
0: तो भाई, जितने भी पिता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सभी पिताओं के लिए उनके बच्चों की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? क्या नाम है आपका?
3: अभी
0: अभी अभी क्या सुना रहा है? कविता।
3: कविता।
0: कौन सी कविता है?
3: बादल दे।
0: फादर्स डे के ऊपर। चलिए फिर एक बार और हमारे पास फादर्स डे की कविता आ गई है, सुनाओ बेटा।
3: पापा मेरी कान, पापा मेरी दान, आई लव यू पापा।
0: अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है बेटा? क्या नाम है आपका?
4: निशुरन।
0: निशु। निशु क्या तैयार करके आए हो?
4: कविता।
0: कविता। कौन सी कविता है?
4: देखो नाच रहा है मोर।
0: देखो नाच रहा है मोर। बारिश आने वाली है और मोर नाचने वाला है, सुनाओ। देखो
4: नाच रहा है मोर, घूम घूम कर चारों ओर खोल दिए हैं सारे पंख, रंग रंगे न्यारे पंख, बारे तारी रंग और हो, मोर मचाता एक रंग ढोल, कहता है कू कू, इतना बेचा यहाँ वहाँ।
0: भाई, कविता के साथ साथ मोर की आवाज भी निशांक ने हमें सुनाई, तो इसके लिए निशांक को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी बच्चे बहुत खुश भी हो गए होंगे। अब आगे और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? सबको मजा आ गया, सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। हाँ, आपका नाम क्या है?
5: स्मिता जैन।
0: स्मिता, आप क्या सुना रही हैं?
5: कहानी।
0: कहानी, कौन सी कहानी है?
5: दीपक और सूरज की कहानी।
0: दीपक और सूरज की कहानी सुनाइए।
5: एक छोटा दीपक सोचता था कि उसकी रोशनी बहुत कम है। वह हमेशा सूरज जैसा बनने की इच्छा करता था। एक रात गांव में अंधेरा छा गया। तब उसी दीपक ने लोगों को रास्ता दिखाया। उसे समझ आया कि किसी की महानता उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके काम से होती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने गुणों को पहचानो और उसका सही उपयोग करो।
0: बहुत ही बढ़िया कहानी है, और वाकई में हमें सभी के गुणों को देखना चाहिए और उसी से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। हम गुण तो देखते नहीं है, केवल ऊपरी चीज़ों को देखकर सोच लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, या ये सही हो सकता है, ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा गुणों को देखना चाहिए और फिर उसकी परख करना चाहिए। अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
6: आगम।
0: आगम। आगम क्या सुना रहा है?
6: कहानी।
0: कहानी, कौन सी कहानी है?
6: एकता का बल।
0: एकता का बल।
6: एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर बहुत प्यार

0: मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर था। शेर बहुत दयालु था, इसलिए जंगल के सभी जानवर बिना किसी डर के खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर जंगल के सभी जानवर रहते थे। उसी पेड़ के चीकू नाम का एक बंदर भी रहता था। उस बंदर को भूख लग रही थी, तो वह बंदर केला खाने जंगल में गया था। जब वह वापस आया बरगद के पेड़ में, तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उसके पेड़ को काट रहा है। चीकू ने लकड़हारे को समझाने की कोशिश की, लेकिन चीकू की बात लकड़हारे ने नहीं मानी। फिर चीकू ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और सभी जानवरों को बताया कि यह बरगद का पेड़ काट रहा है। सभी जानवरों को पूरी बात बताई। तभी शेर ने दहाड़ मारी। सभी जानवरों ने लकड़हारे के ऊपर पत्थर फेंककर उसे मारने लगे। फिर लकड़हारा वहां से डरकर भाग गया। सीख: एकता में बहुत शक्ति होती है।
1: सही बात है, अगर हम ठान लें तो एक होकर के बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब आगे हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है?
2: आमर्श जैन।
1: आमर्श क्या सुना रहा है?
2: कविता।
1: कविता सुनाओ।
2: अरे किरंत उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर से अपने अभी तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेले बहुत से खेल, पर जब तू चली गई थी जब मैं रह गई अकेली। तू सो गई होगी पर मुझे नींद नहीं आई, पर कथा पर पढ़ के बड़ी देर में सो पाई।
1: आपका क्या नाम है?
3: ओजस जैन।
1: ओजस, ओजस क्या सुना रहे हैं?
3: कहानी।
1: कहानी सुनाइए।
3: छह दोस्त जंगल से जा रहे थे, उन्हें भूख लगती है। आगे एक आम का पेड़ लगा होता है। पहला दोस्त कहता है कि नीचे गिरे हुए आम उठा लेते हैं। दूसरा दोस्त कहता है कि पेड़ पर लगे आम तोड़ लेते हैं। तीसरा दोस्त कहता है कि टहनी तोड़ लेते हैं। चौथा दोस्त कहता है कि डाली तोड़ लेते हैं। और पांचवा दोस्त कहता है कि पूरा पेड़ उखाड़ के ले जा लेते हैं, सभी आम और लकड़ी मिल जाएगी। छठवा दोस्त कहता है कि फल पूरा पेड़ों से भरा हुआ है, इसे छोड़ देते हैं। यह कहानी सिखाती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही लेना चाहिए और पेड़ पौधों तथा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अधिक लालच नुकसान का कारण बनता है।
1: बहुत ही अच्छी कहानी ओजस ने हमें सुनाई है। और हम इंसान क्या करते हैं, लालच में ही रच बस गए हैं। अगर हमें कुछ धोना है तो हम जरा सा पानी लेके नहीं धोएंगे, सीधा नल के नीचे ले जाके धो लेंगे ताकि पानी बहता रहे। और गाड़ी धोनी है तो नली लगा के पूरे में पानी बहाते रहेंगे, ये नहीं कि बाल्टी का उपयोग कर लें। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, उपयोग कम करते हैं। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रकृति की हर एक चीज़ को बचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की हर चीज़ बहुत मुश्किल से हमें मिलती है, सीमित मात्रा में है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा हमें नहीं मिलेगी, इसलिए अभी हमें चेतने की ज़रूरत है, चीज़ों को बचाने की ज़रूरत है। अब और हमारे साथ कौन जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
4: मेरा नाम परान जैन है।
1: परान, परान क्या सुना रहा है?
4: मैं एक शिक्षक पर कविता सुना रहा हूँ।
1: तो भाई चलो, हमारे शिक्षकों के लिए समर्पित है परान की ये कविता।
4: आप देते हो हमें शिक्षा, फिर लेते हो हमारी परीक्षा। गलती करें तो हमें समझाते, हम रोए तो हमें हंसाते। माता ने दिया है जीवन दान, आप बनाते हो इसे महान। ज्ञान का दीप आप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो। विद्या का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ, जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का करो सम्मान।
1: बहुत अच्छी सीख हमें दी है परान ने अपनी कविता के माध्यम से। हमारे शिक्षक हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना कहे ही सिखाते हैं, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते बल्कि व्यावहारिक रूप से भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और सभी शिक्षक

श्रोताओं को परान की इस कविता के माध्यम से नमन। और इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। कार्यक्रम मुस्कान से प्रीति दीदी को सभी बच्चों के साथ इजाजत दीजिए। जय हिंद।

बच्चों का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है स्वाभिमान।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दो बजकर 58 मिनट होने को हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंट बनाई जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मूर्ति मिट्टी की लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाया करती हैं।

मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बैतूल के कुकरू में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक भी पिलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यहां ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। और मौसम विभाग ने आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी और खंडवा सहित प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है शाम 6:00 से और 6:30 आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 3:02 होने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर ही आप हमारे प्रसारण को शाम 5:00 से पुनः सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

रेडियो वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं जयति
1: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: उम्मीद है आपका रविवार मुस्कुराहटों और अच्छी ऊर्जा के साथ बीत रहा होगा। और इस खूबसूरत रविवार को और भी खास बनाते हैं हम रविवार के स्पेशल सेगमेंट युवा तरंग के साथ।
1: बिल्कुल, तो आज भी हम लेकर आए हैं ढेर सारी रोचक जानकारियां, मजेदार बातें और आपके पसंदीदा गीत। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की उस कड़ी से जहां हम आपसे पूछते हैं दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न जिनका जवाब आपको पूरे कार्यक्रम के दौरान सोचना है। और हाँ, सही उत्तर हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में।
0: और उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वॉटरफॉल कौन सा है।
1: और आज का दूसरा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है।
0: तो मुझे लगता है अनुभूति, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे खास विषय की ओर। और आज हम युवा तरंग में बात करेंगे हमारे नीट के अभ्यर्थियों से, जानेंगे उनकी तैयारी का अनुभव, चुनौतियां, प्रेरणा और सफलता के लिए उनकी सोच।
1: और हमें यकीन है कि उनकी बातें न सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है, बल्कि वो हर युवा श्रोता के लिए भी है जो एक अच्छी फील्ड में एक अच्छा करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और मोटिवेशन चाहते हैं।
0: लेकिन मुझे लगता है कि हम हमारे कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ने से पहले एक खूबसूरत गीत सुन लेते हैं और फिर गीत के उस पार हम सुनेंगे हमारी युवा तरंग की बातचीत।

0: हाय, क्या नाम है आपका? आप क्या करते हैं? हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मेरा नाम श्रद्धा है और मैं 18 साल की हूँ और मैं इस साल नीट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ।
0: हाय श्रद्धा, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने डॉक्टर बनने का सपना कब और कैसे देखा?
1: जी, तो जब मैं क्लास 8 में थी तब हमें पहली बार साइंस में बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब हम अलग से पढ़ना शुरू करा हमने उसे। तो तब मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी और जो ह्यूमंस के बारे में होता है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एज अ सब्जेक्ट। मतलब मैं उसे इजीली रिलेट भी कर पा रही थी। तो जब मैंने एज फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ और इस सब का देखा था एज अ करियर ऑप्शन, तो MBBS करना, डॉक्टर बनना सबसे टॉप पे था। तो इसीलिए फिर मैंने तब से फिर मेरा सपना रहा है कि मैं नीट क्लियर करूं और मैं MBBS डॉक्टर बनूं।
0: तो मुझे ये बताओ श्रद्धा, कि आप आई थिंक एक 1.5 साल से इजीली आप इसके लिए प्रिपेयर कर रही होंगी, तो अभी तक ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, एंड हाउ डिड यू टैकल द प्रिपरेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट?
1: तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी तो मुझे सबसे कठिन सब्जेक्ट फिजिक्स लगता है, क्योंकि 10th के बाद से हमने मैथ्स तो छोड़ ही दी थी। तो फिज़िक्स मैथ्स की तरह ही होता है। तो उसे टैकल करने का मतलब मेरे हिसाब से ये था कि एक तो उसके सारे आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए और एक बुक होनी चाहिए जिसमें आपने सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला लिखे हों, जो आप मतलब जब भी न्यूमेरिकल्स करने बैठे तो आप उसको रेफ़र कर सकें। बाकी आप दिन में सुबह उठ के आपको जहाँ भी एक जगह आपको फॉर्मूलाज लगा कर रखने चाहिए, मैं वैसा करती हूँ, तो उससे वो दिखते रहते हैं तो वो याद हो जाते हैं। और दूसरी, जैसे हम बचपन से मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स कर करके, वैसे ही मैंने फिजिक्स की प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करके करी। तो मेरे हिसाब से मैं यही दो चीज़ें फॉलो करती हूँ टैकल करने के लिए फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट को।
0: तो श्रद्धा, मुझे थोड़े से अपने रूटीन के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है कंसिस्टेंसी और दूसरा है डिसिप्लिन। तो क्या रूटीन आप फॉलो करती हैं, और उसके अलावा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा चिल करने के लिए व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट यू डू?
1: तो मैं, जैसे बाकी बच्चों का होता है तो वो डमी स्कूल करते थे, मेरा डमी स्कूल नहीं था, मैं रेगुलर स्कूल जाती थी। तो मेरे याद होता कि स्कूल जाने से पहले मैं 1 घंटा कोई भी एक सब्जेक्ट, जनरली फिजिक्स या केमिस्ट्री, वो रिवाइज करके जाऊँ। तो मैं 5-6 बजे के करीब उठ जाती थी, तो 1 घंटा रिवाइज करके फिर मेरा जो नॉर्मल डे का स्कूल होता है वो, उसके बाद मेरी शाम को 1-2 घंटे की कोचिंग्स होती थी वो कंप्लीट करके, फिर मैं थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ नीचे घूम लिया, बात कर ली, थोड़ा मस्ती मजाक, और फिर उसके बाद घर पे आके डिनर करके थोड़ी सी और जो मतलब कोचिंग में या स्कूल में कुछ पढ़ाया हो या उसका कुछ काम करना हो वो सब करके फिर मैं रात को सो जाती थी। तो यही ऐसा नॉर्मल सा मेरा शेड्यूल रहा है। बाकी मेरी जो हॉबीज या अगर खुद को रिलैक्स करने के लिए मैं बोलूँ तो मैं मतलब ड्राइंग और जो डूडल्स वगैरह होते हैं मुझे वो बनाना काफी पसंद था। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कैनवा वगैरह हो गया, उस पर जो आप थोड़ी बहुत जो बेसिक सी एडिटिंग हो गई या वहां पे कुछ क्रिएटिविटी कर दिया, कभी कभी नोट्स में अगर मुझे डायग्राम के साथ अच्छे से समझना हो, बाद में रिवाइज करना हो, तो ऐसा थोड़ा बहुत उस पर एडिटिंग कर ली, थोड़ा सा ड्राइंग वॉइंग कर ली, तो मेरे लिए वो ही एक थोड़ा रिलैक्सेशन और ये सब के लिए था।
0: डूडलिंग इज प्रॉबेबली काफी यूनिक चीज जो मैंने सुनी है बहुत टाइम बाद, कि किसी को डूडलिंग करना पसंद है, सो कुडोज ऑन दैट। अब श्रद्धा, मुझे थोड़ा सा एक सेंसिटिव इशू पे बात करनी है। आई एम प्रिटी श्योर दैट एज अ नीट एस्पिरेंट अभी आपने जो पेपर लीक्स हुए हैं उसके बारे में सुना ही होगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी एग्जाम जिसके लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं न जाने कितने कितने सालों से, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है कि काफी ही डिसअपॉइंटिंग इंसिडेंट हो जाता है ये। बच्चों की मेहनत की पूरी वेस्ट हो जाती है उसके अंदर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
1: तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता ही है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत सालों से प्रिपेयर करते हैं। मैंने भी 11th से प्रिपरेशन शुरू करी, लोग 10th से भी प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो हाँ, हमें कई बार लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव गलती के कारण हमारी मेहनत कहीं स्टैंड ही नहीं करती। मतलब हम चाहे हम 100% भी देकर आए, बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होता है तो फिर उसमें हम कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। और एक और इसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि जैसे बाकी कुछ एग्जाम्स हैं जो साल में 2-2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, नीट सिर्फ 1 बार कंडक्ट होता है साल में, तो हमारे पास वही एक मौका होता है या तो शाइन करने का, या हमारी पूरी मेहनत उसी एक मौके पर डिपेंड करती है। तो ये हमारे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग भी होता है।
0: ये बात तुमने बिल्कुल सही रहेगी। और हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं, श्रद्धा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आज आपने मुझसे बातचीत की इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं हमारी अगली गेस्ट के साथ। तो नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम आयुषी है।
0: आयुषी, आप कितने साल की हैं और आप क्या करती हैं? हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाय, मैं 17 साल की हूँ और मैं अभी डमी स्कूल में हूँ और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ।
0: आयुषी, मुझे ये बताइए कि आपने डॉक्टर बनने का सपना कब देखा?
1: एक्चुअली इस क्वेश्चन से मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगी कि जो नीट लेते हैं वो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर्स ही बने, बिकॉज मुझे पहले लगा था कि मैं वही करियर चूज करूंगी, बट मुझे पता पड़ा कि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है एक फील्ड, उसमें मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है।
0: okay.
1: तो मैं अभी उस फील्ड में परस्यू करना चाहूंगी आफ्टर आई परस्यू माई नीट।
0: दैट इज एक्चुअली, मुझे नहीं लगता है ये कॉमन नॉलेज की बात है, क्योंकि सब लोग यही मानते हैं कि नीट की प्रिपरेशन इंसान सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए करता है, बट इट्स गुड टू नो कि आपके पास और भी काफी फील्ड्स ओपन रहती हैं इवन आफ्टर गिविंग दैट एग्जाम। तो थोड़ा सा आपके रूटीन के बारे में मुझे बताइए कि एज अ नीट एस्पिरेंट आपका क्या रूटीन रहता है?
1: मेरा रूटीन काफी ही नॉर्मल सा है, मतलब उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बट मैं सुबह 6:30-7 बजे तक उठती हूँ और फिर एक स्टडी सेशन होता है आई थिंक आफ्टर आई हैव माई ब्रेकफास्ट, तो वो रहता है आई थिंक 12 बजे तक। उसके बाद लंच और फिर थोड़े से ब्रेक के बाद हमारी जो क्लासेस रहती हैं उसमें ऑलमोस्ट डेली टेस्ट्स होते हैं, तो फॉर दैट कुछ टाइम पढ़ना पड़ता है क्योंकि हर दिन जो नए टेस्ट होते हैं उनके टॉपिक्स वगैरह सब अलग होते हैं, तो उनके लिए पढ़ना पड़ता है। फिर मैं क्लास जाती हूँ शाम को और फिर मैं 9 बजे आती हूँ और फिर डिनर एंड दैट्स इट।
0: ओके, तो वैसे तो थोड़ा सा रिग्रेस है सुनने में, बट आई एम श्योर कि एक इतनी बड़ी एग्जाम जिसके लिए लाखों बच्चे हर साल कम्पीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका एक जो मेंटल प्रेशर है वो भी अच्छा खासा रहता होगा। तो मुझे पहले तो आप ये बताइए कि आप उस मेंटल प्रेशर से कैसे डील करती हैं, और फिर मुझे बताइए कि एग्जाम के दौरान अपने आप को थोड़ा सा एक लाइट मूड में डालने के लिए या उसे चिल आउट होने के लिए आप क्या एक्टिविटीज करती हैं?
1: मेंटल हेल्थ के लिए तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर थोड़ी देर बाद कोई ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, या फिर कुछ दिनों के बाद एक कोई भी आउटिंग, या फिर सिर्फ घर वालों के साथ बैठ के भी बात करने से काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरे घर वाले ही एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक मेरा जरिया है टू कोप विथ ऑल द स्ट्रेस दैट इज़ देयर इन दिस प्रिपरेशन। और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो तो कोचिंग में रह के उनके साथ ऐसा लगता है कि एवरी डे इज अ फन डे, बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। एग्जाम टाइम में स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आई थिंक मुझे पढ़ना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है और गाने सुनना भी पसंद है, तो अगर टाइम अलाउज तो मैं वही करती हूँ।
0: दैट इज़ एक्चुअली रियली ग्रेट। तो मुझे अब आप ये बताइए कि आप आई थिंक 11th में, आप 12th में होंगी आप अभी, तो अभी आपने प्रिपरेशन तो 11th क्लास से ही शुरू कर दी होगी, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना जब आप देख लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपका एक लाइफ की ट्रैजेक्टरी बचपन से थोड़ी एक काफी सिंक्रोनाइज हो जाती है कि मुझे इसी तरह से अपने एफर्ट्स लगाने आगे। तो अभी तक ऐसे प्रिपरेशन में कोई पॉइंट आया जब आपको लगा कि नहीं हो पाएगा या मेरा इंटरेस्ट शायद कुछ और है, एंड अगर वो थॉट आया भी हो तो आपने उससे कैसे डील किया?
1: तो एक्चुअली मुझे 10th तक मोस्टली पता, 10th के रिजल्ट तक मुझे ये लगा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, बट मैंने काउंसलिंग करी और काफ़ी रिसर्च किया इस सब पे, तो मुझे पता पड़ा कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है राइट बनना। तो मैंने जब इसमें और डीपली देखा तो मुझे पता पड़ा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, जिनमें मैं खुद को इतना एक्सप्लोर कर सकती हूँ, जॉब्स अलग अलग कर सकती हूँ और ऐसी कुछ चीज़ कर सकती हूँ जो कभी किसी ने नहीं करी हो। तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसी को परस्यू करूँगी मैं। तो हाँ, मैं ये बोलूँगी कि ये मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने काफ़ी एक बड़ा डिसीजन लिया था, जिसमें जो मैं बचपन से सोचती आई हूँ मैंने करने की नहीं सोची, एंड दैट इज ओनली बिकॉज मेरा माइंड काफ़ी तब तक
0: नैरो एक वो हो जाता
1: मुझे
0: है,
1: मुझे पता नहीं था इतना। तो यही बोलूँगी मैं कि अगर चेंज करना भी है किसी को, या फिर अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा कुछ, तो आई थिंक किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने से भी काफ़ी हेल्प मिलती है, बिकॉज यू नो दैट दिस इज समथिंग यू डोंट वॉन्ट टू डू एंड यू सर्च फॉर अ न्यू थिंग।
0: बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने, तो मुझे बात करके भी आपसे बहुत अच्छा लगा।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का हमारा युवा तरंग का कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज हमने बातचीत की हमारे कुछ नीट एस्पिरेंट से और जाना उनकी तैयारी, उनके अनुभव, उनके संघर्ष और उनके सपनों के बारे में, जिनके साथ वो देश के मेडिकल क्षेत्र में अपना योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
1: उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपको भी प्रेरित कर पाई होगी, और अगर आप भी किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, लगन, मेहनत और धैर्य हर मंजिल तक पहुंचने की सबसे बड़ी ताकत है।

0: और अब समय है उन दो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर जानने का जो हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे थे, जिसमें आज का पहला सवाल था कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, और इसका सही उत्तर है कुंचिकल वाटरफॉल।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, जिसका उत्तर है 5 जून।
0: हमें उम्मीद है कि आपने भी इन प्रश्नों के सही जवाब ढूंढ कर रखे होंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपने कुछ नई बात सीखी है। अगले रविवार फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों, नई जानकारियों और नई ऊर्जा के साथ।
1: इसी के साथ दीजिए इजाजत अनुभूति
0: और जयती को
1: नमस्कार।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
3: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
5: हर लेन देन अब है आसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। पंकज उदास को सुनिए फिल्म बाजीगर में। बोल रानी मलिक के हैं, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

गुरु फिल्म का गीत सुनिए हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं AR रहमान।

0: की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: फिल्म बॉम्बे में सुनिए ए आर रहमान को।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
3: A Love Story, इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज में, बोल जावेद अख्तर के हैं, धुन बनाई है RD परमन ने।

लता मंगेशकर और कुमार सानू को सुनिए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं जतिन ललित।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए साजन फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। बोल समीर के हैं, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आईसीसी वुमन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Sophie Molyneux to flip it. Harman, your call.
1: Heads. Be back first.
0: Heads is the call. It's fallen your way. Wait for the applause. There it is. What are you going to do and why?
1: I'm going to bat first. I think it's a very important game for us. And we just thought, let's just bat freely and set some decision total for us.
0: Coming off a win up north, you're now down here in London. Any changes to the side for this big clash?
1: Yes, we do have one change. Kranthi is back in the side place of Nandini Sharma.
0: And why is that?
1: I think Kranthi has been bowling really well. And I think these kind of pitches suits her. So we just thought, let's bring her back.
0: Does recent form count for anything? Because you won a series in Australia in this T20 format as well, that semi-final as well. How much do you bring in of confidence into that?
1: Well, it's a fresh day and a fresh mind, and definitely those games given us a lot of confidence, and today's the game to just enjoy ourselves.
0: Okay. We're in London, but it feels like a home match.
1: Yes, definitely. I think weather is quite suiting us, and let's just enjoy it.
0: All the best today, Harman.
1: Thank you.
0: So if I'll get you to come in. If it had fallen your way, what would you have done?
2: We're going to have a bowl, so that's worked out well.
0: There you go. Happy days. Phoebe Litchfield, we've heard in the press that she's back into the side. Any other changes, and who's out for her?
2: Yeah, Phoebe's is back in, and Alana King's missing out, so.
0: And why is that? Because the two leggies have worked well for Australia so far.
2: They have, yeah. I think it's just conditions and matchups today. Kingy's bowled really well this tournament, and she can still play a massive role for us moving forward over the next week or so. But yeah, excited to have Phoebe back.
0: It's been building nicely for Australia. It feels as if it's a bit of a final more so than a round game.
2: It does. It's really exciting. We've had a bit of a break before this game, so it's built up really nicely for us. And
0: Enjoy all the magic of the home of cricket.
2: Yeah, we will.
0: All the best, Soph.
2: Thanks, Jonesy.
0: Well, India have won the toss today and they'll be batting first in this crunch match.
3: हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता है और भारत पहले बल्लेबाजी करेगा. सौमित्रो, हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है. कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप?
4: पहले तो दोनों कैप्टन खुश है. हरमनप्रीत बैटिंग करेंगे और इंडिया बैटिंग करेंगे और बॉलिंग करेंगे. और टीम चेंजेस में आपको दिख रहे हैं कि फिबी लिचफील्ड को वापस आना ऑस्ट्रेलियन टीम में बोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज शी इज गोना अमेजिंग स्ट्राइक रेट. तीन मैचेस नहीं खेले हैं वो अभी तक, सो ही एब्सोल्युटली फ्रेश. इंजरी थी, नहीं पाएंगे. सो दिस इज अ बिग मैच फॉर हर और शी कैन बी द इम्पैक्ट फैक्टर. जैसे आपने बोला, ये इस तरह का मैचेस में जैसे 170-180 जो रिकॉर्ड्स जो दिखता है लॉर्ड्स में ऐसा ही. बट इफ इंडिया कैन स्कोर 170-180 दैट विल बी अ वेरी गुड स्कोर. हरमनप्रीत का बैटिंग इज लार्जली बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांग इन आवर बैटिंग. ऑल्दो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन आवर स्कोरिंग स्पेशली मिडल ऑर्डर. और हरमनप्रीत को आज शी कमिट द मैच, कमिट द वुमन. सो शी हैज टू बी द वुमन बिकॉज इस तरह के मैचेस में अगेन ऑस्ट्रेलिया, इफ इज वन पर्सन दैट ऑस्ट्रेलिया फियर्स इज हरमनप्रीत. और इस मैच में उनको आज कैप्टन्स नॉक खेलना है कि 85 रन्स इन फोर मैचेस इज नॉट व्हाट द हरमनप्रीत वी नो अबाउट. तो आज का मैच उनके लिए बहुत जरूरी है और सारे टीम के लिए जरूरी है. मगर प्रेशर नहीं है. शी यूज द वर्ड एंजॉय. लेट्स सी हाउ मच एंजॉय.
5: रविंदर, हमने तब्दीलियों का जिक्र किया. आज के इस मुकाबले में भी एक बदलाव है. नंदिनी के जगह पर क्रांति गौड़ को मौका मिला है. पेस डिपार्टमेंट में खास करके स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली है.
6: बिल्कुल, जिस हिसाब से जो बॉलिंग अटैक था उसमें बिल्कुल चेंजेस, हर मैच में चेंजेस चल रहे थे. तो ये एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि विकेट मुझे लग रहा कि थोड़ा सा सीम हो रहा है जैसे बताया हरमनप्रीत ने. तो उनको लगा क्रांति गौड़ इसमें शायद ज्यादा परफॉर्म कर पाएगी. लेकिन जो मेन इनका अटैक रहेगा वो चरनी के आसपास ही घूमेगा क्योंकि चरनी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और वो एक तरह का मैच डिसाइड करती है कि मैच का पड़ा किस तरह मुड़ता है.
3: ख्याति, अगर दोनों टीमों की बात करें तो 38 T20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 27 जीते हैं, भारत ने 10 में विजय प्राप्त की है और एक मैच बेनतीजा रहा है, परिणाम नहीं निकला है. जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने होते हैं और ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हम इसे कह सकते हैं, किस तरीके का टोटल होता है? क्या जो टीम मीटिंग टॉस जीतने के बाद होगी उसमें इस पर चर्चा होगी चूंकि आप कोच भी रह चुकी हैं डोमेस्टिक सर्किट में, या फिर ये होगा कि पहले पावर प्ले देखते हैं उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे?
7: डेफिनेटली उन्होंने डिस्कस तो किया होगा. ऐसा हो नहीं सकता कि विदाउट एनी टारगेट दे विल गेट इन टू द पिच डायरेक्टली. बट आई थिंक इट विल बी कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट. बॉल टू बॉल कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन बोथ द टीम्स, बैटर टू बॉलर एंड बॉलर टू बैटर. एंड आई थिंक 160-170 शुड हैव बी अ गुड स्कोर. दे मस्ट हैव डिस्कस दिस थिंग. Otherwise, you will not give the cushion to your bowlers. You have to give the cushion to your bowlers also. आपको अगर उस तरीके की गेम खेलनी आपको हमेशा सेट होने, अगर सेट होते आपके बॉलर्स या आपके बैटर्स डेफिनेटली आई थिंक तब आप ये सोच सकते हो कि वहां जाके आप पावर प्ले देखें, लेकिन अभी तक कुछ भी सेट नहीं है पावर प्ले में। एवरी टाइम इनका जो स्कोर है उस तरीके का नहीं चल रहा कि जैसा एक्सपेक्टेड है, जो द वे वी ऑल्सो टॉक टू द प्लेयर्स कि आपका 6 ओवर्स में 50 रन हो इस तरीके से, बट आई थिंक एक 160 का स्कोर एक पार, आई थिंक इट विल बी अ गुड स्कोर।
5: Sumitro, heading into the World Cup, the concern was more around the openers because they were struggling in that series against England. But now it's more around the wobbly middle order.
4: Absolutely, because if you see, first of all, you have to forget what you've done in the last 4 matches. Especially, you know, when you play in Netherlands, and they are more like warm matches with all regards to those teams. But the point, today is the big match. Or agar aap is level pe matches dekhe, India have always lost these kind of matches against Australia. It doesn't mean, again, history does not mean anything else. But the point is this, aaj agar aap dekhega, who bats at number 3, who bats at number 4, where does Harmanpreet bat? Up six, she has batted at 6, she has batted upper. So, India have got a very unsettled look about them. Which is very, very striking for a team that has won a World Cup. And the coach at the core of the team remains the same. The coach remains the same. In spite of that, we still don't know. Aapne jaisa pehle bola ki 16 players hum 4 matches mein khila diye. That means that's not a good sign. Plus, you know, there are other concerns, fielding concern. But I would like to see who bats at number 3. I'm assuming ki South Africa, which was the biggest match so far, who Yastika batted there. She's a left-hander aur unke paas leg spinners bahut hain. शायद यही बैटिंग देखेंगे, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी वेयर डज हरमनप्रीत बैट, हाउ मच ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स, बिकॉज when the कैप्टन टेक्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी स्कोर्स द रन्स, आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और ओपनर्स जैसे आपने कहा, दे आर फेयरली ऑलराइट, स्मृति मंदाना इज अमंग द टॉप स्कोरर्स, शिफाली इज गॉट रन्स, बट यस द परफॉर्मेंस ऑफ द मिडल ऑर्डर विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल।
3: रविंदर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जमीमा की भी फॉर्म इस पूरे टूर्नामेंट में सवालिया निशान पर रही है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यास्रिका भाटिया और भारती फूलमाली में भी चर्चा हो रही थी कि शायद उनको इस मैच में वापस लाया जाए प्लेइंग 11 में, लेकिन यास्रिका के साथ गई है हरमनप्रीत कौर की टीम। अगर हम बात करें किस तरीके का टीम में माहौल होगा इस समय, चूंकि नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कहीं ना कहीं अनसर्टेन रहा है इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का।
6: बिल्कुल अनसर्टेन रहा है, तभी ये मैच, ये जो टूर्नामेंट है इस कंडीशन में आया है। आप देख रहे हैं कि 15-16 लोग खेल रहे हैं। नॉर्मली अगर आपकी एक कॉम्बिनेशन बना रहता है तो 11-12 लोगों में ही काम टूर्नामेंट पूरा चल जाता है। बहुत कम होता है कि आप 15-16 लोगों में खेलिए। बैटिंग में दिक्कत रही है इसमें भी, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप है ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रांग है, पर यह है कि अब उस स्ट्रॉन्ग को उसको अब एग्जीक्यूट करना है, और इससे आज से बड़ा ये मौका कभी मिल नहीं सकता। आज इनको पता है डू और डाई है, आज नहीं करेंगे तो फिर आप पैकिंग करेंगे।
5: ख्याति इन द गेम अगेंस्ट बांग्लादेश, दो जमीमा गॉट सम रन्स, बट इन

0: three prior games, she struggled. Is she somebody who wants that role clarity, that position clarity?
1: See, definitely, अगर आप ऋचा घोष की बैटिंग देखेंगे तो उनको हमेशा थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. अगर आप उसको अप द ऑर्डर भेजेंगे, डेफिनेटली शी कैन शो यू गुड परफॉर्मेंस एंड शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ गुड टोटल. बट उसका अगर आप बार बार डाउन चेंज करेंगे, इतने प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें भी आपको समझना चाहिए कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. और जैसे ही उसको टाइम मिलता है, लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा, वन डे वर्ल्ड कप था, जैसे ही उसको टाइम मिला एंड शी गेव गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द गुड टोटल. इतना तो आई थिंक अब सेम कोच है इतने साल से, तो सेम मैनेजमेंट है, इतना तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग अब तक हो जानी चाहिए अपने प्लेयर के लिए.
2: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20 में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले श्रोता. बहुत बहुत स्वागत है आपका.
3: नमस्कार भैया.
2: नमस्कार, अपना परिचय दीजिए.
3: नमस्कार भैया, मैं कम से कम 50 साल से कमेंट्री सुन रहा हूँ भैया
2: जी.
3: जब कमेंट्री सुनने का था, देखने का नहीं था, तब अपना इंडिया टीम एक गलती कर रहे दिख रहा था मेरे को. बैटिंग पहला लेने से पहले फील्डिंग लेना बहुत अच्छा दिखता था सर. चांस जीतने का ज्यादा चांस रहता है मैडम. कम से कम एक 200 रन तो आज बनाना कंपल्सरी है और एक कैच भी नहीं छोड़ना अपन लोग. कैच अगर पकड़े मैच जीतने वाला था, नहीं तो अगर कैच ना मैच हार जाएंगे इंडिया.
2: सुमित्र, यहीं से इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं. 3 में से 1 कैच भारत ने ऑन एन एवरेज इस टूर्नामेंट में छोड़े हैं, जो बड़ा कंसर्न है कहीं ना कहीं फील्डिंग साइड के नजरिए से देखें. पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे कैचेस छूटे हैं, लेकिन टीम इंडिया को आज के मैच में बहुत ध्यान देना पड़ेगा.
4: बहुत जरूरी है. 4 मैचेस में 11 कैचेस, एक मैच बांग्लादेश के साथ पहला 5 ओवर में 4 कैच. मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल कैच जो इसने छोड़ा वो है मैरिजॉन कैप का कैच. वो जो मैच 81, शी हैड 3 लाइव्स. कैन यू इमेजिन इन T20 जहां पे मार्जिन ऑफ एरर इज वर्चुअली 0, वी हैव डन लाइक दिस टुडे. बट अगेन यू नो व्हेन जब हम रिपोर्टर्स लोग हमारे क्रिकेटर्स के साथ बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको पता है कि इसमें ऐसा होता है. क्रिकेट में जो क्रिकेट खेले हैं उनको भी पता है. आज तो सिर्फ नर्व्स को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा मैच में 40 ओवर्स में अपना How cool you are. She has used the word enjoy. मैं आप अगर आपने सुना होगा, enjoyment can only come if you're cool within and you have the composure to play such a big match. वो तो पहले ही पता चल जाएगा कि जब बैटिंग करेंगे हमने पावर प्ले में कैसा लिया. Don't forget that Australia are very very hungry and they have made one very important change that can be a deciding factor. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है.
0: और रविंदर, ये बस कैचेस ड्रॉप होने की बात नहीं है, फील्डिंग में भी फंबल्स देखने को मिले. इनफैक्ट बांग्लादेश के विरुद्ध इनिंग्स की आखिरी गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत खुद फील्डिंग के टाइम बॉल को ठीक से पकड़ नहीं पाई, तो वो जो जिटर्स हैं वो ऑलमोस्ट इन्फेक्शियस लग रहे हैं.
5: देखिए, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कैचेस का. वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपकी क्या प्रिपरेशन है, आपके कोचेस क्या कर रहे हैं. एक राधा यादव जो कि इंजर्ड थी, उसके हाथ में इतनी मोटी बैंडेज थी, उसको आपने अंदर भेजा और 3 जो प्लेयर थे वो बाहर बैठे थे और उसके हाथ से कैचे छूट रही है, वो पकड़ नहीं पाई. फील्डर वो अच्छी है, उन पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय उनकी हालत, एक इंजर्ड प्लेयर को आप अंदर लेके आ रहे हैं और वो आप 20 ओवर के मैच में 3-3 कैचेस छोड़ेंगे तो कैसे मैच जीत सकते हैं आप. कोई एक्सक्यूजेस नहीं है. देखो फील्डिंग का, फील्डिंग पर अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, कोई लोकल मैच तो खेलने नहीं जा रहे, तो मुझे तो पूरा मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है कि आप लोगों ने क्या प्रिपरेशन करी उनके लिए.
2: फर्स्ट बॉल 20 के इस कार्यक्रम में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं. नमस्कार, स्वागत है आपका.
6: जी सर नमस्कार, और मेघा जी को भी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार. गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं.
6: जी मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर.
2: जी विपिन जी,
6: सवाल सर मेरा ये था कि जैसे इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो क्या 180 स्कोर अच्छा रहेगा अगर बना लेती है टीम इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी काफी अच्छी है. और दूसरा सवाल ये था कि क्रांति कौर को खिलाया गया है तो वो उनकी पहले भी बॉलिंग काफी अच्छी नहीं रही है और उनको ज्यादा ओवर भी पहले नहीं मिल पाए हैं, तो उनके बारे में जानना था. और फील्डिंग के बारे में तो आप लोग चर्चा कर ही रहे हैं, जो कि आज इसकी नौबत भी यही आई है कि हम बाहर होने की स्थिति में.
2: इन्होंने 180 के टोटल की बात की. भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप में जब भी आमने सामने आए हैं, भारत का सर्वाधिक टोटल 167 रन रहा है, जो 2018 और 2023 में टीम इंडिया ने बनाया है. 167 से आज पार पाना चाहेंगे ख्याति?
1: डेफिनेटली, आई मीन वो तब बनाया था और उसके बाद से जो टीम ने इम्प्रूवमेंट की है तो आई थिंक और एक्सपेक्टेशंस हाई होगी. और ये जो आज मुकाबला है, यहाँ से आपको ऑब्वियसली और आगे अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना होगा और सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड. और आई एम श्योर उस बारे में

0: बात बहुत ज्यादा हुई होगी मैनेजमेंट में, एंड लास्ट वर्ल्ड कप में भी, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इस बारे में डिस्कशंस चल रही थी कि किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करें, एंड बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी जो मुझे बाद में पता चला कि जिस तरीके से अमोल मजुमदार ने बात करी और मोटिवेट किया प्लेयर्स को, उनमें ट्रस्ट दिखाया, तो आई थिंक ये सेम सिचुएशन है, इस बारे में बात हुई होगी, एंड आई थिंक दैट दे विल बी सक्सीडिंग इन दिस.
1: Soumitro, ever more important to be imposing because of how deep Australia bat and how attacking they themselves are.
2: एक चीज श्रोता को बताना जरूरी है कि टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बॉलर्स में एक भी ऑस्ट्रेलियन नहीं है, फिर भी ये अनबीटन है. हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स अ टीम गेम दैट दे प्ले. रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इन मैन टू मैन शायद एक्सपीरियंस वाइज ऑस्ट्रेलियंस आर मच हायर. Beth Mooney, Ellis Perry, Ash Gardner, fantastic. आप देखिए, but India has no shortage of experience. But experience comes for nothing if you don't score. Experience comes for nothing if you don't hold your catches. Experience comes for nothing if you don't take wickets. But the point is this: it's going to be a great contest. And as I said, that you know, it is all in the mind. आपने जो सवाल किया उसके लिए, India have to take over by over. ये नहीं कि rush करके हमने इतना set बनाना है. पावर प्ले, आई थिंक यू हैव सीन द फर्स्ट फ्यू मैचेस वेयर इंडिया स्कोर 10 एंड ओवर, दैट विल बी एन आइडल स्टार्ट. बट डोंट फॉरगेट दैट ऑस्ट्रेलिया हैव अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप एंड दे नो एंड देयर फील्डिंग इज अमेजिंगली गुड. तो यू नो, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड. आई मीन जस्ट अक्रॉस द अटलांटिक वी आर सीइंग अनदर वर्ल्ड कप. उतने जिस तरह से केप वर्ड ये सब टीम्स खेल रहे हैं, इक्वाडोर जर्मनी को हरा रहे, नो बडी कैन गो इन विद अ सेट प्लान. इट इज वॉट यू डू at that moment and how you perform.
3: जी हाँ, थोड़ी बल्लेबाजी की बात करते हैं. रविंदर स्मृति मांदना भारत की तरफ से सबसे सफल बैटर हैं इस वर्ल्ड कप में, 4 मुकाबलों में 167 रन. लेकिन मैचअप की बात करें तो एश गार्डनर ने उन्हें 31 T20 मुकाबलों में 10 बार आउट किया है. कैसे देखते हैं इस मैचअप को?
4: देखिए, ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनका जो होमवर्क है वो बहुत तगड़ा है. वो हर प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, सबसे बड़ी बात. और बाकी ये बाकी एक दूसरे के साथ उनको पता है कि बैटर्स हैं. इंडियन की टीम जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, हरमनप्रीत है, शेफाली है और स्मृति है, इनके ऊपर उन्होंने जरूर होमवर्क कर गया होता है. अब देखिए, पहले जितने भी T20 होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही उनकी विक्ट्री रही है. देखिए, डिपेंड करता है कि आपका स्कोर 160-160 वो नहीं होता, आप 160 में भी जीत सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप फील्डिंग करते हैं उस हिसाब से अगर आप 180 भी बना दें, 190 भी बना दें, तब भी आपको जीतना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए. वो प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत ही प्लान तरीके से खेलने आते हैं उनके. देखिए, किसी भी बता रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि टॉप 10 में कोई भी नहीं है, लेकिन वो टीम वर्क है सारा. नीचे वाले भी जाके बैटिंग कर रहे हैं, 8-8 प्लेयर बॉलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा. और हर और ये 160-170 रन तो बनाए अगर बनाते भी हैं, लेकिन उसके बाद आपको पूरे फील्डिंग जो जज्बा दिखाना पड़ेगा उसी का जीत पाएंगे. नहीं तो आप 180 रन करके भी जो फील्डिंग कर रहे हैं उसमें भी कोई फायदा नहीं होगा.
1: Now, Khyati, from one opener to the other, Shefali Verma hadn't scored a half century in T20 World Cups, though she'd featured in multiple of those since 2020. But this edition got two of those. Though Australia would like to exploit her weakness against short balls?
0: Yeah, definitely. I mean, she's known for big games. But it's yet to come. And let's see. I mean, if they might have done homework for her as well, and they know that she's bad with the short pitch balls and all. But Amol must have spoken to her and must have told her her weakness and their strength. I think they'll come with good homework. But let's see how good she can execute on the ground today.
2: I want to add to what she said that, you know, these teams have played 37-38 T20 matches, internationals. Isse pehle India won a T20 series against. Most of the top players are not unknown to each other. Like, if you notice, all the champion sides, regardless of whether it's tennis or badminton or kuch bhi dekhe, your top 10 jo players hota hai, they know each other. It's on the day that's how you perform, right? It's on the day how you. So, you can only guess ki Shefali karenge, Ashley Gardner can do this and all that. That's history. It's exactly what you do in the next 1.5 hours at Lords.
3: जी हाँ, बिल्कुल. कल प्री मैच कॉन्फ्रेंस में स्मृति मांदना ने कहा भी था कि हमारे प्लेयर्स बिग बैश में खेलते हैं, उनके प्लेयर WPL में खेलते हैं, तो बहुत ज्यादा हम एक दूसरे को जानते हैं. इस बीच फर्स्ट बॉल 20 में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं. नमस्कार, स्वागत है आपका.
5: आनंद जी, आपको सबको नमस्कार. आपका रेगुलर श्रोता कारण

0: लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ आनंद
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार। मेरा सर सवाल है कि हमारे पेसर बॉलर थे ये, तो हमारे पास में ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा हमारा भारत देश है कि जैसे गलियों में क्रिकेट खेली थे वैसे महिला कम क्रिकेट खेलती है, वो तो वजह नहीं है रविंद्र सर से। मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि पुरुषों में तो अब हमारे पास में बहुत गति के बॉलर है, लेकिन महिलाओं में ये जो समस्या क्या महिला कम भारत में क्रिकेट खेलती है इसका ये कुछ है इसके ऊपर, और बैटिंग देखिए थोड़ा गलत काम ऐसा लग रहा है। धन्यवाद।
1: तेज गेंदबाजों को लेकर बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं रविंदर।
2: देखिए बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास, अरुणिति रही भी रही है, रेणुका ने बॉल किया और क्रांति गौड़ हैं, लेकिन अब जैसे से अब ये अब भारत में अब क्रिकेट वुमेन्स के लिए बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। अब तो देखिए लोकल डिस्ट्रिक्ट में लीग चल रही है उनके लिए, और अब तीन चार पांच साल में जिस हिसाब से इनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है जो बीसीसीआई द्वारा, उसमें आपको बहुत ही जल्दी आपको और भी अच्छे और टैलेंट देखने को मिलेगा। छोटी छोटी जगहों से काफी निकल के आ रही हैं प्लेयर, मैं देख रहा हूँ लड़कियां भी काफी निकल के आ रही हैं झारखंड से बिहार वगैरह से, तो ये आपको जल्दी थोड़े दिनों में और भी अच्छा टैलेंट देखने को मिलेगा आपको।
3: One of the reasons probably for Indian pacers struggling is the conditions, and second, a lot of pace bowling all rounders got injured ahead of the World Cup. Getting back to India's batting, Soumitro, Harmanpreet Kaur somehow hasn't looked in rhythm. There's no pattern to her dismissals, but she's been struggling to score runs fluently.
4: Absolutely, that you can see the lack of confidence can be seen in the way she has, the number of positions she has batted. If she was confident and she had the rhythm, then she would have perhaps batted in the top 4 or 5. Although, you know, she has enough batting power, but today is the day when she has to get her rhythm back. And against Australia, she's always scored the runs. She's always been the most valuable player. Unfortunately, all the 450s that she has scored in T20s have come against her. Whenever India have lost, shayad today is the day when the equation will change.
1: ख्याति, हमने बहुत बात की भारतीय टीम की, थोड़ी चर्चा ऑस्ट्रेलिया की भी कर लेते हैं, किस रणनीति के साथ वो इस मैच में उतरेंगे।
5: देखिए अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे उनका पेस अटैक काफी अच्छा है, तो ये कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन स्मृति मानधना एंड शेफाली वर्मा अलॉन्ग विद दीज आई मीन इन फ्रंट ऑफ दीज ऑस्ट्रेलियन बोलर्स और एशले गार्डनर एंड हरमन के उसमें, तो आई थिंक डेफिनेटली ये कॉन्टेस्ट कौन बॉल टू बॉल जीतता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सर ऑल्सो सेड कि ये पूरा 40 ओवर्स लास्ट बॉल तक आप इस गेम को किस तरीके से खेलते हैं वो उस पर बहुत निर्भर करता है।
3: और वही एलिस पेरी भी रन बनाए पाकिस्तान के विरुद्ध, पहला T20 विश्व कप का अर्धशतक जड़ा, दो विकेट भी निकाले, तो उस मोमेंटम के साथ और भी आगे गुनाना चाहेंगे रविंदर।
2: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऑस्ट्रेलिया अनबीटन साइड है, देखिए अभी तक उनमें अभी ज्यादा कुछ कमियां दिख नहीं रही क्योंकि अभी तक हारी नहीं टीम, जब टीम हारती है तभी आपकी कमियां निकल के आती हैं, जीत जाने पे सारी कमियां छुप जाती हैं। अगर उस दिन भी अफ्रीका के अंदर हम मैच जीत जाते लास्ट में तो सारी राधा यादव को कोई याद भी नहीं कर रहा होता, आज भी इनको इसलिए याद करा जा रहा है कि उनके मैच हार गई, तो ये डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है उनका यही। अब ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो एपिक जो राइवलरी है वो आज देखने को मिल रही है, डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, आप जो पहले बैटिंग करने जा रहे हैं आपने डिसीजन लिया अच्छा लिया, डिसीजन पॉजिटिव डिसीजन है क्योंकि इतने बड़े प्रेशर मैच में आपको पहले अगर आप रन बना देते हैं तो बढ़िया है, अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करते 180 नंबर रन बनाते तो चेस करने बहुत प्रेशर होता, लेकिन बढ़िया आप 6 ओवर पहले संभल के लिए 40 रन का टारगेट रखिए, विकेट मत दीजिए आप, और उसके बाद धीरे धीरे इसको टीम अपना बिल्डअप करेंगे तो आप 20 ओवर में 180 के आसपास पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपने लूज की विकेट शुरू में पावर प्ले में तब वापस आपको दिक्कत आ जाएगी।
1: सौमित्रो, हमने कई खिलाड़ियों की चर्चा की, लेकिन अगर आज भारत को बड़ा टोटल बनाना है तो ऋचा घोष को बहुत बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी लोअर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि तीन ऐसे इस टीम में प्लेयर हैं जिनके पास बल्लेबाजी का अनुभव नहीं है, और T20 में टेल अगर की बात करें तो भारतीय टेल थोड़ी लंबी नजर आती है।
4: देखिए ऋचा घोष का नाम आपने जिक्र किया, बैटिंग कहां करेंगे, 4 नंबर में किया, 7 नंबर में किया, 6 नंबर में किया, आज कहां करेंगे, वही तो सवाल मैंने पहले भी पूछा है कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। एंड डोंट फॉरगेट देयर समबडी कॉल्ड दीप्ति शर्मा, शी इज लाइक द रविंद्र जडेजा ऑफ इंडियन टीम, कहीं पे भी बैट कर सकते, कभी भी विकेट ले सकते, मोस्ट बिजीएस्ट क्रिकेटर इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि यू कांट गो विद अ सेट प्लान, कोच साहब ने कहा ही है यू कांट गो विद अ सेट प्लान, यू कैन नेवर गो विद अ सेट प्लान, बट यू वुड एक्सपेक्ट दैट योर मेन प्लेयर्स विल स्कोर द रन्स, right? So what is a good score? Nobody knows. 160 perhaps. So there are a lot of questions, and that's the beauty of these contests like between India and Australia. You don't know. There are so many factors that you cannot control. What you can control is what you can do. Like, you know, he said maybe 40 runs in the 10 over.

0: hold your wickets. So fascinating. I mean, that's why India, Australia, England, Australia, these are big matches. And big matches, you can't go with a plan. You play on the day, face the circumstances, play the conditions, and go on.
1: Talking about questions, at the start of the year, Sophie Molino was anointed the captain. There were question marks around her fitness, whether she'd be able to lead Australia during the World Cup. Not only has she shown herself to be fit enough, she's also delivered consistently 6 wickets in 4 games. Kathy.
2: Yeah, definitely. I mean, if you see that, like Litchfield also, they want to play against India because they have that hunger, and they still remember the ODI World Cup, and they were waiting for this game, and they will give their best for this game, and they are coming up with the best team, and I'm sure that she will deliver.
3: शेफाली वर्मा पर दबाव होगा रविंदर, चूंकि तेज तर्रार शुरुआत के लिए वो जानी जाती हैं, अच्छी फॉर्म भी दिखाई है, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने पारियां खेली हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम बड़ा मुकाबला।
4: देखिए शेफाली एक बहुत बड़ी प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, वो जिस हिसाब से बैटिंग करती है, जैसे वीरेंद्र सहवाग वगैरह बैटिंग करते थे, अगर वो 6 ओवर में उनको वो रहती हैं, स्टार्ट देती हैं, तो उसके बाद अगर वो विकेट पे रहती हैं, तो ये मैच इंडिया बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उनके जो पॉजिटिव अप्रोच है, उनकी जो बाउंड्रीज निकालना है, वो और इवन किसी भी प्लेयर के लिए आसानी जितनी आसानी से शेफाली निकाल पाती है। शेफाली उनकी बल्कि ऑस्ट्रेलियंस की वेटलिस्ट में होंगी कि उनको पहले आउट करना चाहेंगे शेफाली को जरूर, वो उनको पता है शेफाली बहुत अग्रेसिव प्लेयर है, उनको जितना लंबा खड़ी रहेंगी उतना इंडिया के लिए बेटर रहेगा।
3: जी हाँ बिल्कुल, शेफाली से उम्मीदें होंगी। लॉर्ड्स की इस ऐतिहासिक पिच पर एक मजबूत स्कोर सिर्फ स्कोर बोर्ड पर अंक नहीं जोड़ता, बल्कि विपक्षी टीम के मन में भी सवाल खड़े कर देता है। अब निगाहें होंगी भारतीय टॉप ऑर्डर की ठोस शुरुआत पर, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी पर, और अंत के ओवर में तेज गति से रन बटोरने की क्षमता पर। फर्स्ट बॉल 20 में इतना ही। रविंदर जी आपका, ख्याति गुलानी आपका, और सौमित्र बोस आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया।
4: थैंक यू।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: आईसीसी T20 महिला विश्व कप जो की आज लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का ये मुकाबला भारत को जीतना होगा अगर भारत सेमीफाइनल में अपना दाखिला चाहता है। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि आज की टीमें किस तरह से हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम खेल रही है उसमें खिलाड़ी हैं पैट मूनी, जॉर्जिया वॉल, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, जॉर्जिया बेरफिन, एनिबल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोनिलू, लूसी हैमिल्टन, किम गार्ड और फीबी लिचफील्ड। और भारत की तरफ से जो टीम खेली जा रही है उनमें शामिल हैं स्मृति, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत, जमीमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्रीचरणी, रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड़ को आज के इस मुकाबले में शामिल किया गया है, जिन्होंने अपने रेडियो सेट अभी अभी ट्यून किए हैं। उनकी जानकारी के लिए हमें ये बता दूं कि भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और पिच को अगर देखा।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान है और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
3: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your

0: I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से स्वर्ण खरीद से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने और कुछ समय के लिए कार पूलिंग की अपील की थी। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त कृषि अपनाने, कृषि भूमि का संरक्षण करने और प्राकृतिक उर्वरकों को अधिकतम उपयोग करने को भी कहा था। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन और सहयोग करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अगले ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का यह अंतिम मुकाबला है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। भारत के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 87 रन बना लिए। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:05 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 से ICC वुमन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे, जो जारी रहेगा मैच की समाप्ति तक। आइए अब आपको हमारे कल अर्थात सोमवार 29 जून को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल सुबह 6:05 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 से खेती की बातें में बताया जाएगा सही समय पर करें बुआई। श्री रामचरित मानस गान का पाठ होगा 6:40 से। 7:20 से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर सुना जा सकता है। 8:30 से लुत्फ लीजिएगा फिल्म संगीत का। 9:00 से मराठी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा पंडित पन्नालाल घोष के बांसुरी पर बजाए राग तोड़ी का। 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11:00 से सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।

12:02 से फिल्म संगीत, 12:30 से संग्रहालय से, 1 बजे से स्वास्थ्य दर्पण, 1:30 से लोक संगीत, 1:45 से सुगम संगीत, 2 बजे से फिल्म संगीत और 2:30 से चित्रपट संगीत। तो ये थे हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी कल की सांध्यकालीन सभा रोज की तरह आरंभ होगी संध्या 5 बजे से युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ। 5:45 से सुनिएगा फिल्म संगीत। 6 बजे से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 6:30 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं कुमार सानू को। 7:20 से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी प्रसारित किया जाएगा। 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 से चित्र गीत सुने जा सकते हैं। रात 9:30 से कार्यक्रम पब्लिक की स्पीक हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे से श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन प्रसारित किया जाएगा। रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा, उस्ताद राशिद खां के गाए राग सोहनी का। तो ये थे हमारे कल अर्थात सोमवार 29 जून को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को सावधान रहना। मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित, दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। और प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के बीच आज राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सतत विकास, हरित विकास और जलवायु अनुकूल विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। एक संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स हिंद महासागर को साझा विरासत मानते हैं और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशल्स के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव साझा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं, इससे हमारी नदियों, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा हुआ करती है। श्री मोदी ने आज मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान का भी जिक्र किया।
7: मुझे मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है।
6: जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट हॉक आई के तहत प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तैनात की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीनी शासन को और सशक्त बनाने तथा ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे कहा,
8: उजड़ते हुए गांव को फिर से बसाया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने। मैं जानता हूं ऐसे गांव जहां सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते से ट्रक जाते नहीं था गांव में, बीमार को खटिया पर धर के लाना पड़ता था। एक नहीं अनेकों जो निष्पक्ष विश्लेषण हुए उनमें कहा है, कई राज्यों की कई बेस्ट प्रैक्टिस है, कल समय मिला तो मंत्रियों के सामने जिक्र करूंगा, उन राज्यों को अप्रिशिएट करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सड़कों में उसका कितना बेहतर उपयोग हो सकता है। और वैसे ही दीनदयाल कौशल योजना, मुझे लगता है इसके स्वरूप को और व्यापक बनाने की जरूरत है। जरूरत के हिसाब से अभी संख्या कम है और अलग अलग चीजें कैसे जोड़ सकते हैं, कम समय में ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके, स्किल करने का।
6: केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरिस्का में कभी बाघ पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे, लेकिन वहां अब 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
9: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
6: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बैतूल जिले के कुकुरू में एक कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के प्रयासों, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान एक कृषि सखी विनीता ने अपनी बात रखी।
10: मेरे द्वारा 4 गांवों में 250 किसानों के साथ एक एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है और हमारे समूह में 82 भी मिली है, जिसमें हम जैविक उत्पाद बना रहे हैं, जीवामृत, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, बीजामृत, ये बना के हम हमारे स्थान से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमारी दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है और आत्मनिर्भर भी बन रही है हमारी बहनें SHG के माध्यम से।
6: ग्राम कुकरू में ही आयोजित ग्राम चौपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांव से दूध, फल और सब्जी आदि का दोपहिया से परिवहन करने वाले किसानों और स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
11: एक अभियान हमने चलाया हुआ है कि हमारे भाई बहन जो खास करके गांव से दूध, फल, सब्जी मोटरसाइकिल से लेके जाते हैं, ऐसे में कई सारे किसान भाई बहनों की दुर्घटना में मृत्यु या घटना घायल हो जाते हैं, तो हमने हेलमेट सबको लगाना चाहिए, इसलिए हम जा रहा अभियान चला रहा है कि सबको हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें।
6: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस जल्दी जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम की जाएगी, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाले अभियान में 1,07,00,000 बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। उधर इंदौर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कलेक्टर शिवम वर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान एक जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं सतना जिले में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने जिला चिकित्सालय से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश के नर्मदापुरम, धार, झाबुआ और आगरमालवा सहित सभी जिलों में 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो दवा का सेवन कराया जाएगा। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून के अगले 3 से 4 दिनों के भीतर आगे बढ़ने की संभावना है। अभी तक मानसून प्रदेश के 15 जिलों तक पहुंच चुका है। आज भोपाल सहित प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग सहित प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून अभी भी नहीं पहुंचा है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भोपाल में आज पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण प्रहरी अभियान का शुभारंभ किया गया। छिंदवाड़ा में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं नशा तस्करी निरोधक दिवस पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों के प्रकार, मादक पदार्थों से संबंधित कानून तथा नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी गई। और राजगढ़ में हिंदू साम्राज्य दिवस के अवसर पर कल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज और भारत माता की आकर्षक झांकियां शामिल हुई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। और प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: So at the end of over number 5, India 35 without loss. And what the best thing that Indians are doing currently is they're picking boundaries. After first over, there was only 3 runs. But after that, every over they picked up the boundaries. And they're ensuring that the run rate doesn't fall below.

0: bbc.com/football.
1: World Football Update from the BBC.
2: Without loss, so India are scoring at a rate of 7 runs per over, which is great after the power play. They again managed to pick up a boundary in this over when Smriti Mandhana actually placed the ball really well in deep mid-wicket region to pick her boundary number 5. So Shefali Verma now 21 of 17 with 2 fours and a 6, and Smriti Mandhana 27 of 25 with 5 boundaries. So we need to see that there's no player has been so effective from Australian side, and there's Sophie Minola is now bringing a change in bowling now. Annabel Sutherland coming in. So as you mentioned, Birinderji, in between that, Ashley Gardner has been expensive, but that's what I think the thing is, that attack is the best defense. They know that Ashley Gardner has a better record against India, and they want to take her from the over number one. They want to attack her, and that's what they did to bring the ball under pressure. And similarly, Annabel also has been very successful against Indians, replaces Kim Garth, and will start her proceedings for over number 7. She's right arm fast medium bowler and has been very successful against India. See what if she can get the breakthrough for them. But this time Shefali on strike, 49, short delivery, she ducks it down and should be close to call a wide. We'll look for umpire signal, and that's a wide. So a wide to start the over. 50 comes up for India at the over number 7. There's no delivery this time, being a wide, so extra delivery she has to bowl. Shefali on 21, and this 50 runs comes in just 44 deliveries, where 27 came from Shefali and 1 from 27 from Smriti and 21 from Shefali. This time a short pitch delivery, and she went on the back foot, just plays soft hand, just pushes the ball, nudges the ball there only, and was looking for a run, but rightly said no by Smriti, as there were two closing fielders coming in there. And we'll dish out some trivias for our audience in between, that this match is happening not on the regular pitch, but one on the side pitches, which makes the one side boundary little closer, and that's what Indians must be targeting, and they want to target. This time a good length delivery onto the middle stump. Shefali waited for the ball, plays it with softer hands, ball rolls down to player who runs in from mid off to mid on, and that but she can't stop a single over there. So 51 without loss, 7.2 overs already been bowled, and a great start for this pre-quarterfinal. So as I was dishing out some trivias for our audience, this match is happening on the side pitch, which makes one side of the boundary little closer, and that's what the players would target in between, which the Shefali we have seen that going on the offside. Similarly, Smriti Mandhana, she is anyways good on her onside play. This time near to the fuller length delivery, drives it down. There's a person at point and no damage done. So good start by Sutherland after that wide. Good comeback in three deliveries. She's just given one run and 51 without loss with 7.3 overs. It would be nice to see now this field is spread, what tactics these two brings in to keep the momentum, because we have seen in earlier matches also India has been able to put good partnership, but then there was a mini collapse against the Netherlands, against Pakistan, against South Africa. They want to avoid that. This time Sutherland jumps it, and a lower delivery, and she somehow manages to push it, drives it rather onto the deep square leg region. And Ashley Gardner fields it, throws it back to the keeper Beth Mooney, but batsman has ample time to stroll for a single there. So that takes Indian score to 52. Four deliveries gone, two runs has been scored. Score rate now 6.78 runs per over. A good start, and a good and a cautious start for Indian women here. Again, Shefali was looking to drive it. She actually moves ahead to play the ball, but then checks the shots and then somehow navigate it on the onside and crosses for a single. So just four runs off this five deliveries. 53 on board already with 7.5 runs over. So this has been a good over from Australians' point of view, where they are going for the boundaries. But this time after six overs, there's no boundary, and Smriti must be looking for that. But no, a good length delivery drives it down. There's Ashley Gardner in the deep and throws it back to the keeper. That's the end of over number 8, India 54 without loss.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली.
0: जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: 7.37 की औसत से भारत ने 54 रन बना लिए हैं अब तक और मंधाना है 29 पर और शेफाली वर्मा 23 पर इस समय बल्लेबाजी कर रही है। गार्डनर को दोबारा गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। गार्डनर जो कि अपने पहले ओवर में काफी महंगी साबित हुई थी, स्मृति सामना करेंगी। फ्लाइटेड गेंद, इसे उठाकर खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लॉन्ग ऑफ से भागी फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें एक रन, भागने का मौका। गार्डनर ने स्मृति को 10 बार आउट किया है 31 T20 पारियों में। जतिन सूद हमारे स्टैटिस्टिशियन हमें बता रहे हैं और स्मृति को ये बात ध्यान होगी जिसकी वजह से काफी सुरक्षात्मक तरीके से और अपने आप को बचाते हुए खेलती हुई 30 पर बल्लेबाजी कर रही है। शेफाली वर्मा सामना करेंगी। फ्लाइटेड गेंद, ऑन ड्राइव करना चाहती थी, बीट हुई, गेंद पैड से टकराई, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। ये खतरनाक हो सकता था जिस तरह से बीट हुई थी शेफाली। दो गेंदों में एक रन, 55 भारत का स्कोर 8.2 ओवर के बाद। गार्डनर ओवर द विकेट। एक बार फिर से शेफाली के लिए फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल, कवर क्षेत्र में ड्राइव किया मगर फील्डर मौजूद है वहां पर, रन बनने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। 55 भारत का स्कोर 8.3 ओवर के बाद। फ्लाइट कर रही हैं गार्डनर, न्योता दे रही हैं और जिसे स्वीकार कर रही हैं शेफाली वर्मा। बार बार कदमों का इस्तेमाल करके ड्राइव करने का प्रयास करती हैं वो और अपने पहले स्पेल में अच्छा आक्रमण किया था। इस बार उठा दिया मिड विकेट की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार चली गई, हवाई रूट लेती हुई 6 रन।
8: ये लगा आभा का छक्का।
7: मिडल स्टंप पर यह फ्लाइटेड गेंद थी जिसका पूरा इस्तेमाल किया शेफाली वर्मा ने और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए स्लॉग स्वीप किया इसे मिड विकेट क्षेत्र पर और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए। 61 भारत का स्कोर। रनों की रफ्तार इस ओवर में तेज होती हुई, 7 रन आए हैं, 2 डॉट गेंदें, 1 छक्का और 1 सिंगल। एक बार फिर से फ्लाइटेड, फुल टॉस गेंद, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद इस बार सीमा रेखा पार जा रही है, 4 रन।
8: ये लगा आभा का चौका।
7: आक्रमण करती हुई शेफाली वर्मा। गार्डनर हालांकि फ्लाइट कर रही है गेंदों में और उस फ्लाइट के न्योते को पूरी तरह से स्वीकार किया जा रहा है। शेफाली वर्मा ने इस फुल टॉस गेंद को 4 रन में भुनाया। 65 हुआ भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर 8.5 ओवर के बाद। 11 रन इस ओवर में आ चुके हैं। आक्रमण करती हुई दोनों भारतीय बल्लेबाज। 30 पर हैं स्मृति और शेफाली इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 33 पर। गार्डनर एक बार फिर से ओवर द विकेट, एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, फिर से कदमों का इस्तेमाल किया गया, ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर और 1 रन मिलेगा। 9 ओवर्स के बाद भारत 66 बिना किसी विकेट पर।
3: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
0: ये मत जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: So Indian women act playing according to the playbook was been prescribed to them by the coach. They have been very, very cautious. They know that Smriti Mandhana matchups with Ashley Gardner hasn't been that great. So she took a single, gave it to Shefali, and she launched her for a 6 and a 4. And Shefali more aggressive. This time she beats her, and Sophie Minula comes in and knocks her down. So that's the wicket number one. ऑस्ट्रेलियन स्किपर गॉट द विकेट ऑफ डेंजर लुकिंग शिफाली वर्मा

0: आ रहा। याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 74 एक विकेट पर और सदरलैंड अपना नया ओवर शुरू कर रही हैं। पहली ही गेंद पैड से टकराई LBW की अपील और ऑस्ट्रेलियाई जो फील्डर्स हैं वो विचार कर रही हैं कि रिव्यू लेना चाहिए कि नहीं। टाइमर चल रहा है। स्टंप के बीचों बीच ये गेंद थी जिसे बैकफुट पर जाकर ऑन ड्राइव करना चाहती थी स्मृति और रिव्यू ले लिया गया है। 74 भारत का स्कोर एक विकेट पर और सदरलैंड जो कि तेज गति की लंबी ऊंची कद की गेंदबाज हैं, स्टंप्स के बीचों बीच मिडल स्टंप पर यह गेंद थी जिसे स्मृति मंधाना ड्राइव करना चाहती थी बैकफुट पर जाकर, मगर गेंद पैड से टकराई थी और LBW की अपील की गई। अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं था जिसकी वजह से रिव्यू लिया गया। बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया था स्मृति ने और गेंद उनकी जांग से टकराई है। जिस तरह से गेंद में गति और उछाल है, शायद ये हो सकता है कि उछाल ज्यादा हो और ये रिव्यू में देखा गया कि जो गेंद का टिप्पा है वो लेग स्टंप के बाहर पड़ा है, जिसकी वजह से रिव्यू पर गौर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्मृति सुरक्षित अपनी क्रीज पर इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 31 पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद थी लेग स्टंप के थोड़ी बाहर जिसे पुल करने का प्रयास किया था, पैड से टकराई थी जिसकी वजह से LBW की अपील की गई। प्रभाव नहीं था अंपायर पर इस अपील का, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया था जिसे नकार दिया गया। सदरलैंड एक बार फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया पॉइंट क्षेत्र पर और डाइव करके इस गेंद को फील्ड किया गया, मगर फिर भी एक रन भागने का मौका स्मृति के पास। 75 भारत का स्कोर एक विकेट पर 10.2 ओवर के बाद 7.26 का औसत इस समय। रनों की रफ्तार को अब तेज करना होगा अगर ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा लक्ष्य देना है और जेमाइमा इसी मानसिकता से आई हुई लगती हैं। आते ही उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर दिए हैं, आक्रमण करना शुरू कर दिया है और देखना है कि इस ओवर में सदरलैंड की तेज गति की गेंदबाजी के आगे किस तरह से आक्रमण करेंगी, ये देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। सदरलैंड की ये गेंद ऑफ स्टंप के लेग स्टंप के बाहर फ्लिक करने का प्रयास, मगर गेंद से काफी दूर जिसकी वजह से वाइड बॉल का इशारा, एक रन भारत के खाते में। 76 भारत का स्कोर 10.2 ओवर के बाद। जेमाइमा काफी समझदार बल्लेबाज हैं, गेंद खेल के नब्ज को वो समझती हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी इनिंग्स को बनाती हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप में ज्यादा सफल अब तक नहीं रही हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फ्लिक किया स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागने का मौका, एक रन जेमाइमा और भारत के खाते में। 77 हुआ भारत का स्कोर। जेमाइमा और ब्रीक्स T20 मुकाबलों में 130 मैचेस अंतरराष्ट्रीय मैचेस खेल चुकी हैं, 117 पारियां 2790 रन 118.92 के स्ट्राइक रेट से और अपने करियर में 16 अर्धशतक लगा चुकी हैं। ये बताता है कि कितना अनुभव है उनके पास। स्लो फेंकी हुई गेंद और चकमा खा गई स्मृति मंधाना, बीट हो गई, ड्राइव करना चाहती थी और ये एक और डॉट बॉल, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। सदरलैंड चतुराई से गेंदबाजी करती हैं, अपनी गेंदों में धीमी गति की गेंद भी फेंकती हैं जो परेशान करती है बल्लेबाज को और इस बार परेशानी में दिखाई दी स्मृति मंधाना। अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति को। इस ओवर की पांचवी गेंद सदरलैंड की। इस बार ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया मिड ऑफ क्षेत्र पर, गैप मिला स्मृति को, सीमा रेखा पार कर गई गेंद, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: 7 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर से, एक वाइड बॉल से, 2 सिंगल्स और एक शानदार स्मृति के चौके से। सीधे बल्ले से खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया था सदरलैंड की इस गेंद को, हालांकि इस गेंद को भी धीमी गति से फेंका गया था सदरलैंड की तरफ से, मगर इसे समझा, अच्छी तरह से पढ़ा और सीधे बल्ले से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ड्राइव किया। शानदार बल्लेबाजी। 36 पर स्मृति 34 गेंदों का सामना करने के बाद 81 भारत का स्कोर। रनों की रफ्तार को तेज करना होगा, आक्रमण करना होगा ऑस्ट्रेलिया की सटीक अनुशासित और प्रभावशाली गेंदबाजी पर, जो कि काफी मुश्किल काम है। सदरलैंड की यह गेंद एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई मिडल स्टंप पर, जिसे

0: playing in Jemima's mind that she was, she could have gone for a hit in this ball, but she actually checked the stroke, and it's after 11.5 overs, India 84 for 2. So this over, a wicket fell, and just a single which Smriti took at the very first. So they would need a boundary, as they have been picking up generally. So what it's interesting to see what Jemima does this time. She actually reaches the ball, pushes it down along the ground to mid-wicket region, and has a time to switch the guard. So 12 overs gone, 85 for 2 India.
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: आठ ओवर्स का खेल बाकी, भारतीय पारी का 85 भारत ने बनाए हैं 12 ओवर्स के बाद, और आठ ओवर्स में 10 की औसत से अगर 80 रन बनते हैं तो 165 रन का लक्ष्य दे पाएगा। देखना यह है कि आक्रमण भारत का किस तरह से रहेगा। हैमिल्टन को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, स्क्वायर ड्राइव, कप्तान हरमनप्रीत का डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन भागने का मौका। 86 हुआ भारत का स्कोर। अभी अभी स्मृति मंधाना आउट हुई जब भारत का स्कोर 83 था, और हमारे स्टेटिस्टिशियन जतिन सूद हमें बता रहे हैं कि स्मृति ये चौथी बार है कि अपने 172 T20 मुकाबलों में रन आउट हुई है। 172 पारियों में वो ये चौथी बार रन आउट हुई है। ज्यादा रन आउट नहीं होती है अगर आज गलती कर बैठी। हैमिल्टन ओवर द विकेट, बाएं हाथ की धीमी गति से फेंकी हुई गेंद हवा में, मगर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। मिडॉन पर इस गेंद को खेला गया था जमाइमा की तरफ से, और एक रन भागने का मौका। इस ओवर में दो गेंदों में दो रन, 87 भारत का स्कोर, दो विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार को तेज करना होगा इस मैदान पर। विकेट पूरी तरह से बल्लेबाजों को मदद देने वाला, ज्यादा गति या उछाल या टिप्पा खाने के बाद मुड़ती हुई गेंदें दिखाई नहीं दी है। हैमिल्टन की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहती थी, बीट हुई डॉट गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 87 दो विकेट पर भारत। हरमनप्रीत जो कि इस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा।
5: दिस इज दिल्ली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू द इंग्लिश वर्जन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीज मन की बात, ब्रॉडकास्ट अर्लियर दिस मॉर्निंग एट 11 ऑन द नेशनल नेटवर्क ऑफ आकाशवाणी।
6: My dear countrymen, Namaskar. It gives me immense joy to connect with all of you once again through Mann Ki Baat. Half of the year 2026 is drawing to a close. Over these 6 months, we've discussed numerous achievements of our countrymen in Mann Ki Baat. In June as well, the nation has attained certain achievements that fill every citizen with pride. These successes are linked to the country's security and self-reliance. Recently, I had the opportunity to attend a Navy-related event in Kolkata. There, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrae were inducted into the Indian Navy's fleet. Everything from the design to the manufacturing of these ships is indigenous. Friends, the country also achieved a major success in the aviation sector in the month of June itself. The C-295 aircraft is made in India. The C-295 aircraft has completed its maiden flight, and 40 such aircrafts are being manufactured right here in India. This is providing new momentum to the MSME and aerospace sectors.

0: I congratulate all the sisters of Beara and the associates involved in this initiative. My dear fellow citizens, many people have written to me suggesting that I speak about a special topic. This topic relates to Ganesh Utsav. Although there is still quite some time left for Ganesh Utsav, people have urged that this subject be discussed right now. In fact, the work of crafting Ganesh idols begins well in advance. Idol makers and those involved in the idol trade become active right now. Therefore, I urge all of you, please make an effort to ensure that the idol of Ganpati Bappa installed in your home, society or neighborhood is made from the soil of our own country and crafted by the hands of our own potters and local artisans. I also urge those who make Ganesh idols to prioritize clay idols, and I ask buyers to check what the idol is made of and which country it was produced in. Do not buy idols made of plaster of Paris at all. Friends, clay idols dissolve naturally in water after the worship rituals conclude. This helps protect our rivers, ponds and the environment. It allows us to uphold our faith while also fulfilling our responsibility towards nature. When we purchase idols from local artisans, we strengthen the resolve of being vocal for local. I am confident that during this Ganesh Utsav, and indeed during every such festival, we'll give serious thought to these matters and take steps in the national interest. Friends, the greatest strength of our country lies in her people. The various efforts, big and small, taking place across the country, teach us a great deal. These endeavors demonstrate that when there is determination and the support of society, significant change can be achieved. Do keep writing to me about such efforts happening in your vicinity. Continue sharing your thoughts and suggestions. A small initiative in your area could well become an inspiration for the entire nation. We shall meet again next month to discuss new endeavors undertaken by our countrymen. Until then, take care of yourselves and your families. And yes, water conservation is a must. We must save every single drop of rainwater. We cannot let the momentum of the Catch the Rain campaign slacken in the slightest. So, I urge you specially, let us come together to save every drop of rain. Thank you very much. Namaskar.
1: You are listening to the English version of Mann Ki Baat by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, broadcast earlier this morning at 11 on the national network of Akashvani.
2: 134 2 wicket par 12 gende baki bhartiya pari ki Sutherland apne naye over ki shuruaat karte hain. Over the wicket ye gend isko shuffle karke fine leg kshetra par khela. Fielder wahan par maujood hain. जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा एक रन मिलेगा. जेमाइमा रोड्रिग्स को 135 हुआ भारत का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर. 27 पर हैं जेमाइमा और 33 पर बल्लेबाजी कर रही हैं हरमनप्रीत. सदरलैंड जिन्होंने इस मुकाबले में 3.1 ओवर्स में 23 रन दिए हैं और सफलता हालांकि उन्हें नहीं मिली थी. इस ओवर की दूसरी गेंद हरमनप्रीत के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ पुल कर दिया इसे स्क्वायर लेग क्षेत्र पर. फील्डर मौजूद नहीं है. चार रन मिलेंगे.
3: ये लगा आभा का चौका.
2: कमजोर गेंद जिसका पूरा फायदा उठाया हरमनप्रीत ने. लेग स्टंप पर यह शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जिसे पुल कर दिया और डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद सीमा रेखा पार कर गई चार रन के लिए. 139 भारत का स्कोर दो विकेट पर 18.2 ओवर के बाद. क्या ये ओवर बड़ा होगा भारत के लिए. रन आएंगे बाउंड्रीज लगा पाएंगी हरमनप्रीत जो कि 37 पर है 22 गेंदों का सामना करने के बाद. दो गेंदों में 5 रन अब तक आ चुके हैं. सदरलैंड एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई गेंद इसे स्लॉग स्वीप किया मिड विकेट क्षेत्र पर. फील्डर मौजूद है मगर गेंद उनके आगे गिर गई काफी देर हवा में रही. एक रन मिलेगा हरमनप्रीत को. 6 रन 3 गेंदों में 18.3 ओवर के बाद. 140 भारत का स्कोर. चतुराई से गेंदबाजी करती हुई सदरलैंड। ये देखते हुए कि हरमनप्रीत आक्रमण करेंगी, चौका लगा चुकी हैं वो, धीमी गति से गेंद को फेंका गया जिसकी वजह से मिस टाइम हुआ और बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा पाए हरमनप्रीत। तीन गेंदों में 6 रन, 140 पर 2 भारत 18.3 ओवर के बाद। सदरलैंड की ओवर द विकेट गेंद एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई, ड्राइव किया वापस गेंदबाज की तरफ, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया सदरलैंड द्वारा। हालांकि प्रहार काफी तेज था मगर फील्ड करने में सफल रही और डॉट गेंद, 4 गेंदों में मात्र 6 रन आते हुए 140 2 विकेट पर भारत का स्कोर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे जो सफल गेंदबाज हैं वो मोलिनो ही रही हैं, 1 रन आउट स्मृति हुई है और 1 सफलता मोलिनो को मिली है। इस बीच धीमी गति से फेंकी हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया, डीप स्क्वायर लेग पर कैच छिटक गया और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए।
3: ये लगा आभा का छक्का,
2: डीप स्क्वायर लेग पर इसे पुल किया था इस धीमी गति की गेंद को जेमाइमा रोड्रिग्स ने, डीप स्क्वायर लेग पर बिल्कुल हाथों में ये कैच था उनके और छिटक कर गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए। 6 रन भारत के खाते में 146 2 विकेट पर भारत 18.5 ओवर के बाद। इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद सदरलैंड की, गुडलैंड गेंद कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया सीधा डीप कवर्स पर खड़े फील्डर के हाथ में, एक बार फिर से कैच छिटक गया और 1 रन भागने का मौका जमाइमा के लिए। किस्मत अच्छी है इस बार जमाइमा की, 19 ओवर्स के बाद 147 ऑस्ट्रेलिया भारत 2 विकेट के नुकसान पर, 7.74 का औसत है इस समय पारी का भारत के।
4: Brindh ji, as it's been said in English, luck favors the bravo, and that's what is happening with Jemima. She has been brave today, she has been very skillful today, and she's been managed to score 34 of those 26 deliveries that she has faced with one, with 28 deliveries that she has faced with just one boundary and 1 6, and that takes India's total to 147 for 2 in 19 overs. 13 came off of that last over with a 6 and a 4 and 2 catch dropped in that over, so that finishes Annabelle's 4 overs 36 runs without wicket. And Sophie would bowl the last over of the match, 3 overs 23 runs so far she has given, she has taken a wicket, the only bowler who has taken, and this time she will bowl to Jemaima Rodrigues who has taken single, but there's a fall of a wicket in between, and then or I think she has retired her. We need to see what has happened in between. Maybe she has changed, she has retired her. So 19 overs gone, 147 for 3. Jemaima goes out and in comes Richa Ghosh. She knows that Indian management knows that they need to maximize the 6 balls as much as they can score. So Harmanpreet is a non-striker end of 38 runs of 23 deliveries, and Jemaima walks herself out of the to the pavilion, and in comes Richa Ghosh this time, and she goes it from ball number 1 and over. She took the aerial route. By the time ball runs to Ashley Gardner, she has a time to take for 1. So 148 for 3. Last 5 balls of this over, 7.72 runs. Last 13 runs came in the last over. That actually has prompted Indian scoring rate to 7.72 runs per over. And there's a lot happening in the middle with Jemaima telling what's happening with the ball. Ball is not coming nicely onto the bat. So they think they have enough on the board. But with Australians, you push the envelope as much as you can. This time Harmanpreet dances down the wicket and lofts it over for 6.
3: ये लगा आभा का छक्का,
4: and that 6 brings India's 150. India are now 154 for 3. Harmanpreet actually sends the ball, a shorter delivery, reaches the ball and lofts it over the bowler's head for a mighty one of the huge sixes of this match, and that took India total to 153. Harmanpreet on 44. 24 deliveries she has paid. Minilo from nursery, and this time to Harmanpreet. Again, lofts it down. We need to see, has it got enough elevation? And it does. One more 6.
3: Ye laga, abha ka chakka.
4: That brings 50 for Harmanpreet. This is the 50 number 6 for her. Two sixes back to back. And Harmanpreet actually playing the skipper innings. That brings a 50 in just 25 deliveries that she has faced. And as we were guessing that anything around 160, Virenderji would be a good total. And last two overs, Indians were able to switch the gear with Harmanpreet leading that with 160 for 3 and still 4 more deliveries.

0: to go in this over.
1: कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का बल्ले का फॉलो थ्रू हरमनप्रीत का, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, कवर्स के ऊपर से खेला और कैच छिटक गया, 6 रन भारत के खाते में।
2: ये लगा आभा का छक्का।
0: 3 sixes and 3 deliveries and Indians won't mind that catch would have been taken, that's okay, but they need to maximize. 166 now, 3 balls, 18 runs has cost to do a bowler who's been so economical throughout this match, but Harmanpreet is now changing the whole scheme of things and match tilting. You can see from the face of the Australian skipper, India 19.4 overs, 166 for 3, and Harmanpreet is now 56 in 26 deliveries with 6 fours and 3 sixes. What she can do, 2 more deliveries to go. She dances out again, plays it, and but this time she actually lofts the ball straight into Ellis Perry and she makes no mistake in taking the catch, and that brings to downfall of Harmanpreet. But she knows, India knows, the dressing room knows and the fans knows that she has done her job. Binendra ji,
1: कमाल की पारी, कमाल की बल्लेबाजी उस समय में जबकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे भारत के ऊपर, उस समय में प्रहार करना, बड़े शॉट्स खेलना जो कि मुश्किल लग रहा था, हरमनप्रीत ने इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की है और शानदार पारी खेलकर वापस आती हुई 166 भारत 4 विकेट पर 19.5 ओवर के बाद 56 रन की ये पारी 27 गेंदों में 6 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से।
0: एंड दिस quick change in gears by Harmanpreet actually build this partnership for 19 runs and 6 deliveries that they have faced, and Yashtika will face the last ball of this match. 19.4, 5 overs gone, 166 for 4, and Harmanpreet actually, that was expected. She hasn't had a great tournament so far in this World Cup. A 50 was expected, and law of averages caught up, as you would say, and then she scored a 50 in a very, very important game for India. Yashtika Bhatia comes in. She will face the last ball of Sophie Minilu, who's been very, very critical. 4 overs, 46 runs she has given. What she does, we need to see. Deepti Sharma comes in and actually grants this ball down to the left side, and this ball goes for the boundary. So a boundary here, 170 for 4, India ended the inning in 20 overs. Virendra ji, what a score it is.
1: Achha lakshya hai Bharat ke liye. Aur ek...
2: Ye laga Abha ka chauka.
1: Ye over Bharat ke liye shandar raha. Aur 3 chakke, 1 chauka, 170 run 20 over ke baad. और ये देखना होगा कि चौका हुआ है कि नहीं, अंपायर इस बात का निर्णय करेंगे। 19.5 ओवर में 166 रन भारत के बने हैं और शायद इसका निर्णय अभी होना है कि आखिरी गेंद पर जो कि दीप्ति शर्मा ने खेला था उस पर 4 रन लगे हैं कि नहीं। शानदार पारी हरमनप्रीत द्वारा, आरंभक बल्लेबाजी अच्छी रही भारत की तरफ से, पावर प्ले में जिस तरह से स्मृति और शेफाली वर्मा ने बल्लेबाजी की, 66 रन की पहली विकेट की साझेदारी थी जिसकी वजह से भारत की पारी मजबूत हुई, मगर उसके बाद से जिस तरह की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की, जिस अनुशासन से गेंदबाजी की गई, विकेट के बीचों बीच सटीक गेंदबाजी और तेज गति की गेंदबाजी में जो गति परिवर्तन किया गया उसको देखते हुए बांध कर रखने में काफी हद तक कामयाब रहे थे। तो आखिरी गेंद का ये निर्णय कि वो 4 रन ही थे, 170 भारत का स्कोर, 171 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने। दूसरी पारी जब शुरू होगी उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक सुनिए हमारा कार्यक्रम फ्री हिट 20।
3: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है।
3: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की, सबके मन की।
5: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
3: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।

0: Another do or die game against Australia. Another Harmanpreet half century as India snatched momentum in the final over, slamming 23 to take their total to 170, having retired out Jemima ahead of the over. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha and joining me in studio is Anand Srivastav.
1: हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस हैं, बीसीसीआई के कोच रविंदर जी हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रही ख्याति गुलानी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: हरमनप्रीत कौर की शानदार अर्धशतकीय पारी, स्मृति मंदना, शेफाली वर्मा और जमीमा का स्ट्रांग कॉन्ट्रीब्यूशन, 170/4 भारत का स्कोर है। ख्याति, आपसे शुरू करेंगे, टोटल को कैसे देखती हैं जब 10 ओवर के बाद हम 74 रन बना चुके थे?
3: डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्कोर। आई थिंक नाउ बॉलर्स विल गेट कुशन एंड नाउ इट्स नाउ देयर पार्ट टू शोकेस देयर स्किल्स। नाउ आई गेस दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग इनिशियली दैट 170 विल बी अ गुड स्कोर एंड इट्स स्पॉट ऑन।
0: Soumitro, it was an innings of three halves where India got off to a flyer in the power play overs, slow down in the middle overs, and then came the final over.
2: Very unusual because normally you will see the middle overs, you will score better. But nevertheless, 170 is a very good score. We were talking about 180, which was par, which we thought was par for the course. But a 170 in this particular Lord's wicket, jahan pe ball was coming a little bit slower. And the Australians, you would have noticed ki jis tarah se line and length, and they were using the pace of the ball, they were forcing the batsmen to generate the pace to score the runs. Aapko aur ek cheez shrota ko batana chahiye ki ye Lord's ground mein ek slope hai. Once you beat the infield, then, but another thing which the Australians will not be happy is the way they drop the catches.
1: 56 रन हरमन ने बनाए, 34 जमीमा के नाम, शेफाली के नाम 34 और स्मृति ने भी 38 रन बनाए। रविंदर, आखिर के दो ओवर में 36 रन भारत की पारी को मोमेंटम प्रदान कर गया, लेकिन उससे पहले की अगर थोड़ी चर्चा करें, रन अ बॉल खेलती नजर आई स्मृति, रन आउट महंगा पड़ा?
4: डेफिनेटली रन और वो जमीमा, खासकर जमीमा से उम्मीद थी थोड़ा सा फास्ट खेलती वो, ये तो लास्ट में हरमनप्रीत ने कवर कर ली दो ओवर में 36 रन बनाकर। अगर ये नहीं होता तो आप 150 के आसपास स्ट्रगल कर रहे होते। वहां पे आपको देखना, जब विकेट्स आपके हाथ में है, आप रन ए बॉल करी, वहां पे आपको चांस लेना चाहिए था। रन ए बॉल तो एक नॉर्मल एवरेज गेम, इस गेम में अगर आपको जो आपका एक डू ओर डाई मैच है उसमें आपको पता है कि 180 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, और रन ए बॉल आप खेल रही है उस समय और विकेट नॉन ऑफ विकेट हाथ में है, वहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लैग कर गए। लेकिन हरमनप्रीत ने जो लास्ट ओवर में 23 रन लिए वो एक काफी लास्ट में मोमेंटम शिफ्ट हो गया।
0: ख्याति, इंडिया वुड हैव बीन मलिंग द रिटायर्ड आउट डिसीजन अर्लियर एज वेल।
3: Yeah, they have been taking this decision. I don't know what is the thought behind this. Maybe they must be thinking that when Richa will come, she can, you know, dominate the bowlers. But I seriously think that that was not required at that moment.
1: सौमित्रो, अगर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की थोड़ी चर्चा करें, लूसी हैमिल्टन के 3 ओवर में 17 रन, एलिस पेरी के 1 ओवर में 7 रन, जॉर्जिया वेरहम के 3 ओवर में 16 रन, काफी किफायती गेंदबाजी, लेकिन किसी का कोटा पूरा नहीं कर पाया कप्तान ने।
2: यस, इनफैक्ट आप देखोगे पहला 10-11 ओवर में दे हैड यूज 6 बॉलर्स, तो नेचुरली सोफी वाज ट्राइंग टू रोटेट द बॉलर्स, क्योंकि एक एक ओवर एलिस पेरी जैसे सीनियर बॉलर को एक एक बॉल देना। बट द पॉइंट इज यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट कि जिस तरह से इंडियन बैट्समैन We're using the conditions and playing the strokes. Khas karke, it was very clear ki, you know, Smriti Mandhana, jis tarah ka classical batsman hai, wo apna hips over the hips khelenge, on the slides khelenge, push karenge, flicks marenge, aur exactly

0: शेफाली वुड यूज आवर पावर एंड शी वॉज क्वाइट सक्सेसफुल इन एंड आउट शॉट्स खेल रहा था और रन भी आ रहा था वैसे वैसे इन एंड आउट इन साइड आउट शॉट खेल से आउट भी हुआ है मगर दे हैड गॉट द रन इनिशियल जो वी वर सेइंग कि विकेट पकड़ के रखो और उसकी वजह से कोच साहब ने बोल रहा था कि विकेट पकड़ के रखो और फिर आप एक्सेलरेट करो और शिफ्ट करोगे और उसी ने वैसे ही किया आपने जैसे बोला कि मिडिल ओवर्स में हाँ थोड़ा सा हमारा एक्सेलरेशन कम हो गया था बट लेट हरमनप्रीत 207 स्ट्राइक रेट वी वर टॉकिंग अबाउट हरमनप्रीत स्ट्राइक रेट एंड टुडे शी हैज प्रूव्ड अगेन बस सिर्फ एक ही चीज है जहाँ पे उसने 50 बनाया इंडिया हार में हारने ऑलवेज इन द लूजिंग साइड होपफुली द इक्वेशन विल चेंज टुडे
1: यू हाइलाइटेड दैट इन द प्री शो एज वेल नाउ फ्रॉम वन कैप्टन टू द अदर सोफी मिलिनो इन फैक्ट इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ इन द 10th ओवर दिस इज द 18th टाइम व्हेन शी हैज गॉटन अ विकेट इन अ फर्स्ट ओवर इटसेल्फ लेकिन आखिरी का जो ओवर रहा रविंदर काफी महंगी रही वो 23 रन दिए
2: देखिए ये स्पिनर्स के लिए नॉर्मली आजकल आखिरी ओवर कराया नहीं जाता नॉर्मली मीडियम पेसर्स को रिकमेंड किया जाता है और प्रेफर किया जाता है मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने आखिरी ओवर क्यों किया क्योंकि लास्ट में वो अटैक करेंगे आपके पास उनको विकेट्स हैं लेकिन स्ट्रेटजी पहले यही थी कि आपके पास विकेट्स हाथ में होनी चाहिए आप उसको बढ़ा सकते हैं बिल्कुल जो प्लान था ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर दिया था वो दो चार रन के बीच में जो दो ओवर जमीमा के साथ रहे उन अगर ओवर को छोड़ दिया जाए अगर वो ढंग से करते तो 180 प्लस होता लेकिन लास्ट में जो आपने सही बोला स्पिनर्स को मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए था
3: ख्याति अब बात थोड़ी भारतीय गेंदबाजी पर कर लेते हैं श्री चरणी इस विश्व कप में भारत की सबसे सफल गेंदबाज हैं चार मुकाबलों में 12 विकेट 5.31 की इकोनॉमी से लिए हैं और 19 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है दीप्ति शर्मा ने पहले मैच में 5 विकेट लिए थे इन दोनों पर बड़ा दारोमदार होगा
4: डेफिनेटली अगर आप देखेंगे श्री चरणी जो है वो फर्स्ट ओवर भी डालती है मिडिल ओवर्स में भी आके वो विकेट्स लेती है और डेथ ओवर भी डालती है तो आई थिंक उनको उनसे स्टार्ट कर सकते हैं और इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट बॉलर वही दिख रही है बिकॉज अभी हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं 12 विकेट्स ऑलरेडी ले चुकी है इस टूर्नामेंट में तो आई थिंक उनसे स्टार्ट करेंगे तो बहुत इनको बेनिफिट मिलेगा देन इन द मिडिल ओवर्स दे कैन यूज दीप्ति शर्मा बिकॉज शी इज नोन फॉर टेकिंग विकेट्स इन द मिडिल ओवर and breaking the partnerships.
1: Soumitra, coming back to Shri Charani, the way she varies her pace, the way she attacks these stumps.
0: आपने देखा होगा कि after the 13th over, जहाँ पे
5: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की कहा भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है
6: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी
5: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक

0: पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान

0: दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honoured with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
3: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international

0: सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: 6 ओवर्स का खेल हो चुका है, टाइम आउट ड्रिंक्स का समय समय 49 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं। 171 रन का लक्ष्य है, ऑस्ट्रेलिया को 122 रन चाहिए 84 गेंदों में। खेल इस समय अश्विन पूरी तरह से संतुलित है अगर देखा जाए तो। रेणुका सिंह ने एक सफलता प्राप्त जरूर की है मगर अपनी गेंदों में वो पहले ओवर में ज्यादा दिशा को काबू में नहीं रख पाए थे, अनुशासित नहीं हो पाए थे जिसकी वजह से रन बनाने का मौका मिला। और क्रांति गौड़ जिनके पास गति है और हवा में ज्यादा मूवमेंट नहीं है इस वजह से आक्रमण करने पर और स्ट्रोक लगाने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, जिसकी वजह से उनके एक ओवर में ही 12 रन बटोर लिए थे। और शेफाली वर्मा जिनका पहला ओवर काफी अच्छा रहा, 1 रन दिया था उन्होंने मगर दूसरे ओवर में उनकी फ्लाइट को उनकी वेरिएशंस को भांपते हुए अगले ओवर में फिर से प्रहार करने पर सफल रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। तो काफी संतुलित है खेल इस समय, भारत को विकेट्स चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए साझेदारी।
2: Precisely, but what India has managed to do with those two overs, where in just single runs were scored, they were able to put breaks on Australians. Otherwise, they were scoring very freely. So look at 6 overs, 49. The required run rate is still around over 8 runs per over, which was earlier 8.71 required. So they need to be consistent. And we know in a game of T20 where there's not much of margin for errors, if Indians stick to the line and length, they should be able to build pressure, because once you get a wicket, then I think there'll be more pressure in Australians, and that's what would be discussed in the huddle during the drinks break. There'll be some messages passed on by the team management to see what can be done. And Birinderji, mind you, we haven't used Sri Charni so far. She's been the most successful spinner in this World Cup, picking up 12 already in the matches, 4 matches she played, and she can be very lethal against Australians.
1: और यहां से खेल काफी दिलचस्प होने वाला है अश्विन, क्योंकि पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं, भारतीय गेंदबाजों के पास सुरक्षा के लिए फील्डर्स होंगे, बाउंड्री पर 4 फील्डर्स होंगे जिसकी वजह से वो ज्यादा खुलकर ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने के बारे में सोचेंगे और इन परिस्थितियों में दीप्ति शर्मा और श्री चरनी किस तरह की गेंदबाजी करती हैं और किस तरह की अनुशासित और प्रभावशाली गेंदबाजी रहती है, ये काफी ज्यादा तय करेगा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर कि वो आक्रमण ना कर सके, ज्यादा रन ना बटोर सके और दबाव वापस उनके ऊपर आ सके।
2: And then we have Radha Yadav also with the spin attack to add to it. So India has quite a few bowling options. And here comes Sri Charni, Birinder ji with her next over.
1: Sri Charni अपने ओवर की पहली गेंद फेंकती हुई फ्लाइटेड स्टंप्स के बीचों बीच कदमों का इस्तेमाल करके इसे ड्राइव किया था बल्लेबाज लिचफील्ड ने और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 2 रन भागने का मौका। 50 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। श्री चरनी जिस तरह की अश्विन ने बताया कि सबसे सफल गेंदबाज हैं भारत की इस वर्ल्ड कप में, 12 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं 5.31 के इकोनॉमी से। ओवर की अगली गेंद रिवर्स स्वीप का प्रयास, हवा में गेंद जिसे लपकना चाहती थी ऋचा घोष मगर गेंद उनसे काफी दूर, लगता नहीं है कि बैट से लगी हो, पैड से टकराई थी ये गेंद, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी श्री चरनी द्वारा, इस गेंद में कम फ्लाइट की थी उन्होंने जिसकी वजह से अपने रिवर्स स्वीप को ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाई थी लिचफील्ड। ओवर द विकेट श्री चरनी की यह गेंद से उठा दिया कवर्स के ऊपर से, पीछे फील्डर मौजूद हैं, लॉन्ग ऑफ से भागी क्रांति गौड़, जब तक गेंद को फील्ड करेंगी एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से 2 रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 52 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर। इस ओवर की 3 गेंदों में आक्रमण करने का प्रयास किया है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्लाइट को अच्छे से भांपा जा रहा है, अच्छी क्रिकेट लॉर्ड्स के इस मैदान में। 52 पर 1 ऑस्ट्रेलिया 6.3 ओवर्स के बाद। ओवर द विकेट श्री चरनी की यह 4थी गेंद स्टंप्स के बीचों बीच रिवर्स स्वीप का प्रयास, पैड से टकराई गेंद, LBW की अपील मगर गेंद लेग स्टंप से बाहर है, ये देखते हुए अंपायर का निर्णय नॉट आउट। हरमनप्रीत ने हालांकि पूछा गेंदबाज से कि रिव्यू लिया जाए कि नहीं, श्री चरनी ने नाम में सिर हिलाया क्योंकि वो जानती हैं कि गेंद लेग स्टंप से बाहर थी। लेग बाय 1 अतिरिक्त रन ऑस्ट्रेलिया के खाते में, 53 ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट पर 6.4 ओवर्स के बाद। 171 रन का लक्ष्य, भारत का यह मुकाबला जीतना जरूरी अगर सेमीफाइनल में जाना है तो, और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही अपने पूल में सबसे पहले नंबर पर 8 अंकों के साथ। वेथ मुनी 18 पर सामना करेंगी श्री चरनी का। इस ओवर की 5वीं गेंद

0: गुड लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, ऑन ड्राइव मिड विकेट क्षेत्र पर, एक रन फिर से भागने का मौका, 54 एक विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के 50 रन में 50 रन की साझेदारी लिचफील्ड और मुनी में 39 गेंदों में। श्री चटनी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर उठा दिया इसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, देखना है कहां तक जाती है। यह दूसरी सफलता भारत के लिए, लिचफील्ड के रूप में बड़ा शॉट खेलना चाहती थी, ठीक से बल्ले पर नहीं आई गेंद और स्मृति ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में। जोश आता हुआ भारत के खेमे में, उत्साह आता हुआ इस सफलता के साथ लिचफील्ड, जो कि काफी आक्रामक खेल रही थी, 24 पर 25 गेंदों का सामना करने के बाद कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकली थी और ऊंचा खेली। स्मृति ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में और इस तरह से अश्विन, ये भारत को दूसरी सफलता।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Just when the partnership was building between the two, they scored 50 of those 42 deliveries. India struck the chord. And who else than Sri Channi picking that 13th wicket of the tournament. She's the leading wicket taker. And as we discussed, Birendraji, that Indians, with the field expansion, India would give them opportunity to go over the rope. And that's what they did. And eventually found safe hand of Smriti Mandhana to lose the second wicket. So that brings smile to Indian players all over. And the fans who are supporting the women in blue from all over the globe. So 54 for 2, 7 overs gone, and India back into the game with that wicket. There was a partnership building in, and two danger men, Feb Lichfield and Beth Mooney, both were very, very dangerous against India historically. They love to play great games, good shots in against India. Though they have a mighty lineup, but this definitely adds in pressure. Deepti Sharma, another spin option, comes in, dances down the wicket, Beth Mooney this time to Deepti Sharma, but plays it back to the bowler, and she was quick enough to throw it back and give that, we are not going to give you an inch. You need to work for every run, every single you need to buy from us or rent from us. That's what the language of Indian today has been on the field. 7 overs, 54 for 2. A great catch there, especially by the team who's under pressure for catching. They have lost so many catches, but this time Smriti Mandhana didn't make any mistake. Deepti Sharma on the middle stump. A shorter delivery, but Beth Mooney again dances down the wicket, guides the ball to the deep extra cover region for singles. So that single adds to the total of Australians with 55 for 2. So two balls, one dot, one single of Deepti Sharma. 7.2 overs, 55 for 2. And that was a great catch by Smriti, wherein she has to run 11 meters. But she knew that this time they are not going to drop any catch. They are too determined, and that was shown after she took the catch. She threw the ball onto the ground saying that we are good enough to held that. This time again in the air, is there someone in the deep? We need to see it. No, one bounce, a little wider of Kranti God, and that resulted in a four. So Deepti Sharma consisting a boundary this time, 59 for 2.
5: ये लगा आभा का चौका।
4: So with that boundary, it was in the air, but there's a lot of running for Kranti Gore to do. Definitely this was going to be out of her reach. Ellis Perry with the boundary, very first ball, she made her intention very clear that she is not going to stop. And Australians, after 7.3 overs, 59 for 2, chasing 177. Ellis Perry again want to play with the fuller length. Deepti Sharma couldn't hold the ball in her follow through, but there's Radha Yadav in that V region. Radha Yadav and Shefali Verma protecting that V and trying to control. So Deepti, who has taken 5 wickets against the match against Pakistan, with the best bowling figures so far for in ICC tournament, best figures for anyone in the ICC tournament. Deepti Sharma, for the fifth time in this over, slog sweeps it. But there's Kranti God in the deep. Cuts it off. So 7.5 overs gone. 61 for 2. And if we look at most wickets in a single edition of Women's T20 World Cup, it's Emily Kerr of 15 wickets which she has taken in last World Cup. She has been the top wicket taker. But Sri Charney, this time fuller end delivery on the onside, drives it down to Nandini Sharma, I think, is on the field. We need to see who she's replacing, and that resulted in a single. So 8 overs gone, 62 for 2, Australia.
0: 8 ओवर का खेल अब तक हो चुका है और खेल में रोमांच पूरी तरह से है, जिस तरह से भारत ने दूसरी सफलता प्राप्त कर ली जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आक्रमण कर रहे थे, और उसके बाद श्री चरनी का वो सफलता प्राप्त करना, उसने वाकई एक जोश और एक उत्साह भरा है भारतीय खेमे में, और अनुशासित गेंदबाजी और प्रभावशाली गेंदबाजी उसके बाद से देखने को मिल रही है। 62 for 2 इस समय ऑस्ट्रेलिया 8 ओवर्स की समाप्ति के बाद। हालांकि रनों का जो औसत है ऑस्ट्रेलिया का वो ज्यादा बुरा नहीं है, 7.75 का लगातार रन बनाने का प्रयास ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज करते रहे हैं और इसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। मगर ये जो पड़ाव है खेल का, जिसमें श्री चरनी और दीप्ति शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं, देखना है कि इस स्पेल में कितनी सफलताएं वो प्राप्त करते हैं। एक आध सफलता अगर और मिलती है तो ये निश्चित ही दबाव डालेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। गुड लेंथ गेंद मिडिल स्टंप पर श्री चरनी की, राउंड द विकेट, जिसे सीधे बल्ले से ड्राइव किया पेरी ने, और लॉन्ग ऑन से जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन भागने का मौका। इस एक रन के साथ ऑस्ट्रेलिया 63 for 2 विकेट पर। मुनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 21 पर 18 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें दो शानदार चौके शामिल हैं। ये दो चौके पहले ओवर में ही उन्होंने लगाए थे क्रांति गॉड के विरुद्ध, मगर उसके बाद से सिंगल्स के साथ बल्लेबाजी कर रही है। श्री चरनी की ये गेंद फ्लाइटेड, जिसे कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, शफाली है वहां पर, और एक रन फिर भी भागने का मौका मिलेगा। पहली दो गेंदों में 2 रन श्री चरनी की। ये एक अच्छी बात है कि वो स्टंप्स के बीचों बीच गेंदबाजी करती है, बल्लेबाज को ज्यादा बाजू खोलने का मौका नहीं देती है, और गुड लेंथ पर उनका टिप्पा रहता है। अराउंड द विकेट ये गेंद, इस बार इस गेंद में फ्लाइट थी ओवर पिच, जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर पेरी ने, और गैप मिला और गेंद सीमा रेखा पार कर गई, 4 रन।
5: ये लगा आभा का चौका।
0: श्री चरनी जो कि सटीक अनुशासित गेंदबाजी कर रही थी, ये ओवर पिच गेंद बल्ले के बिल्कुल नीचे, जिसे खूबसूरत तरीके से पेरी ने कवर ड्राइव किया था कवर्स क्षेत्र में, और गैप भी मिला उन्हें, और 4 रन भी। 68 for 2 इस समय ऑस्ट्रेलिया 8.3 ओवर्स के बाद। श्री चरनी अराउंड द विकेट एक बार फिर से पेरी के लिए, इस बार अच्छी गेंद गुड लेंथ गेंद, पैड से टकराई LBW की अपील, मगर कोई प्रभाव नहीं इस अपील का अंपायर के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, इस बार गेंद घूमी नहीं, टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई, और इसे ड्राइव करना चाहती थी पेरी मगर पैड से टकराई। भाग्यशाली रही कि निर्णय उनके पक्ष में रहा। 8.4 ओवर के बाद 68 ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट पर। श्री चरनी अराउंड द विकेट एक बार फिर से गुड लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर इसे स्टीयर किया शॉर्ट थर्डमैन क्षेत्र पर, दीप्ति है वहां पर चुस्त और मुस्तैद, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी चौका लगने के बाद श्री चरनी द्वारा, अपनी गेंदों को गुड लेंथ पर डालती हुई और ऑफ स्टंप पर रखती हुई। अराउंड द विकेट एक बार फिर से इस ओवर की आखिरी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया गया मगर सीधा कवर्स क्षेत्र पर खड़े फील्डर के हाथ में। 9 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया 68 for 2 विकेट पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: So Sri Charney doing what she is known for best. She has just given 5 runs at an average of 2 overs, 2 overs, 10 runs and an important wicket of Phoebe Litchfield that she pick up. picked up in the last to last over. It's over number 9, which has gone by 68 for 2. Beth Mooney on 22 of 19 deliveries. Ellis Perry with 2 boundaries. Glorious boundaries, 11 of 8. This time in the air. Look, we need to see if there's anyone to catch it. And it does. This time, Radha Yadav, Butterfinger, hails it and she roars loudly with that wicket. So another wicket fell down in terms of Beth Mooney. 9.1 overs, 68 for 3. Beth Mooney gone, the danger lady who loves to score against India, and Deepthi Sharma, who's been the most successful bowler against Australia, picking a maximum wicket so far. Anyone from India, it's been Deepthi, and she manages to pick the wicket off Beth Mooney. So 68 for 3. This is 10th over in progress, mind you. And the run rate now climbing to 9.51 runs per over. That brings in more pressure to Australians. And Indians are completely bossing this game, Virender ji.
0: और अश्विन, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि खेल का जो ये पड़ाव है ये काफी दिलचस्प है. यही वो समय है जब भारत ज्यादा से ज्यादा दबाव बना सकता है, क्योंकि भारत के ये जो दो स्पिन गेंदबाज हैं श्री चरणी और दीप्ति शर्मा, इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. और उसी का ये परिणाम देखने को मिला कि फ्लाइटेड गेंद थी बेथ मूनी के लिए, फ्लाइट में बीट किया, इसे ड्राइव करना चाहती थी, गेंद से दूर रह गई और इसे लॉन्ग ऑन पर बड़े अच्छे तरीके से राधा ने इस कैच को पकड़ा और इस तरह से ये सफलता मिली भारत को. और ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट बेथ मूनी, जो कि जिम्मेदारी से बल्लेबाजी कर रही थी, वापस आ चुकी है.
4: And Deepthi Sharma, this time again, a full length delivery. They are trying to make batsman, the batter reach to the ball. And with that wicket, Deepthi Sharma became the highest international wicket taker in the women's history. With 356 wickets she has taken already. And she is the one now, she got with this wicket over Julian Goswami of India. 356 wickets she has taken. 2 dot balls, 1 wicket and 1 dot. This time again, Deepthi Sharma, quick delivery on the onside. They're looking for single. They should be pushing for 2. But so quick was Harmanpreet there. And with that, just resulted in a single. So new batter is Ashleigh Gardner, who's on strike. And Australia 70 for 3, 69 for 3 in 9.3 overs. This time Ellis Perry right on the top, she plays it, but there's someone with one bounce. Radha Yadav was looking for a catch. She knows that she could have taken that stride earlier, but then able to pick the ball on the first bounce, throws it quickly to the back to Deepthi Sharma, resulted in 1. There's 70 for 3, 9.4 overs gone. There's another 101 runs required in 10.2 overs. This time Ellis Perry on the back foot drives it down. Deepthi Sharma dives it but couldn't cut off the single, and batsman and the batter has time to cross for one more single. So Deepthi Sharma has been economical this over. She's just given 3 runs and picked up a very, very important wicket of dangerously looking Beth Mooney. So Indians are striking when there was a little bit of partnership getting built, and they're striking at the right moment. This time again, she follows the batsman. She was looking for off drive and moved on to the on side, but Deepthi Sharma quick to understand that. So 10 overs gone, 73 for 3 Australia.
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: 2 ओवर्स 12 रन देकर 1 सफलता, ये हैं दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी के आंकड़े. 2 ओवर्स में 10 रन देकर 1 सफलता, ये श्री चरणी की गेंदबाजी के आंकड़े हैं. ये दोनों स्पिन गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डालने में पूरी तरह से सफल रहे हैं. और देखना है कि ये कहानी कितनी लंबी चलती है, किस तरह की गेंदबाजी से और ज्यादा कितना दबाव बना पाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर. 72 है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर. 10 ओवर्स का खेल अब तक हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 60 गेंदों में 99 रन, और राधा यादव को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे ड्राइव किया था पॉइंट क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन भागने का मौका. अच्छी गेंद राधा यादव की, जिसमें फ्लाइट थी मगर शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप पर, और इसे हल्के हाथों से खेलकर एक रन पूरा कर लिया था पैरी ने. गार्डनर सामना करेंगी राधा यादव का. बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज राधा यादव, जिनका प्रयास ये रहता है कि गुड लेंथ गेंदबाजी ऑफ स्टंप पर की जाए, अराउंड द विकेट गेंदबाजी करती हुई तेज फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ, जिसे बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया मगर रन बनने की कोई संभावना नहीं। 91 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 106 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं राधा यादव।

0: विकेट गेंद। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था गार्डनर ने, सीधे बल्ले से ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, स्मृति है वहां पर जिन्होंने फील्ड करके वापस थ्रो किया। 74 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर के बाद 57 गेंदों में 97 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। रन रेट थोड़ा बढ़ता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ इस समय, जिस तरह का दबाव भारतीय गेंदबाजों ने बनाया है। राधा शर्मा की यह गेंद स्टंप्स के बीचों बीच फ्लाइटेड, जिसे कवर्स क्षेत्र पर खेला था पेरी ने, रन बनने की संभावना नहीं, ज्यादा टर्न देखने को नहीं मिल रहा है इस ओवर में। 2 रन आए हैं अभी 4 गेंदों में। अराउंड द विकेट राधा यादव की यह गेंद थोड़ी तेज फेंकी हुई, जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर, गेंद सीमा रेखा पार जा रही है, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इस गेंद को थोड़ा तेज फेंका था राधा यादव ने, मगर दिशा को और लंबाई को सही नहीं रख पाई, ऑफ स्टंप के बाहर, ओवर पिच, और ये दोनों कारण काफी थे पेरी के लिए एक मजबूत कवर ड्राइव खेलने के लिए और गैप में खेलने के लिए, जिसकी वजह से 4 रन मिले। राधा यादव की ये गेंद इस बार फ्लाइटेड ऑफ स्टंप पर, जिसे फिर से ड्राइव किया गया, डीप कवर्स पर है फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन भागने का मौका। 11 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया 79 3 विकेट पर।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: So Harmanpreet has already used 6 bowlers so far in this 11 overs of Australian innings, and it would be interesting to see where she gets in Kranti Gaur to bowl in a over or two, or she would completely leave her out till another wicket or so fell in. Shefali Verma replaces Deepti Sharma. Shefali's will be third over this time and bowling to Ellis Perry. This time she went on the back for a good length ball and she checks a stroke. Ball rolls down to Radha Yadav on mid on for just a single. With that single, Australia moves on to 80 for 3, and the required run rate now is more than 10 runs per over, 10.3 runs per over. But there's enough power in Australians' batting lineup to come, so they won't be too much thinking about it till the time they build in a partnership. Shefali Verma, a little slower delivery with 75 miles kilometer per hour. And this is 81 for 3 in 11.2 overs. This time with all the supporters, this 21,000 odd people cheering up for India and Australia together. There will be some supporters of South Africa as well in the field. This time cuts it down, and by the time there's a few yards of running for Renuka Singh to do. And the batter managed to take one more run. So 3 balls. Indians wouldn't mind a single coming off at this stage, because that builds in pressure on the next ball. 11.3 overs gone, 82 for 3. Another single resulted in that delivery. Gardner onto the back foot, drives it on the onside. By the time ball goes to deep mid-wicket region, or rather mid-wicket region, the player has time to shuffle their ends. 11.4 overs gone, 83 for 3. And the percentage of India winning is increasing with every time. This time there's a slash, there are two players chasing. Kranti Gaur beats the ball, jumps, and by the time that player has enough time to cross for 2 more runs. A direct throw from Kranti Gaur, but Ellis Perry was quite back in a crease. She is playing a little cameo. 23 runs of 17 deliveries that she has faced and got a couple of boundaries earlier. And she is a danger lady. We know what she can do. She's single-handedly won matches for Australia. She's one athlete who has played 2 professional games for Australia. She used to play soccer. She has played Soccer World Cup for Australia. She has played Cricket World Cup also for Australia. This time she was looking for a drive, dancing down the wicket, but Shefali checks in her arc of the delivery, slows it down, waited, and that gives time for Ellis Perry also to check her stroke. So end of over number 12 for Australia. They're just 3 wickets down.
0: 85 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, 8 ओवर्स का खेल बाकी, 48 गेंदों में 86 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, 10 से ऊपर की औसत है, और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, भारतीय ये सभी गेंदबाज ये समझ चुके हैं कि जितनी

0: तेज आप गेंद फेंकें उतने प्रहार से स्ट्रोक लगता है, इसलिए फ्लाइट करने की कोशिश की जा रही है स्पिन गेंदबाजी में। और यही देखा शेफाली की इन गेंदों में, ज्यादातर स्टंप्स के बीचों बीच फ्लाइट करने का प्रयास। राधा शर्मा अपने ओवर की पहली गेंद फेंकती हुई, ये फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से खेला गार्डनर ने, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, जिसने पूरी तरह से मौका दिया बाजू खोलने का गार्डनर को, और कदमों का इस्तेमाल करके बड़े अच्छे तरीके से इसे कवर्स के ऊपर से इस स्ट्रोक को खेला गार्डनर ने। 89/3 ऑस्ट्रेलिया। राधा यादव की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन, इस बार पुल कर दिया मिड विकेट क्षेत्र पर, गेंद हवाई रूट लेती हुई सीमा रेखा पार कर गई है, 6 रन।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: 2 कमजोर गेंदें और उस पर प्रहार लगाने से नहीं चुकी गार्डनर। पहली गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंप के बाहर, दूसरी शॉर्ट ऑफ लेंथ मिडल स्टंप पर, जिसे खूबसूरत तरीके से पुल किया 6 रन के लिए। दर्शनीय बल्लेबाजी गार्डनर द्वारा, 95 स्कोर होता हुआ ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट के नुकसान पर। 46 गेंदों में अब 76 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया। गार्डनर 9 गेंदों में 15 रन बना चुकी है, 1 छक्के और 1 चौके की मदद से। इस ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार राधा यादव अराउंड द विकेट गेंदबाजी करती हुई। इस बार ये गेंद जिसमें कम फ्लाइट, स्टंप के बीचों बीच वापस गेंदबाज की तरफ खेला, डॉट बॉल, रन बनने की संभावना नहीं। 10 गेंदों में 15 रन बना चुकी हैं गार्डनर। 95 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12.3 ओवर के बाद। 30,000 क्षमता है लॉर्ड्स स्टेडियम की, 27,000 दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आज पहुंचे हैं, जो कि रिकॉर्ड है ग्रुप स्टेज मैचेस में दर्शकों के आने का। इस बीच राधा यादव की ये फुल टॉस गेंद, जिसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर गार्डनर ने, और 1 रन भागने का मौका। 96 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर के बाद। राधा यादव की ये तेज फेंकी हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे कट किया पेरी ने, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 12.5 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया के 100 रन पूरे 3 विकेट के नुकसान पर। 43 गेंदों में अब 71 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। इस ओवर में रनों की रफ्तार बढ़ती हुई, और उसका कारण यह है कि राधा यादव ने कुछ कमजोर गेंदें फेंकी हैं, और हरमनप्रीत भी इससे नाखुश कि जिस तरह की गेंदबाजी राधा यादव कर रही है। इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर, और जब तक श्रीचरणी गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, पेरी के पास मौका 2 रन भागने का। 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया 102 3 विकेट के नुकसान पर।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: A much needed over for Australians when the required run rate was inching towards 11 runs per over. That over, Radha Yadav consisted 17 runs, 2 boundaries and a 6, which brings down to another 9.5 runs per over. This time Deepthi Sharma coming in with her 3rd over, and see what she can do. She's brought in to take the wicket here. Perry looking dangerous, so is Gardner. 13.1 overs gone, 103 for 3. Still 87 runs required of 49 deliveries. There's tension simmering all around. This is actually playing to a great game of one day. Display by both teams, not giving anything to each other. India so far has been dominating in those last 4-5 overs and in the power play. But then Australians are doing the Australian thing. They are clawing back to the game with 17 runs in that over. Deepthi Sharma again close to the umpire, makes it full toss, dances down the wicket. There's someone in the deep, cuts it down, Jemima Rodrigues, but enough time for both the players to take 2. So with that 2, now 39 deliveries to go, 65 runs required. 39 balls, 65 runs, 106 for 3. India needed a wicket at this stage. 38

0: runs of partnership between these two, Ellis Perry and Ashleigh Gardner. Ashleigh Gardner has been very clinical, 19 runs of 13 balls. Now she has taken her total 20 runs of 14 deliveries, 107 for 3, 13.4 overs. This match is going down to the wire. 64 required, 38 deliveries to go. 14th over in progress, 171 is the target, and currently Australia are sitting at 107 for 3. India though managed to pick wicket, but this partnership is looking dangerous in there. Let us see what happens. One bounce, two bounce, two rather, other fields it, throws it back to Jemima Rodrigues. Batsman or the batter has time to take two more runs here. Very nice fielding there in the deep. Deepthi Sharma so far in five deliveries has conceded 7 runs. So I would say at par bowling with the required run rate, 9 runs they require, she's conceded 7. One more dot ball would again take the run rate to 10 runs and per over. 13.5 overs, 119. This is a very bad delivery, but equally bad shot. She's not happy with the shot that she played. She knows she missed a boundary opportunity. So 14 overs gone, 109 for 3, 36 legal deliveries and 62 runs required. Birinderji, this match is actually going great for both teams.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: ड्रिंक्स का समय हो चुका है, 6 ओवर का खेल बाकी है और 109 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं और 36 गेंदों में 62 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। खेल अभी भी संतुलित है क्योंकि अच्छे ओवर अभी भारत की तरफ से आने बाकी हैं। श्री चरनी के कुछ ओवर बाकी हैं और तेज गति की गेंदबाजी आनी बाकी है। और दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की तरफ देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज इस समय आत्मविश्वास में हैं। एलिस पेरी जो कि 32 पर इस समय 23 गेंदों का सामना करने के बाद बल्लेबाजी कर रही हैं, 4 चौके लगा चुकी हैं, पूरी तरह से आत्मविश्वास में हैं और जब भी जरूरत पड़ती है आक्रमण की वो कर रही हैं। और गार्डनर जो कि मची हुई अनुभवी बल्लेबाज हैं, पूरी तरह से सक्षम हैं आक्रमण करने में। तो ये खेल किसी भी तरफ जा सकता है। 14 गेंदों में 20 रन गार्डनर ने बनाए हैं और पूरी तरह से सक्षम हैं वो भारतीय गेंदबाजी के ऊपर आक्रमण करने में। तो देखना यह है कि क्या भारतीय गेंदबाजी कुछ सफलताएं प्राप्त करके, कुछ विकेट हासिल करके दबाव बनाती हैं ऑस्ट्रेलिया पर, या फिर ये दोनों बल्लेबाज अश्विन इसी तरह से रन बटोरते रहेंगी और ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य के करीब लेकर जाती रहेंगी।
0: एंड इंडियन सेमीफाइनल होप्स आर हैंगिंग बाय अ थिन थ्रेड ऑफ 36 बॉल्स एंड दोस 62 ऑड रन्स दैट Australians require on those 36 balls, so a very thin margin. And what India need, they have been very clinical so far. They need to pick up wickets on a regular interval, and that chokes up the runs. You know, a new person comes in, takes time to settle and score, and that's what would be important and would be discussed in this drinks break and the huddle between the management and umpire and all the players to regroup themselves, slow down the game a little bit, because those two overs have costed India some runs. Otherwise, 11 runs per over was going to an area where it was match was tilting toward India, but Australia are now again clawing back onto the game. 109 for 3 of 14, 36 more balls to go, and they just need 62, and that makes hearts pumping for everyone all around in our commentators box, the fans all around the globe thinking what's going to happen in those 36 deliveries.
2: और इन 6 ओवर्स में अश्विन ये बात पक्की है कि इस दबाव की स्थिति में आपको अनुशासित और स्टीक गेंदबाजी करनी होगी। आपने देखा कि अगर आप कुछ भी कमजोर गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाज आपको बख्शेंगे नहीं, जिस तरह से राधा यादव ने एक ओवर में कुछ कमजोर गेंदें फेंकी और उस पर रन बनाने के मौके मिले। श्री चरनी अपने ओवर की शुरुआत करती है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया गार्डनर ने, और हालांकि ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई थी ये गेंद, मगर उनसे दूर, जिसकी वजह से रन बनाने का मौका। 110 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर। श्री चरनी जो कि सफल गेंदबाज हैं भारत की तरफ से, आज भी सफलताएं प्राप्त कर चुकी हैं, अपने ओवर की शुरुआत करती हैं। फ्लाइटेड फुल टॉस गेंद जिसे ऑन ड्राइव किया पेरी ने, लॉन्ग ऑन पर जब तक स्मृति गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। श्री चरनी का ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा, अगर किसी बल्लेबाज को आउट करने में वो सफल हो पाती हैं तो दबाव बनेगा ऑस्ट्रेलिया पर। अराउंड द विकेट। श्रीचरनी की ये गेंद इसे उठा दिया मिड विकेट।

0: विकेट के ऊपर से गार्डनर ने स्लॉग स्वीप किया, गेंद सीमा रेखा पार कर गई, 6 रन।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: श्री चरनी ने फ्लाइट की थी मिडल स्टंप पर, जिसे स्लॉग स्वीप किया गार्डनर ने, और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए शानदार फॉलो थ्रू और सीमा रेखा से काफी दूर गिरी गेंद, जो ये बताती है कि स्ट्रोक अच्छी तरह से कनेक्ट हुआ था। दबाव भारतीय गेंदबाजों के ऊपर, जिस तरह से स्ट्रोक लग रहे हैं, रन बन रहे हैं, 117 ऑस्ट्रेलिया, 33 गेंदों में 54 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, 117 पर 3, 14.3 ओवर हो चुके हैं। श्री चरनी, जो कि भारत की तरफ से सफल गेंदबाज, एक सफलता प्राप्त कर चुकी हैं, अपना तीसरा ओवर फेंक रही हैं। अराउंड द विकेट फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन होता हुआ, गार्डनर 27 पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया, काफी देर हवा में रही गेंद, राधा यादव है वहां पर, मगर उनसे दूर गेंद फील्ड किया गया और एक रन भागने का मौका। 50 रन की साझेदारी पेरी और गार्डनर के बीच 33 गेंदों में 19 मिनट्स में, दबाव की स्थिति में बल्लेबाजी कर रही थी और पूरी तरह से निकलने का प्रयास कर रही है इस दबाव से। एक बार फिर से तेज फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे स्टीयर कर दिया गया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: पैरी के बल्ले से निकला था ये स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये तेज फेंकी हुई गेंद थी श्री चरनी की, ओवर द विकेट, और नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। फ्री हिट मिलेगी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को और मौके रन भुनाने के। 123 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर। दबाव बनता हुआ श्री चरनी पर, भारत पर, रनों की रफ्तार बढ़ती हुई ऑस्ट्रेलिया की, दोनों बल्लेबाज जो कि 50 रन की साझेदारी कर चुकी हैं, तेज खेलती हुई, आक्रामक होती हुई, लक्ष्य के करीब पहुंचती हुई, रुकना होगा भारत को, और ये रुक सकता है विकेट प्राप्त करके। श्री चरनी की ये फुल टॉस गेंद, जिसे सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव किया स्मृति मंधाना के पास, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। 124 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: मेरी मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So that is the end of the over number 15. 15 overs got 125 for 3. The equation now is 30 balls, 46 runs is what Australians require, and that is bringing in some of disappointment for Indians fans all across. They need to be extremely tight. There was a no ball bowl, there was one bound, 15 runs conceded in that over, which and earlier 17 runs conceded, that brings Australia back into the game. They are 125 for 3, and let us see who's going to bowl the next over. Shefali Verma comes in, first delivery, shorter delivery, pulls it and should go for 4. Yes, it does. So boundaries are coming in barrage for Australia. They have actually changed or switched the gear from first to straight away fourth. 129 for 3.
1: ये लगा आभा का चौका।
5: A similar script been played out, what has been done with South Africa earlier. India was controlling the game till 10-12th over, and after that India has leaked runs to Marzenka, but this time Ellis Perry and Ashleigh Gardner are taking Indians to the cleaners. There's some bit of poor bowling by Indians, and Australians were able to punish them as hard as possible. So 28 balls to go, 41 runs required. This is the last over Shefali Verma. 3.2 overs she has bowled, 26 runs she has conceded, and this time, third time in this over, cuts it, but straight to the field. There's a misfield there. Deepti Sharma runs in, can she cuts it off? 1-2 looks unlikely, and this ball also goes to the boundary. So when the times are tough, the mistake happens, and that's what is happening. Harmanpreet needs to come and regroup as a leader. Tell them to calm down. The boundaries are leaking. क्रांति

0: God, this time uneven bounce there, she actually loses the grip of the ball in that bounce, and that conceded a boundary. So two boundaries came off this over of Shefali Verma. That takes their score to 134 for 3. 37 requires of 27 deliveries. Now equation difference is just 10 balls or 10 runs per over, per ball. So that has been reducing so far. 15.3 overs gone. 134 for 3. 171 required. So 37 more. There's some talk between Richa Ghosh and Shefali Verma. They need to slow the things down, because off late there's too much wayward bowling, which costed them runs. Let's see what she can do this time. A good ball, good length delivery, and just a single. Shefali is saying, don't throw, just it's okay. Single has been conceded, we're fine with it, and has been able to calm down Arundhati Reddy, who's in for Kranti God, who missed the variable bounce and conceded the boundary. And I think in that process she has hurt her thumb. 15.4 overs gone. 135 for 3. This time Gardner pulls it to the deep mid-wicket region. Jemima Rodericks fields it and throws it back to Shefali. She's not happy. 25 balls more to go. 35 runs to score. Match is going out of India's grips, because they have 7 wickets in hand. Let's see what they can do. They need wicket badly, but Australians are not giving anything. A similar kind of shot this time by Ellis Perry. Same run, same place, same kind of ball. Single conceded. So 24 balls required. 24 balls to go. 34 runs required for Australia to win this match.
1: ये ओवर भारत के लिहाज से काफी बुरा रहा. भारत के लिए जिस तरह से स्ट्रोक्स लगे, रन बने और रनों की औसत नीचे आई. चार ओवर्स में अब 34 रन चाहिए. 8 से कुछ ज्यादा की औसत दरकार ऑस्ट्रेलिया को. और जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की जा रही है गार्डनर और पेरी द्वारा, उनके लिए ये लक्ष्य कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा. भारत को जरूरत है विकेट की, क्योंकि जब तक ये साझेदारी टूटेगी नहीं, भारत वापस दबाव नहीं बना सकेगा, इस मैच में वापसी नहीं कर सकेगा. ये मुकाबला, ये मैच जो भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी है. और इस समय ऑस्ट्रेलिया अपने पक्ष में इस मैच को ले जाता हुआ जिस तरह की बल्लेबाजी अब हो रही है. चार ओवर में 34 रन चाहिए और देखना है कि कप्तान हरमनप्रीत गेंदबाजी के लिए किसे बुलाती हैं. अब तक रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, शेफाली वर्मा, श्री चरनी, दीप्ति शर्मा और राधा यादव, इन गेंदबाजों का इस्तेमाल हो चुका है. रेणुका सिंह, श्री चरनी और दीप्ति शर्मा ये सफल गेंदबाज हैं भारत की तरफ से. रेणुका सिंह को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. ये पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे ऑन ड्राइव किया पेरी ने, जो कि 45 पर बल्लेबाजी कर रही हैं. और जब तक स्मृति लॉन्ग ऑन से फील्ड करके बॉल को थ्रो करें, एक रन भागने का मौका. 138 तीन विकेट पर इस समय ऑस्ट्रेलिया. शॉर्ट थर्डमैन पॉइंट कवर मिड ऑफ की ऑफ साइड पर फील्डिंग है. रेणुका सिंह की ये गेंद गुड लेंथ, जिसे सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ खेला, फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया गया. रन बनने की कोई संभावना नहीं. 138 पर 3, 16.2 ओवर के बाद 22 गेंदे, 33 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को. भारत इस समय विकेट की तलाश करता हुआ, जो मिल नहीं पा रही है. रेणुका सिंह भारत की तरफ से सफल गेंदबाज, जिन्होंने पारी की दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त की थी. इस बार उठा दिया गार्डनर ने लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद हवा में सीमा रेखा पार करती हुई 6 रन.
2: ये लगा आभा का छक्का.
1: गार्डनर पूरी तरह से आत्मविश्वास में, 41 पर बल्लेबाजी कर रही हैं, 23 गेंदों का सामना करते हुए. ये गेंद गुड लेंथ, जिसे कदमों का इस्तेमाल करके बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इसे ऊंचा और बड़ा शॉट खेला था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, और गेंद हवाई रूट लेती हुई सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए. रनों की रफ्तार तेज होती हुई 16.3 ओवर में 144 ऑस्ट्रेलिया, 21 गेंदों में 27 रन दरकार ऑस्ट्रेलिया को. लक्ष्य के करीब जाती हुई ऑस्ट्रेलिया. ओवर द विकेट रेणुका सिंह एक बार फिर से. गार्डनर के लिए गुड लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव किया. स्मृति मंधाना है वहां पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, एक रन भागने का मौका. दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से जम चुके हैं, जिम्मेदारी से और सूझबूझ से खेलते हुए. 45 पर पेरी, 42 पर गार्डनर, 145 ऑस्ट्रेलिया तीन विकेट पर 16.4 ओवर के बाद. इस ओवर की दो गेंदें बाकी. रेणुका सिंह ओवर द विकेट, गुड लेंथ गेंद, इसे स्लॉग स्वीप किया मिड

0: टी ट्वेंटी मुकाबलों में गार्डनर ने अपना 9वां अर्धशतक पूरा किया इस शानदार चौके से, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब आता हुआ, 5 रन दरकार हैं, 12 गेंदे बाकी हैं और 166 पर 3 ऑस्ट्रेलिया। और ये इस वजह से है क्योंकि पेरी और गार्डनर दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की है, दोनों ने अर्धशतक लगाए हैं, दोनों ने आक्रमण किया है भारतीय गेंदबाजी के ऊपर और अपनी टीम को उन्होंने जीत के रास्ते पे डाला है। गार्डनर हैं 52 पर और पेरी बल्लेबाजी कर रही हैं 55 पर। श्री चरनी अपना ओवर डालती हुई, ओवर द विकेट फ्लाइटेड गेंद जिसे स्क्वेयर ड्राइव किया बल्लेबाज गार्डनर ने डीप कवर्स क्षेत्र पर और 1 रन भागने का मौका। 4 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा, आज का मुकाबला जीतकर ग्रुप स्टेज में वो पहले नंबर पर रहेगा और अपने सभी मुकाबले जीतेगा, जिस तरह से ये जीत निश्चित दिखाई दे रही है। श्री चरनी इस वर्ल्ड कप में 13 सफलताएं 13 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं, अपने इस स्पेल का आखिरी ओवर डालती हुई, आज भी एक सफलता उन्हें प्राप्त हुई थी, 167 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर। गार्डनर सामना करेंगी श्री चरनी का। फ्लाइटेड फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, 1 रन फिर से भागने का मौका, 100 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस 100 रन की साझेदारी में 45 पैरी के हैं, गार्डनर के 53, 57 गेंदें ली हैं उन्होंने इस 100 रन की साझेदारी को बनाने के लिए। 168 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर, 10 गेंदों में 3 रन चाहिए। पैरी सामना करेंगी श्री चरनी का। ओवर द विकेट श्री चरनी की ये गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंपर जिसे ड्राइव किया कवर क्षेत्र पर, दीप्ति शर्मा है वहां पर, रन बनने की कोई संभावना नहीं। ये मुकाबला अब से 5 ओवर पहले जो संतुलित नजर आ रहा था उसने अगर अंतर डाला है इस मुकाबले में, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया है, तो इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से जिन्होंने समझदारी से और सटीक बल्लेबाजी की है। इस बार उठा दिया गेंद हवा में, शफाली है गेंद के नीचे और इसे कैच कर लिया गया और पैरी 56 रन की पारी खेलकर वापस लौट रही हैं। ये 4थी सफलता भारत को, मगर काफी देर हो चुकी है, जिस तरह से रन दरकार है ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये ज्यादा मायने नहीं रखेगी ये सफलता दबाव बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल जीत की राह पर ऑस्ट्रेलिया इस समय, और ये भारतीय खेमा जानता है, जिसकी वजह से इस विकेट को प्राप्त करने के बाद भी कुछ ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैच उनके हाथ से फिसल चुका है, ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में उनसे बाजी मार चुका है। 8 गेंदों में अश्विन मात्र 3 रन चाहिए, और देखा जाए तो इस आखिरी सत्र में, खेल के इस आखिरी पड़ाव में दूसरी ड्रिंक्स के बाद ऑस्ट्रेलिया हावी रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने आउटप्ले किया है भारत को।
1: Actually, there's a lot of despair that these two players have brought into Indian dressing room. They have played nicely with 100 in partnership. At one stage, it was looking like 11 runs per over they required, but Australians are, with their never-say-die attitude, they have been able to cross that boundary comfortably. So that wicket for Sri Charni here, that's her wicket number 14 in the World Cup, but that's where she will end her the World Cup campaign, because India most likely are crushing out of this World Cup.
0: Where हम आए हैं बल्लेबाजी के लिए, श्री चरनी की ये पहली गेंद उनके लिए गुड लेंथ जिसे सीधे बल्ले से खेला गया, रन बनने की संभावना नहीं। 7 गेंदों में 3 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने पहले सटीक प्रभावशाली गेंदबाजी की, जिसकी वजह से भारत को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, और उसके बाद बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकल के ये ड्राइव किया वेरहम ने, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए।

0: ये लगा आभा का चौका।
1: रिपोर्ट लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहे और जहां चाहे ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: तो आपको ये जानकारी दे दें कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप में भारत का सफर आज समाप्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया से भारत आज पराजित हो चुका है। पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 170 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें स्मृति ने 38 रन की पारी खेली। शफाली वर्मा 34 रन बनाकर आउट हो गई थी। जमीमा ने 34 रन बनाए थे और फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 रन की पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 170 रन का लक्ष्य दिया और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर्स में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिसमें शानदार अर्धशतक शामिल हैं पेरी के और गार्डनर के। तो आपको ये बताते हुए कि भारत का आज का ये लीग मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ समाप्त हो चुका है, भारत पराजित हो चुका है और वर्ल्ड कप में भारत का सफर बस यहीं तक रहेगा। ये बताते हुए आपको अब ये बता दें कि हमारा विशेष कार्यक्रम आप जरूर सुने, जिसमें फोन करके आप अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। सुनिए इस कार्यक्रम को और अपने विचार साझा कीजिए। नमस्कार।
7: प्लेयर ऑफ द मैच

0: It's your 10th outing at the World Cup, ending up being the most productive one with the bat, with a long way to go. You're having a good time out there. How does it feel? How's the prep and just the overall process and results that you're getting on the field?
1: Oh, look, I think it's been a wonderful tournament so far. You know, every venue that we've played at has had a great atmosphere and crowds. The cricket's been so competitive. Like, you look at some of the upset results and various matches that have gone right down to the wire. So it's been such a fun tournament to be a part of so far. We've obviously got hopefully two more big games to go, but, you know, most importantly, the semi-final first. I thought our preparation's been awesome. Everyone's in a really nice spot and just enjoying each other's company, so we'll see what happens.
0: Elise, congratulations and best of luck for the semi-finals.
1: Thanks so much. Cheers.
2: Elise Perry scoring 56 off 38 balls and being a crucial part of that stand with Ash Gardner that yielded 100 runs. And Khyati, we were discussing about the total because the way this partnership was shaping up, it looked like India didn't have much of a chance.
3: You definitely have such partnerships while chasing is commendable, I would say. And definitely they could have scored a little more. And having said that, the strike rate could have been better of like Jemima and Shefali and as well as Smriti Mandana. But definitely I would say that today Australia outplayed them.
4: सौ मित्रों 9.1 ओवर में 68 पर 3 थी ऑस्ट्रेलिया की टीम. क्या वहां से भारतीय कप्तान उन पर दबाव बनाने का जो ट्रिक है वो मिस कर गई?
5: नहीं, क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज ड्यू. टू बिग प्लेयर्स कंस्ट्रक्टिंग एन इनिंग्स मोर देन 100 रन्स. एक टाइम तो हम जोक कर रहे थे शायद इंडिया आराम से जीत ही जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ. दिस इज वेयर द हॉलमार्क ऑफ अ प्लेयर हु हैज प्लेड 178 T20 internationals, partnering with another one, just the 103 T20, इनका experience आज हमको देखने को मिला. Good cricket क्या होता है? Good cricket is construction, regardless of the format, whether it is T20, whether it is ODI or Test cricket. Partnership हर एक format में होती है, और वही आज हमको देखने को मिला. ये नहीं कि हमारा bowlers try नहीं किया. शायद मुझे लगा कि wicket और better हो गया था second half में, जिस तरह से वो ball middle कर रहा था. और सबसे बड़ी बात है, दे वर फाइंडिंग द गैप्स, जहां पे जैसे जिस तरह से वो स्ट्रोक्स ले रहा था अलोंग द ग्राउंड, सिक्सेस, फैंटास्टिक. इट इज अ क्लासिकल चेस एंड इट हैज बीन प्रूवन बाय टू वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड T20 ऑलराउंडर्स.
2: एब्सोल्युटली, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. बट रविंदर, शुरुआती झटका भारत ने दिया ऑस्ट्रेलिया को वॉल के विकेट के फॉर्म में, लेकिन अगेन 10 ओवर के मार्क के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कंसोलिडेट करना शुरू किया, तब भारतीय गेंदबाज दे वर लुकिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज.
6: देखिए, यही ग्रेट टीमों की पहचान यही होती है. तो विकेट दो तीन निकल गए, लेकिन उन्होंने कहीं पर रन रेट को बढ़ने नहीं दिया. 10 रन की रन रेट लगभग आ चुकी थी, लेकिन वो उसको मेंटेन करते हुए इतना मेंटेन किया कि आखिरी एक ओवर स्पेयर करके खत्म हो गए. 38 बॉलों में 56 पैरी ने बनाए हैं और 29 बॉलों में 53 रन. मतलब ये तब आया तो 3 विकेट आउट हो चुके होते, 10 ओवर में लगभग 70 रन के करीब थे. 9 ओवर में इन्होंने 100 रन बना दिए. ये यही एक अच्छी टीम की पहचान होती है. यहां पे इंडिया चूक करके, मैंने आपको पहले बताया कि जेमिमा जब बैटिंग कर रही थी वहां पे ये स्ट्राइक रेट, वो ये नहीं कह रहा कि 180 रन बनते रहे जीत जाते हम, लेकिन वहां स्ट्राइक रेट और बेटर हो सकता था. लेकिन सबसे बड़ा जो लूज पॉइंट है इंडिया का, मैं आपको बताऊं, जो फास्ट बॉलर्स हैं, इंडिया के फास्ट बॉलर कहीं नहीं रहे. विकेट एक लिया रेणुका ने, लेकिन आप देखिए कोई दो ओवर एक ओवर, चार चार स्पिनर्स हैं, किसी का कोई भी आसपास चरनी के अलावा कोई इंप्रेस नहीं कर पाया. इसमें अगर आप 180 रन भी बना पाते तो उसमें 180-85 में भी लग नहीं रहा जिस हिसाब से ये मैच जीत सकते थे. तो बॉलिंग में इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. टोटली आउटप्लेड ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया, क्योंकि आज
4: ख्याति अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं जो रविंदर चर्चा कर रहे हैं, क्रांति गौड़ को आपने खिलाया नंदिनी शर्मा की जगह पर इस प्लेइंग 11 में, सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी की 12 रन दिए. जब स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा मार पड़ने लगी, 14वें ओवर में श्री चरणी के ओवर में 16 रन गए और उसके बाद धावा बोल दिया एक तरीके से गार्डनर और पेरी ने, क्या वहां पर क्रांति गौड़ को एक ओवर के लिए लाया जा सकता था?
3: डेफिनेटली लाना चाहिए पेसर को, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर नंदिनी का आप देखेंगे, उसके पास काफी वेरिएशन है, स्लोअर वंस हैं, उसके पास बाउंसर्स भी हैं, बहुत अच्छे उसके पास वेरिएशन हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो डालती है राइट एरियाज में. आई थिंक नंदिनी को ही आज खेलना चाहिए था आज का मैच, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, हंगर है. एंड क्रांति गौड़ को पहले अगर बिठाया है तो आपको डेफिनेटली इसने क्रूशियल मैच में नंदिनी को बाहर नहीं बिठाना चाहिए था और क्रांति को ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा मैच नहीं देना चाहिए था.
2: और इसी बीच हमारे साथ कॉलर्स जुड़ गए. हम अपने श्रोताओं को दोबारा से याद दिलाना चाहेंगे कि वो अगर हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहें तो वो हमारे नंबर्स पर कॉल कर

0: सकते हैं 0112342103 और 85। अभी जो श्रोता जुड़े उनसे बात करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम
0: जी, अपना परिचय दीजिए।
1: मैं बात कर रहा हूँ, रविंद्र साहब से मैं बात करने का था। सर नमस्ते। सर
2: नमस्ते। नमस्ते
1: सर, पहला बैटिंग लेने से बहुत बड़ा गलती की है ना सर, ये लोग कौन ये लोगों को ऐसा सलाह देते सर, सेकंड बैटिंग लिए तो 99% इंडिया जीत भी दिया।
2: देखिए ये 170 रन बना, 170 रन टारगेट अच्छा था, लेकिन आप पहले बैटिंग करते हैं बाद में बैटिंग करते हैं, प्रेशर की गेम थी। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी फाइनल सेमीफाइनल से पहुंचा हुआ है। इंडिया ने सोचा कि हम पहले बैटिंग करके हम अच्छा स्कोर बना सकते हैं, हरमनप्रीत ने एक अच्छी एफर्ट भी करी बाद में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप पहले जिस तरह के बॉलिंग अटैक है, आपने देखिए एक क्रांति गौड़ एक ओवर किया, श्रेणुका ने चार ओवर किए, आप जहां पे बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर जहां पे आपको स्पिनर्स पिट रहे थे वहां पे आपको यही तो एक कप्तानी की बात होती है, एक आध ओवर चेंज करके मीडियम पेसर को कराना चाहिए था। एक विकेट अगर वहां पर निकलता, ये दोनों जो 9 ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप थी, वहां पे आपको गेम को कहीं चेंज कर सकते थे। आपने स्पिनर्स को बिल्कुल एक रिमोट की तरह चलाते गए, एक स्पिनर्स पिटा दूसरा लगा दिया, दूसरा पिटा तीसरा लगा दिया, लेकिन कहीं आपने कोई गेम को कहीं चेंज नहीं किया, गेम की स्पीड को, वहां पर मुझे लगता है ट्रिक मिस कर गए।
3: थोड़ी चर्चा रेणुका सिंह ठाकुर पर भी सौमित्रो, पूरा टूर्नामेंट बहुत ही अनसर्टेन रहा, और पिछले अगर एक डेढ़ साल में उनकी आप फॉर्म को देखें, चाहे वो WPL में भी उनकी फॉर्म को देखें, इकोनॉमी रेट काफी ज्यादा रही है, वो नेचुरल स्विंग गेंदबाज के तौर पर आई थी, वो मूवमेंट उनको नहीं मिलता नजर आ रहा है, ज्यादातर गेंदबाजी मिडिल और लेग स्टंप पर कर रही है, जिससे कि बल्लेबाज काफी आसानी से उनको खेल पा रहा है, एक बड़ा सवाल
4: जरूर। और उसका देखिए उसका पेस भी अभी कम हो गया, ये होते रहता है कि शी इज नाउ अ सीनियर पेसर, इट इज टाइम टू लुक अहेड, जैसे आप नंदिनी शर्मा है, पाटिल है जो इंजर्ड हो गया था, नाउ इट इज टाइम टू बिल्ड, रिकॉन्स्ट्रक्ट पीपल, रिकॉन्स्ट्रक्ट द बॉलिंग। हालांकि हमारा स्पिन स्ट्रेंथ स्टिल गुड, हमारा दृष्टि चरण इज स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। आई थिंक There are lessons learned from defeats also. I think this defeat will tell the team management what went wrong. आप देखिए आप 5 मैच खेले हैं and you're still not comfortable with your playing 11. We are still saying whether Kranti should have played or so and so should have played. But why should that be asking these questions at all? And especially when you're playing your 5th match and your 5th match is probably your best match you have to play and the most decisive match. We are still don't know. Does it reflect well on the Indian team? No.
0: And how the captain reflects on that, both the captains, be it Harmanpreet Kaur or Sophie Molineux, let's listen in.
5: Yeah, I think end of the day we got decent total on the board. In between when we were batting, I thought we were a little short, but I think the last over did the job for us. But unfortunately, we didn't play well. We didn't play well against good teams. I think we really need to rethink about that.
6: Did part of it come back to batting in probably those first 10 overs and being sort of a runner ball, the retirement of Jimmy Rodrigues? Could that have come a little earlier?
5: Yeah, I think they were looking for the run, but unfortunately they didn't get in. I think they bowled really well. They bowled according to their plans, and I think we thought we didn't lose a wicket, but at the same time we didn't get what we expecting. But I think if I have to think about the entire tournament, I think we didn't play good against good teams, and I think as a group we really need to rethink that what we have to do against good teams.
6: Explain to me your performance against Australia. You kind of like playing against them. Your 6th half century.
5: Well, I think I feel against best teams, always your best comes, and they are, you know, one of the best teams in the world, and you know they are been pushing our to the get to that level, and I think it was a good game, but unfortunately we didn't cross that line today.
6: And I think you might have a few teams ringing you up going, how did you turn around your catching? You dropped 4 catches in 5 overs up north. You've come here to Lords and you caught really well.
5: Yeah, definitely. I think that those catches cost us. But today was, I think we were in the game quite time in the game, I think. But still, I think we didn't play to our standards. And I think as a group, we really need to rethink about that.
6: How do you summarize India's whole T20 World Cup campaign?
5: Yeah, I think as I mentioned, as a group, we really need to rethink a lot of things, how we have to go about good teams, especially because sometimes, we are in the game, but last few overs, we've been giving them easy runs. And so if we have to, if we're chasing, then we are not able to get those runs while batting. So I think it's been happening for quite a long time. Now we have to, reset and rethink because

0: ऑफ द टीम. आप मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने वेमेंस क्रिकेट के लिए खेला हो. डेफिनेटली आई मीन सारे मेन कोचेज आर देयर, मेन स्टाफ इज देयर. तो आई थिंक उनको पार्ट बनाना चाहिए, दिस इज द मेन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक फील्डिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी फॉर्मेट. सो आई थिंक स्पेशली इन T20 इफ यू सी, इंटेंट शुड बी देयर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन फील्डिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट, दे शुड वर्क टूवर्ड्स इट.
1: और हमारे श्रोताओं का ओपिनियन भी इंटीग्रल पार्ट है हमारे शोज का. तो अभी फिर से हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं. नमस्कार.
2: नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र पाटिल है, अमलनेर महाराष्ट्र जलगांव से बात कर रहा हूँ.
1: जी, आपका स्वागत है शो में. क्या आपका सवाल या क्या आपकी टिप्पणी है?
2: जी, मेरा सवाल तो ये है कि कभी कभी मैनेजमेंट की गलत डिसीजन की वजह से मैच भी हार सकते हैं हम लोग. इसका उदाहरण राधा यादव के बारे में देखने को मिलता है.
1: जी,
3: राधा यादव को टीम में शामिल करने पर ये सवाल कर रहे हैं. दो ओवर में आज 24 रन दिए, लेकिन कप्तान ये चाहती थी कि शायद लोअर मिडिल ऑर्डर में वो कुछ आकर बड़े शॉट्स खेल सकें, शायद इसलिए उनको टीम में रखा गया.
4: द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट इज हाइंडसाइट, चर्चा. और हम माहिर है, इंडियंस आर वेरी गुड एट चर्चा. चर्चा करके आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. चर्चा करके अगर हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है तो Maybe that is a possibility. राधा यादव कर सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे. हरमनप्रीत आज बैटिंग करके 50 रन किया, फोर्थ और फिफ्थ 50 अगेंस्ट T20 एंड शी ऑलवेज फिनिशेज ऑन द रॉन्ग साइड. बट अनफॉर्चुनेट है, दिस अनफॉर्चुनेट. हमने सोचा कि शायद आज चेंज हो जाएगा. हमने जब 170 रन बनाया हमने सोचा चेंज हो गया. बट दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ बिग टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. छह टाइम का चैंपियन तो ऐसा नहीं हुआ है, राइट? और देखिए, दे एंजॉय देयर क्रिकेट एंड हाउ इजीली दे पेस देयर इनिंग्स. हमारा जो इनिंग्स है, हम पेस करना अभी तक नहीं सीखे हैं. आप पांच मैच हमने जो देखा है, वी हैव नेवर लुक लाइक अ फ्लूइड एंड सॉलिड एंड स्मूथ सेलिंग टीम. समवेयर और द अदर वी वर फॉल्टरिंग, राइट? एंड द टू बिग मैचेस वी फॉल्टर्ड. आई टू सेज दैट हाइंडसाइट इज गुड, बट द फ्यूचर एज Kathy said, you have to ponder over it. You mentioned about Renuka Singh. What is her future? The question marks are there. Those question marks have to be addressed very quickly.
1: और राधा यादव का हमने जिक्र किया. पिछले मुकाबले में इस विश्व कप का जो पहला अपना मैच खेला, 3 विकेट उन्होंने चटकाए. हालांकि भारतीय टीम के पास प्रिपरेशन के लिए काफी वक्त था. घर पर 5 मैच की T20 सीरीज खेली रविंदर, उसके बाद साउथ अफ्रीका गई, वहां पे 5 मैच की T20 सीरीज खेली, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 3 मैचेस के उन्होंने सीरीज खेली, और उसके बाद फिर इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में प्रिपेयर करने का मौका मिला. एक्सपेरिमेंटेशन जो था वो वहां तो चला ही, मेन टूर्नामेंट में भी देखने को लगातार मिला.
5: देखिए, आपके सारे प्लेयर्स खिला रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, हर मैच में 2 चेंजेस, 1 चेंजेस, कहीं मोमेंट कहीं आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा. आपकी बॉलिंग में आपको बहुत ध्यान देना है. थोड़ी फास्ट बॉलर आपके पास 1 ओवर 2 ओवर के लिए बॉल कर रहे हैं. स्पिनर्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, एक चर्दी को छोड़कर. बीच में आपकी जो फिट, सबसे बड़ी चीज है फिटनेस है. आप ये फिटनेस देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की फिटनेस है और इंडियन प्लेयर की फिटनेस है. फील्डिंग में देखिए आप, उन्होंने कम से कम 15 से 20 रन बचाए होंगे इंडिया के, कम से कम 15 से 20 रन. एक अच्छा ओवर, एक लास्ट का ओवर हरमनप्रीत के कारण आपको 170 दिख गया, नहीं तो ये 150 था और आप वन साइड हार रहे थे मैच को. ये तो आप एक जीत जाते तो आपकी सारी चीजें, आप जो आज डिस्कशन कर रहे हैं कोई भी नहीं करता, सब बोलते बहुत ही बढ़िया है. लेकिन इंडियन टीम को देखिए, आपने हराया किसको है? बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, ऐसी टीमों को जहां पर 2 अच्छी टीमें हैं वहां पर आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं आप वो देखिए. पिछले मैचों में बैठे बॉलिंग का आपका क्या लेवल था आज, और फील्डिंग का क्या लेवल था. इसमें आपको अगर कंपीट करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. एक ही तरह के सिस्टम बना के आप पूरे मैच
4: मेरा और एक आई वॉन्टेड टू एड समथिंग आनंद, कि जेमाइमा को अगर रिटायर्ड आउट करना ही था, इतना देर में क्यों किया? मे बी 1 more over कुड हैव गिवन अस अनदर 20 रन्स. ये दीज आर क्वेश्चंस मैनेजमेंट में. जैसे एक श्रोता ने सवाल पूछा है कि मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है. रिटायर्ड आउट का डिसीजन तो ऑन फील्ड नहीं लिया जाता, वो मैनेजमेंट लेते हैं. एक ओवर पहले ले लेते हैं, शायद हमको और भी टोटल में 15 रन का इजाफा होता है. तो दीज आर मिस्टेक्स, दीज आर क्वेश्चन मार्क्स,
5: ये ब्लंडर्स हैं. आखिरी ओवर में आप ऋचा घोष को भेज रहे हो 2 बॉलिंग खेलने के लिए, आपका पहली बॉल से उम्मीद करोगे को छक्के मारेगी? जो लड़की 35 बॉल सेट होकर खेल रही है उसको आपने बाहर बुला लिया.

0: पास ज्यादा चांस था, वो सर्टिफिकेट का पेज देख चुकी थी, उसके पास ज्यादा चांसेस था।
1: सेमीफाइनल मुकाबलों पर भी चर्चा करेंगे, उससे पहले ख्याति एक छोटा सा सवाल, हरमनप्रीत कौर का फ्यूचर T20 में आप कैसे देखती हैं?
2: देखिए ये क्वेश्चन आप मुझसे तो पूछ सकते हो, आई थिंक एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हरमन से जब किसी ने पूछा था उसने ये पूछा था कि क्यों आप चाहते हो कि मैं खेलना छोड़ दूं, तो मैं भी यही आपसे पूछूंगी कि क्या वो खेलना छोड़ दें।
3: Well, we talked about experience that Harman brings, but then Shri Charini, who made her debut just last year, she has finished this edition of the World Cup with 14 wickets, becoming the highest wicket taker in any single edition for India, and as of now, also the highest wicket taker in this edition of the World Cup. So, Mitro, your concluding thoughts on the player?
4: Excellent. She's definitely a great potential, but the potential counts for nothing when the results don't show. That is the ultimate truth of sport. His score line matters. Shri Charini is beautiful, great. Smriti Mandana, great, fantastic. But these are adjectives which can add to cricketers. Harman should play or not, God knows. But ultimately thing is the result that matters and we are not in the semi-finals.
1: अब ये T20 विश्व कप अपने बिजनेस एंड पर पहुंच चुका है। 30 जून को पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना वेस्टइंडीज से होना है और फिर 2 जुलाई को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होगी। ऑस्ट्रेलिया विजय रथ पर सवार है रविंदर, वेस्टइंडीज की टीम कह सकते हैं कि कभी हां कभी ना वाली फॉर्म उनकी रही है, कभी बढ़िया खेली कभी खराब खेली। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट पहले सेमीफाइनल में?
0: बिल्कुल, मुझे फेवरेट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नहीं, टूर्नामेंट के लग रही है। जो जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन है, जो उनका आपस में जो फील्डिंग, जो उनका जो उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो देखने वाकई लाजवाब है। ऐसा लगता नहीं है कि लड़कियां खेल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी अच्छी फील्डिंग, चेस करते हुए ड्राइव करते हुए आ रही है, वापस भागते हुए आ रही है, मैंने तो इंडियन टीम को देखा ही नहीं कभी इस तरह की फील्डिंग करते हुए। ये जो लेवल दिखा रही है ये वाकई एक चैंपियंस लेवल है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के लिए चैंपियंस फेवरेट।
3: And this is the first time when Australia are not the defending champions in T20 or ODI World Cups, and that's why they're extremely hungry. West Indies, on the other hand, are coming off a loss to Ireland, Khyati.
2: Yeah, I mean, that's also news. I mean, that's a big news, definitely. I mean, we are not ready for two big news, and that too sad news. Yeah.
1: दूसरा सेमीफाइनल जहां पर इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। दक्षिण अफ्रीका भी आज बहुत मुश्किल से बांग्लादेश से पार पाए हैं, उनका भी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा। भारत के साथ भी जीते वो जीवनदान मैरिजन कैप को अगर नहीं मिला होता तो शायद वो उस मैच की स्थिति अलग होती। इंग्लैंड वहां पर एज पर नजर आ रही
4: 100%, दे विल स्टार्ट एज द डिफेंसिव टीम, साउथ अफ्रीका विल बी द अंडरडॉग्स एंड दे लव टू बी द अंडरडॉग्स। इस तरह का जो टीम जो लड़खड़ा था वो सेमीफाइनल पहुंच जाता है, दे लाइक टू बी द अंडरडॉग्स, बट दे हैव मैच विनर्स, डोंट फॉरगेट देयर कैप्टन मैरिजन कैप, टैस्मिन ब्रिट्स, फैंटास्टिक, दे आर ऑल केपेबल क्रिकेटर्स। एंड इन T20 फॉर्मेट 20 ओवर्स दे कैन बी अ वेरी वेरी सॉलिड फोर्स, एंड यू जस्ट नीड 4 or 5 पीपल टू परफॉर्म, नॉट द एंटायर टीम। और उनका फील्डिंग भी ठीक ठाक है। और देखिए इंग्लैंड विल ऑब्वियसली स्टार्ट एट फेवरेट्स, अनबीटन रन, सुपर्ब रन, बट दैट विल बी अ क्रैकर फॉर मैच। आई वुड से साउथ अफ्रीका हैव अ चांस टू गो टू द फाइनल।
3: Khyati there alluding to India's one run loss to Ireland, which means that for the first time ever they've lost a series to Ireland, and that coming by a margin of 2-0 in men's cricket. Coming back to women's cricket, और वापस से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के उस सेमीफाइनल्स के लिए बिल्डअप करते हुए यहां पर हम रविंदर, इंग्लैंड की तरफ से हमने देखा है कि हालांकि उनकी कप्तान को इंजरी हुई, लेकिन जिस तरह से चार्ली डीन उनके एब्सेंस में लगातार फिट इन होती आई है सिवब्रंट के नहीं होने पर।
0: बिल्कुल, इंग्लैंड बिल्कुल एक ऐसी टीम लग रही है जो कि सिर्फ जो इस समय ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिजर्विंग जो फाइनल दिख रहा है मुझे, क्योंकि वही ऐसा लगता है जो चैलेंज कुछ रख सकती हैं, क्योंकि जो ये लोग, अब सबसे बड़ी बात है आपको अगर ऊपर आना है आपको सबसे पहले अपनी फिटनेस, अपने फील्डिंग पर जोर देना पड़ेगा। बैटिंग बॉलिंग तो बात की बात है, सब करेंगे, लेकिन जब तक आप अपने फील्डिंग का लेवल नहीं सेट करेंगे, आपकी फिटनेस का लेवल सेट नहीं करेंगे, तब तक आपको इतनी ऊपर की टीमों से आप कम्पीट नहीं कर सकते। देखिए आप शेफाली को लेकर, आप शेफाली बॉलर नहीं है, आप बैटर तो अच्छी है, लेकिन आप उसको पार्ट टाइम बॉलर को आप फुल टाइम बनाना शुरू करोगे, बांग्लादेश पाकिस्तान के अगेंस्ट चल जाएगा, अच्छी टीमों के अगेंस्ट आप नहीं चलेगा। देखिए 9 ओवर में 100 रन बना के मैच खत्म कर दिया 3 विकेट निकालने के बाद। तो यहां पे आपको जो मैनेजमेंट है, और जो एक ओवर पहले एक सेट बैट्समैन को बाहर बुला रहे हैं, इस पे बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है मुझे कि ये क्या इनकी विजडम है, क्या सोच के ये लोग वापस बुलाए उनको।
1: ख्याति अगर कुछ समय

0: पहले तक हम चर्चा करते थे तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ये तीन देश ऐसे माने जाते थे जहां पर 30 गेंदबाजों का बोलबाला होता था। लेकिन अगर इस पूरे विश्व कप में हम देखें तो ज्यादातर स्पिनर्स, किसी भी देश की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने कई मैचेस में पहला ओवर स्पिनर को दिया, भारत चार चार स्पिनर्स के साथ खेलता नजर आया, दक्षिण अफ्रीका ने भी प्राथमिकता दी। खैर, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो स्ट्रेंथ स्पिन गेंदबाजी रही है। क्रिकेट कितना बदल गया इन देशों में?
1: देखिए, बिल्कुल बदल भी चुका है। अगर आप देखेंगे कि आजकल जिस तरीके से इतनी क्रिकेट बढ़ती जा रही है तो थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है पेसर्स को ग्राउंड पे, और लोड मैनेजमेंट भी ध्यान में रखते हुए आई थिंक वो सारी चीज़ देखते हैं, और उस हिसाब से इतनी इंजरीज हो रही है। एंड आई एम श्योर इस तरीके से अगर बढ़ता जाए तो दोनों तरफ से अब हमें स्पिनर्स देखने को मिल भी सकते हैं।
2: देखिए, आप ये इसमें ऐड करना चाहूंगा, 20 ओवर में 180 रन आराम से चेज हो रहे हैं, 9 रन की एवरेज। एक जमाने में 9 रन की एवरेज बहुत बड़ी मानी, आज 180 रन चेज हो रहे हैं, इजीली चेज हो रहे हैं। तो आप देखिए विकेट्स कैसे बनाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि विकेट्स बॉलर्स को हेल्प कर रहा, सब बैट्समैन विकेट हैं, कहीं पे भी नहीं लग रहा कि कोई बॉलर्स की विकेट है, तो उनमें बॉलर्स के लिए बहुत ही कम चांस बचता था।
3: And Soumitra, this unprecedented heat wave in England, and during the course of the World Cup, we have seen that back-to-back games get played on a single surface. So that too had a say in how spinners fared, apart from their own talent as well.
4: They should have favored the Indians. The Indians are, used to heat. They're used to playing in spinning conditions. It's like it should have been like home conditions. But we did not utilize those home conditions because ultimately it actually is a supportive question to your previous question on spin. The other countries have become equally intelligent. It is not only just T20 cricket. It is in all formats of cricket where spin has a huge domination in the say of the contest of a match. It's largely because this is a workload jo hota hai aajkal din mein, this tremendous amount of workload. And that is why you need to have spinners to give you the cushion to the fast bowlers so that there is a balance in the team. अगर आपने बोला हीट है तो स्पिन हो रहे हैं तो हम जीते क्यों नहीं, सो इट जस्ट नॉट अबाउट कंडीशंस, इट इज आल्सो व्हाट गोज इनटू द ड्रेसिंग रूम।
0: जी हाँ, बिल्कुल, हर विश्व कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं देता, कुछ कहानियां भी छोड़ जाता है। आज भारत की कहानी जीत पर नहीं, एक अधूरे सपने पर थम गई, जिस सफर ने करोड़ों उम्मीदों को उड़ान दी थी वो फाइनल की दहलीज से ठीक पहले रुक गया। ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर खेल दिखाया और भारत का इंतजार एक बार फिर लंबा हो गया। लेकिन याद रखिए, हर मंजिल का अंत आने वाला समय होता है, यही खेल की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। इसी विश्वास के साथ कि ब्लू जर्सी फिर लौटेगी नए जुनून और नई कहानी के साथ, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति। सौमित्रो आपका, ख्याति आपका, रविंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू।
3: और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन लोगों का जिन्होंने बिहाइंड द सीन्स मेहनत करके प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया। हमारी टेक्निकल टीम में है लिली, सचिन, मनोज और संदीप, हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट थे कविता, तन्मय और अमीशा, और हमारे प्रोड्यूसर हैं शाहनवाज खान। वापस मिलेंगे सेमीफाइनल्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।
5: प्लेयर ऑफ द मैच।
3: अभी आप आईसीसी विमेंस T20
6: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत है दादू अली का वायलिन पर बजाया राग मियां मल्हार।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे दादू अली का वायलिन पर बजाया राग मियां मल्हार। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 11 बजने को हैं समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच,

0: वेलफेयर सेड दैट इट विल कैरी फॉरवर्ड द विजन ऑफ पहले तीन साल संपूर्ण देखभाल रिकग्नाइजिंग द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट थ्री ईयर्स ऑफ लाइफ फॉर चाइल्ड सर्वाइवल ग्रोथ न्यूट्रिशन एंड अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट. In the ICC Women's T20 World Cup, Australia defeated India by 6 wickets in their final Group A match at Lord's, London. Earlier, opted to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Australia scored 172 runs for 4 wickets in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है. रात्रि के 11:10 हुए हैं. हमारी ये सभा संपन्न होती है. कल सुबह 5:53 पर इसी मीटर पर फिर उपस्थित होंगे. अब अनुमति दीजिए. जय हिंद.